आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम की यमुना जी के पावन तट पर बैठे हुए हैं। आज महामहिम गुरु पूर्णिमा गुरु पूजा का दिन है, तो सबसे बड़ी गुरु पूजा क्या होती है ये समझना है। हमारा संबंध जैसे सांसारिक माता पिता भाई बंधु परिवार से होता है, ऐसा गुरु से नहीं है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु को साक्षात ब्रह्म रूप देखता है,

गुरु को मनुष्य मानना, गुरु को बहुत से बहुत एक साधु मानना, साधक मानना, यहां तक तो चल सकता है, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव परब्रह्म परमात्म स्वरूप है, ऐसा कोई बिरला ही मानता है। और वही बिरला जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार, पूरे संसार में ऐसे बिरले लोग ही होते हैं जो गुरु को परब्रह्म मानते हैं। और जब परब्रह्म मान लिया तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही गुरु पूजा है। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अपने साहब अपने प्रभु अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, ये पूजा है। वस्तु पदार्थ रुपया पैसा ये माइक वस्तुएं हैं। अब हम माया में रहते हैं इसलिए माइक वस्तुएं समर्पित करते हैं गुरुदेव को, पर वास्तविक ये गुरु पूजा नहीं हुई। वास्तविक गुरु पूजा है मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा क्या है? जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया, जो गुरु जी ने नाम दिया, उसका निरंतर जप करना। गुरु उपदेश चलो यह रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्ध होई, जब हरिवंश कृपा करी। ये कृपा का स्वरूप है। प्रेम मूल यह नाम है, जो गुरुदेव ने नाम दिया उसी नाम ने हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम का जो दुर्लभ प्रेम है वो प्रकाशित किया। अगर नाम जप नहीं है तो आप सांसारिक निगेटिव चिंतन से ही परेशान रहेंगे, नकारात्मक चिंतन, अशांत चित्त, भोगों की प्रबल लालसा और निराशा, दुख, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये आपको परेशान करेंगे। इन्हीं से बचने के लिए हम गुरुदेव की शरण होते हैं। यदि हम गुरुदेव की बात मान जाएं और प्रतिपल नाम जप करें, कैसा नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। बोले श्वास में नाम नहीं चल रहा, जीवन बेकार है। अगर प्रत्येक श्वास में राधा राधा राधा, बस जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी से निकुंज मिल जाएगा, इसी से परम पद मिल जाएगा, इसी से आवागमन चक्र से मुक्त हो जाएंगे। राधा नाम अमृत है, सब मृत है, मृत लोक है, यहां सब मृत है, नाम अमृत है, नाम नामी से बढ़कर के है। इसलिए हमारे जीवन का अनुभव, संतों का अनुभव, शास्त्रों का अनुभव, नाम जप। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम केवलम। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है, सत्य है सत्य है सत्य है, तो केवल भगवान हरि का नाम सत्य है। हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। कलयुग में नहीं है और कोई उपाय, नहीं है कोई

0: उपाय नहीं है, कोई उपाय है तो केवल भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। विनिश्चितम बदामी तेन अन्यथा वचांश में हरिम भजंती नरा भवसागर तरंत थे। निश्चित बात कहता हूं, जो भगवान का नाम जप करते हैं वो इस भव समुद्र से तर जाते हैं। आप विचार करो, आपकी श्वास कितनी कीर्ति है, आपने जीवन में मानो 50 वर्ष में आपने 50 अरब रुपया कमाए, 50 वर्ष की श्वासें खर्चा करके, लेकिन जब अंतिम श्वास आई वो अरब रुपया आपके साथ नहीं चलेंगे। अगर सब रुपया देकर एक श्वास और बढ़ाना चाहें तो आपकी श्वास नहीं बढ़ सकती। इतनी कीमती श्वासों में यदि हम भगवान नाम जप नहीं करते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो गुरु पूजा यही है, जो गुरु जी ने मंत्र दिया, नाम दिया, उसका हम निरंतर जप करने का अभ्यास करें। मन जहां भागने लगे नाम जप से तो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आप ही मन के रूप में हो, इंद्रियाणा मनस्यास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं, हे नाथ आप कृपा करो और अपने नाम जप में लग जाओ। ऐसी प्रार्थना भगवान से करो कि हमारा मन आपके चरणों में आपके नाम में रहे। जीवन बहुत थोड़ा है, कोई घटना घटेगी और हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट हो जाने के पहले यदि हम भगवान नाम धन रूपी पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारा लोक परलोक सब मंगलमय हो जाएगा। हमारा विश्वास है जो नाम जप करते हैं वो कभी नरक नहीं जाते, जो नाम जप करते हैं विपत्ति उन्हें परास्त नहीं कर सकती, जो नाम जप करते हैं वो भगवान की कृपा पात्र बन जाते हैं और भगवान का कृपा पात्र भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कोई नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, कोई धर्म विरुद्ध आचरण पाप मत करो और जितना बने अधिक से अधिक नाम जप करो। यही हमारी प्रार्थना और यही तुम्हारी गुरु पूजा होगी। जय जय श्री हितार।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
9: श्रोतागण, भक्ति गीत के बाद स्वागत पर रउआ सबके प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल में। दोस्त लोग, रउआ तो पता ही बा कि ई कार्यक्रम लेके आवेली राव रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले दीपाली की ओर से नमस्कार, सुप्रभात। यहाँ रेडियो रिमझिम 90.4। तो अब चली कल जाओ आगाज आज के आपन दे आपन देखभाल कार्यक्रम के। दोस्त लोग, हम अपना कार्यक्रम के शुरुआत में बताएं सेहत खातिर आसान घरेलू नुस्खा। कमजोरी होके पे जौन लोग दुबलापन के शिकार होके, उ लोग के भोजन के साथ 2 या 3 चम्मच शहद खाए के चाहिए। और ये रात के सूते समय ठंडा फीका दूध में शहद घोल के पिए के चाहिए। होके पी 1 ग्लास ठंडा पानी में 1 से 2 चम्मच शहद घोल के पिए से शरीर में चुस्ती फुर्ती आवेला। अपच होके पी पालक की सब्जी खाई व टमाटर के रस पी। पैर के तलवा में जलन होके पर बड़ा बड़ा लौकी के टुकड़ा काट के उई पर घीसी। ना हो एक खातिर दोनों समय खाना खाए के बाद थोड़ा सा गुड़ खा ली। बवासीर में नींबू काट के ओई पर खाई वाला कत्था लेप के रात के छत पर रख दी। आ सुबह सुबह एके चूसी, ऐसे बवासीर में लाभ हुई। बावसीर में अमरुद काट के नौसादर के लेप करी और रात भर खुला स्थान पर रखी। आज सुबह सुबह खा ली। खूनी बावसीर में ऐसे बहुत लाभ हुई। एक कप गुलाब जल में आधा नींबू निचोड़ ली। आए के सुबह शाम कुल्ला करे पर मुंह के बदबू दूर होके मसूड़ा व दांत मजबूत हुई। साथ 2 केला प्रतिदिन सेवन करे से भूख में वृद्धि होला। आंवला भून के खाए से खांसी में फौरन राहत मिलेला। एक चम्मच शुद्ध घी में हींग मिला के पिए से पेट दर्द में राहत मिलेला। टमाटर के पीस के चेहरा पर एकर लेप लगावे से त्वचा के कांति और ही चमक दुगुना बढ़ जाला। मुहासा चेहरा के झाई और ही दाग धब्बा दूर करे में मदद मिलेगा। पसीना अधिक आवत होके तब पानी में फिटकिरी डाल के स्नान करी। पानी में नींबू निचोड़ के पानी पिए से ज्वर के तापमान गिर जाला। सूते से पहले सरसों के तेल नाभि पर लगावे से होठ ना फाटेला। ग्राम छाछ में 10 ग्राम गुड़ डाल के सिर धोए से अथवा नींबू के रस लगा के सिर धोए से रूसी दूर होल। श्रोतागण, चली आप जानल जाओ सेहत के साथ ही गेहूं के अंकुरित दाना के घरेलू नुस्खा। अंकुरित अनाज सेहत खातिर काफी फायदेमंद होला। गेहूं के आटे से बनल रोटी तो सबसे सहज और पौष्टिक खाद्य है। अंकुरित गेहूं भी रउआ ढेर सारा विटामिन और ई पौष्टिक तत्व दे सकेला। गुड़ से भरपूर होके के साथ ही ई रउआ वजन में भी आसानी से समा सकेला। अंकुरित गेहूं शरीर खातिर शक्तिवर्धक टॉनिक के तरह ही है। अंकुर उगल होकल गेहूं में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होला। शरीर के उर्वरक क्षमता बढ़ावे खातिर विटामिन ई एगो आवश्यक पोषक तत्व है। यह ना इस तरह के गेहूं के सेवन से त्वचा और बाल भी चमकदार बनल रहेला। किडनी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र के मजबूत और नया रक्त कोशिका के निर्माण में भी इसे मदद मिलेला। गेहूं में मौजूद तत्व शरीर से अतिरिक्त वसा के भी शोषण कर लेला। इतना ही ना, अंकुरित गेहूं खाए से शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेला। इस शरीर में बने वाला विषैला तत्व के भी निष्प्रभावी कर रक्त के शुद्ध करेला। दाना के चबा के खाए से शरीर की कोशिका शुद्ध होला और इसे नया कोशिका के निर्माण में भी मदद मिलेगा। अंकुरित गेहूं में उपस्थित फाइबर के कारण एके नियमित सेवन से पाचन क्रिया भी सुचारू रहेला। अतः जे लोग के पाचन संबंध समस्या हो उ लोग खातिर भी अंकुरित गेहूं के सेवन फायदेमंद है। तो चलिए अब हम बता दें कि गेहूं के अंकुरित रुआ कैसे करें। गेहूं अंकुरित करे खातिर अच्छा गुणवत्ता के गेहूं ली आ गेहूं के साफ करके 6 से 12 घंटा खातिर पानी में भिंगा दी। गेहूं के दिन में 3 बार पानी से धोई। अब गेहूं के कपड़ा में बांध के रख दी। अंकुरित होके पर मनचाहा तरीका से एकर प्रयोग करी। बच्चा खातिर भी रउआ ऐसे पराठा, सॉफ्ट पूरी, सैंडविच जैसन चीज बना सकता नहीं। उहे डाइट कॉन्शियस लोग एकरा के सिंपल तरीका से नींबू तथा हल्का मसाला के साथ खा सकेला। तो दोस्त लोग ई रहला गेहूं से जुड़ल कुछ घरेलू नुस्खा। अब चलिए हम बता दी हर मौसम में आहार के नियम। तांबा के बर्तन में पिए वाला पानी रखे के चाहिए आ सुबह उठते ही एक ग्लास पानी पिए के चाहिए। खाना 10 से 12 बजे के बीच खाए के चाहिए। खाना खाते समय खुश रहे के चाहिए। भोजन के साथ सलाद खाए के चाहिए। दोनों समय के भोजन के बीच 7 घंटा के अंतर होके के चाहिए। खाना के साथ थोड़ा पानी पिए के चाहिए, ज्यादा ना। खाना खाए के बाद कुल्ला जरूर करी। खाना खाए के बाद 500 कदम चले के चाहिए। रात के खाना 6 से 9 बजे के बीच खाए के चाहिए, रात के 10 बजे के बाद कुछ ना खाए। रात के सूते के पहले दूध जरूर पिए के चाहिए, खाना खाए के बाद बायां करवट आराम करे के चाहिए। रात के खाना सूते से 2 घंटा पहले खाए के चाहिए, रात के ब्रश करके सूते के चाहिए। खाना के समापन मिठास के साथ करे के चाहिए, यानी खाना के बाद अंत में एगो मीठा चीज जरूर खाए। तो दोस्त लोग ई रहल है आज के हेल्थ टिप्स, जौन के अजमा के रउआ पा सकतनी निरोगी काया। तो अति हमरा के यानी आपन दोस्त दीपाली के जाए के अनुमति, आ रखी रउआ आपन सेहत के ख्याल। नमस्कार।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
14: कॉल करें 87894 18744।
15: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
16: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
12: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
14: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
12: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
14: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
12: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
14: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
12: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
14: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
12: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
14: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
17: हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। यानी हम सब में महादेव है। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। मैं सोचता हूं कि अगर हम सब में महादेव है तो हम सब में बिड़ू वही ताकत है। उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई चमत्कार कर सकते हैं या अमर रह सकते, पर जिंदगियों को बदलने की ताकत हम भी रखते हैं। ऐसे ही एक बिड़ू से मैं आप लोगों को मिलाता हूं। उसका नाम है नील। शिव को बहुत मानता है, उनकी कहानियां सुनाते रहता है, उनके सिखाए हुए रास्ते पे चलता है। उसकी भी थिंकिंग मेरे जैसे ही है। उसको भी यही लगता है कि हर चीज, हवा, पानी, नेचर और हम सब में शिव बसता है। कोई शक ही नहीं है बिड़ू। वैसे नील एक ट्रैवलर है, अपनी बाइक नंदू नंदू पर इंडिया का चक्कर लगा रहा है। देश के कोने कोने में जाकर लोगों को कहानियां सुनाना, उनकी परेशानियां दूर करना, ये एक पैशन है उसका। नील के इस जर्नी में आप और मैं उनके साथ चलते हैं और कुछ सीखते भी है। क्या बोलते हैं, डन? चल ठीक है, रोज मिलते हैं नील की जुबानी भगवान शिव की एक नई कहानी के साथ।
18: भैया कितने पैसे हुए?
19: अरे जाने दो भैया, कोई बात नहीं, जाइए भगवान के दर्शन कर लीजिए, वो आपके मदद जरूर करेंगे।
18: अरे यार रुकिए रुकिए, कहिए कैसा आना हुआ?
20: मतलब दर्शन करने शिव के?
18: बड़ा अच्छा ख्याल है भैया, बताइए कितना चढ़ावा दे सकते हैं?
20: एक मिनट, क्या मतलब चढ़ावा? देखिए भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बस दर्शन करने हैं।
18: देखो भाई, पीक सीजन का समय है, अब से वीआईपी लोगों को दर्शन कराएंगे, वो जो भारी चढ़ावा चढ़ाएंगे।
20: और अगर ना हो मेरे पास पैसे तो क्या दर्शन नहीं कर सकता मैं? हाँ बताइए।
18: अरे भाई पैसा नहीं है तो इतना देर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? देख नहीं रहे थे कितने बिजी लोग हैं हम लोग? जाइए। जय शिव शंकर।
20: कहाँ फंस गया हूँ मैं, चलो कुछ देर टहल ही लेता हूँ।
18: दादी देखा आपने, हाँ
20: कहाँ फंस गया हूँ आपके चक्कर में, क्या फायदा हुआ आपकी भक्ति का? हाँ अब क्या इस सिचुएशन में मुझे बचाने आपके शिव आएंगे?
21: एक्सक्यूज मी, आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हैं?
20: आपसे मतलब?
21: जी वो मैंने दूर से देखा तो सोचा जाकर पूछ लूं, कहीं सुसाइड करने का प्लान तो नहीं है?
20: एक्सक्यूज मी, आपसे मतलब?
21: वो एक्चुअली सच मानिए पानी बहुत ठंडा और गहरा है। By the way, I'm Neil.
20: आकाश, मैं अभी रामेश्वरम आया और आते ही मेरा कमाल का वेलकम हुआ है।
21: क्यों? क्या हुआ?
20: अरे यार क्या बताओ, दादी की विश थी कि रामेश्वरम के दर्शन करने उन्हें, वो तो कर नहीं पाई लेकिन मैं इमोशनल हो गया और गलती कर बैठा और यहाँ आ गया। आते ही मेरा वॉलेट चोरी हो गया और जिस दर्शन के लिए आया वो भी रह गए। कहते हैं कि वीआईपी कोटा में ही दर्शन होंगे, मतलब पैसे देकर।
21: अच्छा, डोंट वरी, आई एम श्योर शिव कोई सलूशन देंगे।
20: नहीं भाई, भोलेनाथ कुछ नहीं करते। कुछ लोग होते हैं मेरी दादी जैसे, वो सोचते हैं कि उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन सच तो ये है कि आज के जमाने में पैसे से बड़ी शक्ति किसी की नहीं है। मंदिरों में पंडित कम, डीलर ज्यादा दिखाई देते हैं।
21: हाँ लेकिन भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है।
20: रबिश, आई डोंट बिलीव इट।
21: अच्छा जाने दीजिए, ये बताइए क्या आपको इस मंदिर की कहानी पता है?
20: जी नहीं, बताओ जरा।
21: आओ मेरे साथ आओ।
20: चलो। हे, नाइस बाइक यार।
21: थैंक्स। इसका नाम नंदू है। बैठो। जानते हो आकाश, जहां ये मंदिर आज खड़ा है वहीं श्री राम लंका जाने से पहले कुछ समय रुके थे, तभी एक ऋषि उनसे मिलने आए।
22: श्री राम प्रणाम। कहिए ऋषिवर, आप धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं। एक बात का स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है कि रावण एक शिव भक्त है प्रभु, वो शिव की आराधना अवश्य करेगा। आप भी युद्ध से पहले महादेव की पूजा करें, विजय अवश्य आपकी ही होगी।
23: हम इसी समुद्र तट पर महादेव की पूजा करेंगे, बस एक समस्या है।
22: क्या समस्या है प्रभु?
23: यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है।
24: प्रभु आप आदेश तो दीजिए, मैं कैलाश से महादेव का प्रतीक ले आऊंगा।
23: किंतु पवन कुमार, कैलाश यहाँ से बहुत दूर है, हमें महादेव की पूजा मुहूर्त पर आरंभ करनी होगी, तुम समय पर लौट नहीं पाओगे।
24: मैं ले आऊंगा प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
23: तो ठीक है बजरंगी, जाओ और महादेव का प्रतीक लेकर शीघ्र लौटना।
24: जय श्री राम।
23: हे महादेव, बजरंगी की भक्ति पर मुझे कोई संदेह नहीं है, पर उसका ये अहंकार तोड़ना बड़ा आवश्यक है, मेरी सहायता करें।
24: हे प्रभु, इतनी बर्फ, इस तूफान में मैं कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचूंगा? समय भी तो नहीं है। पिताश्री, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। हे पवन देव, अपने पुत्र की सहायता कीजिए। धन्यवाद पिताश्री, आपकी सहायता से अब मैं श्रीराम को दिया वचन पूरा कर सकता हूँ। अरे वो रहा कैलाश पर्वत।
0: जय श्री राम।
24: अरे ये कैलाश पर्वत इतना विशाल क्यों है? यहाँ महादेव को कैसे ढूंढूं? मुहूर्त का समय निकट आ रहा है।
0: महादेव, आप कहाँ हैं महादेव? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु।

0: अरे पवन पुत्र, मैं यही हूँ, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे?
1: प्रभु, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है।
0: कहो पवन पुत्र, क्या हुआ?
1: मेरे प्रभु श्री राम आपकी आराधना करना चाहते हैं और मैंने उन्हें वचन दिया है महादेव कि पूजा करने के लिए आपका प्रतीक शिवलिंग लेकर आऊंगा। वो सागर तट पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
0: जहाँ भक्ति है वहाँ मैं सदा रहता हूँ पवन पुत्र, मेरी प्रतीक की क्या आवश्यकता है?
1: ऐसी बातें करके मेरी परीक्षा ना ले प्रभु, मुहूर्त का समय बीत जाएगा, आपका शिवलिंग शीघ्र प्रदान कीजिए महादेव।
0: ठीक है पवन पुत्र, तुम चाहते ही हो तो ये लो मेरा प्रतीक। तुम्हारी भक्ति के सामने मैं हट नहीं करना चाहता, पर जाते जाते मैं तुम्हें एक बात स्मरण कराना चाहता हूँ कि भक्ति की शक्ति ही सबसे बढ़कर होती है बजरंगी। तुम भी अपनी भक्ति ही निभाओ।
1: अवश्य महादेव, मैं चलता हूँ। धन्यवाद।
2: जय श्री राम।

0: ये स्वर, ये क्या? महादेव की पूजा आरंभ हो गई? प्रभु ये क्या, आपने मेरी प्रतीक्षा किए बिना ही पूजा आरंभ कर दी?
1: भैया आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे बजरंगी, पर मुहूर्त निकला जा रहा था, आपने आने में इतनी देर कर दी, इसलिए भैया के सुझाव पर इस समुद्र तट की रेत से शिवलिंग बनाई और उसकी स्थापना के साथ हमने पूजा आरंभ कर दी।
0: पर ये स्वयं महादेव का दिया हुआ शिवलिंग छोड़कर इस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा होगी? मैं कितने कष्ट भोग कर ये शिवलिंग यहाँ तक लाया हूँ, और प्रभु आप इस
2: दुखी ना हो बजरंगी, अभी भी मुहूर्त का समय शेष है। यदि तुम वो मिट्टी का शिवलिंग हटाकर कैलाश से लाए शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर दो तो उसी शिवलिंग की पूजा होगी।
0: हाँ ये ठीक है, मैं अभी शिवलिंग की स्थापना करता हूँ। अरे ये तो सिर्फ रेत का बना है, ये उठ क्यों नहीं रहा?
2: अरे बजरंगी तुम ठीक तो हो, कहाँ जा रहे हो?
0: मैं ठीक हूँ प्रभु।
2: क्या हुआ पवन पुत्र, यहाँ ऐसे एकांत में क्यों बैठे हो?
0: मैं असफल हो गया प्रभु, मैं एक मिट्टी के शिवलिंग तक को नहीं उठा पाया, तो युद्ध में आपकी सहायता कैसे कर पाऊंगा?
2: तुम असफल नहीं हुए हो मेरे प्यारे हनुमान, ये सब महादेव की लीला थी।
3: पवन पुत्र।
0: महादेव आप?
3: हाँ पुत्र, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए हमने ये रास्ता अपनाया। श्री राम ने भी उस मिट्टी की शिवलिंग को भक्ति से बनाया था बजरंगी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही मुझसे प्रार्थना की थी कि तुम्हारा अहंकार तोड़ने में मैं उनकी सहायता करूं। तुम्हें ज्ञात कराना आवश्यक था कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है।
2: चलो आओ, तुम कैलाश से लाए इस शिवलिंग को इस शिवलिंग के निकट स्थापित करो, और भक्तजन इस रेत से बने शिवलिंग से पहले कैलाश से लाए तुम्हारे इस शिवलिंग की पूजा करेंगे। और बजरंगी याद रखना, इस शिवलिंग को पूरे मन से भक्ति से स्थापित करना, क्योंकि महादेव वहीं होते हैं जहां भक्ति होती है।
3: पवन पुत्र, क्या मुझे दोबारा तुम्हें स्मरण कराने की आवश्यकता पड़ेगी?
0: नहीं प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है।
4: तुम जानते हो, इसीलिए रामेश्वरम से पहले हनुमदेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। चलो मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ।
5: इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी कहानी है, पर ये कलयुग है ना, अब ऐसा कहाँ होता है, और अगर होता है तो बुलाओ शिव जी को, शायद वो इन डीलर्स को समझा सके।
4: अरे क्या बात कर रहे हो, शिव तो हमारे पास भी है, सुना है ना, हर हर महादेव, शिव तो हम सब में बसते हैं, यानी हम सब खुद की और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, बस कोशिश करने की जरूरत है।
5: अरे अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये क्या, ये तो वही डीलर है जो मुझे वीआईपी दर्शन करवाने वाला था, ये कहाँ जा रहा है?
4: अच्छा देखते हैं क्या कर रहा है।
5: अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, ये तो मेरा वॉलेट है।
4: कमाल है भाई साहब, आप भोलेनाथ के नाम पर धंधा कर रहे हैं, भोलेनाथ को पता लगा तो दंड मिलेगा।
5: भोलेनाथ क्या, इसे तो मैं ही निपटा दूंगा।
4: नहीं आकाश, इन्हें पुलिस में दे देते हैं।
6: नहीं नहीं, हम तो बस
5: क्या वीआईपी दर्शन करवाएगा।
6: माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।
4: रुको रुको, तो भाई ऐसा है कि इन्हें तो अब तुम फ्री में दर्शन कराओगे ही, पर वहां आने वाले सभी टूरिस्ट को अब से तुम फ्री में ही दर्शन कराओगे। वीआईपी दर्शन के धोखे में जो तुम लोगों को फांसते हो सब बंद करोगे, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, पुलिस को सब सच बता देंगे, समझ गए?
6: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
5: सही बात है। थैंक यू सो मच नील। अरे मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं, तुम कौन हो, यही रहते हो?
4: नहीं नहीं, मैं तो बस एक ट्रैवलर हूँ, ये समझ लो कि शिव को ढूंढ रहा हूँ लोगों में।
5: मतलब?
4: कुछ नहीं, चलो चलता हूँ, महादेव के घर जाना है, रास्ता बहुत लंबा है अमरनाथ का।
5: हे नील, फिर कभी मुलाकात होगी?
4: वहीं भोलेनाथ के धाम पर। हर हर महादेव।
7: वो ईश्वर जिसने संसार बनाया, उसको पैसे से क्या लुभाएगा। जो भक्ति करे सच्चे दिल से वो हर मुश्किल पार कर जाएगा। पैसों से कुछ इंसानों का दिल जीता जा सकता है, भगवान के सामने तो सिर्फ भक्ति चलती है बिड़ू। अगर महादेव को सच सच में खुश करना है तो बाहर गरीबों को भी खाना खिला दे बाबा। सोने पे सुहागा, हो सकता है शिव डबल टिबल खुश। शिव भक्तों से प्यार करता है, शिव भक्ति से प्यार करता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिए और हो सके तो इस पर अमल कीजिए। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
8: ठक ठक।
9: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
11: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: स्टूडियो 5 एन इस्लामिक रेकॉर्ड लेबल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003। 62042434003।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ।

0: द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
2: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने जिला स्थापना शाखा का किया औचक निरीक्षण। श्रावण मास के मेला को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने धनेश्वर नाथ सिंहासनी मंदिर का किया निरीक्षण। गुरुवार 30 जुलाई को मंगलपुर पुल पर आवागमन किया गया है बाधित। श्रम विभाग के धावा दल ने एक बाल श्रमिक को कराया विमुक्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज समाहरणालय के स्थापना शाखा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उप समाहर्ता संदीप कुमार और कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय की समग्र व्यवस्था, उपस्थिति पंजी, स्टॉक पंजी एवं विभिन्न संचिकाओं के रखरखाव का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी संचिकाओं फाइलों को वर्षवार क्रमानुसार व्यवस्थित रखें ताकि अभिलेखों की उपलब्धता सुगम हो सके। कार्यालय के अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही प्रशासनिक गरिमा बनाए रखने के लिए सभी कर्मियों को औपचारिक वेशभूषा में ही कार्यालय आने तथा परिसर में साफ सफाई बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए गए। सदर SDM के द्वारा धनेश्वर नाथ सिंहासनी श्रावणी मेला 2026 को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में बैरिकेटिंग, CCTV कैमरों की स्थापना, पेयजल, शौचालय, एम्बुलेंस, अग्निशमन व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां गुणवत्ता पूर्ण तरीके से सुनिश्चित करें ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। श्रावण के सोमवार के अवसर पर संभावित भीड़ को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष को प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार में अनिवार्य रूप से मेला परिसर में उपस्थित रहकर तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत रूप से ब्रीफ करने का भी निर्देश दिया गया। कल 30 जुलाई यानी गुरुवार को सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 6 घंटों के लिए मंगलपुर विष्णुपुर हाई लेवल RCC पुल को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मरम्मत कार्य के चलते सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने और जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। थावे प्रखंड के प्यारेपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। जिलाधिकारी ने इसको संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस मामले में जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। श्रम संसाधन विभाग ने प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार और जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अंतर्गत गठित बाल श्रम विमुक्ति धावा दल के माध्यम से आज थावे मंदिर परिसर में मां स्वीट चाट कॉर्नर एवं मिष्ठान भंडार में छापेमारी की। यहां से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। उक्त धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी थावे, सिधवलिया, माझा और गोपालगंज सदर के साथ गोपालगंज पुलिस लाइन के पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल भी शामिल थे। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि विमुक्त बाल श्रमिक को तत्काल 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया गया है और आगे इसमें संस्थान पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 113 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब और बियर को जब्त किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने फुलवरिया थाना क्षेत्र के बालेपुर गांव में की, जहां प्रमिला देवी के कस्बे वाले पुराने एक रूम के कमरे से यह शराब की कंसाइनमेंट जब्त की गई। इस मामले में प्रतिमा देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह 62 वर्ष की महिला है और स्वर्गीय राम नरेश सिंह की पत्नी बताई जा रही है। बालेपुर थाना फुलवरिया की निवासी है। इसके साथ ही सुविंदर सिंह को पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया परंतु यह फरार हो गया है। यह अभी स्वर्गीय राम नरेश सिंह का पुत्र है। इसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। यह बालेपुर फुलवरिया का ही निवासी है।

0: इन्हीं लोगों के एक मकान से पुलिस ने 113 लीटर विदेशी शराब, बियर और देशी शराब को जब्त किया है। गोपालगंज के साधु चौक के पास पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष और चाकूबाजी हो गई, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में भी दोनों पक्ष फिर आमने सामने हो गए, जमकर हंगामा हुआ और अस्पताल परिसर में भी मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने चार लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया। कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश हो रही है। इस मामले में गंभीर रूप से घायल एक युवक को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है, दूसरे का सदर अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल हुए दो युवकों में से एक की स्थिति गंभीर है और गोरखपुर में इनका इलाज चल रहा है। पुलिस के प्राथमिकी जांच में यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत हुआ है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को भी पुलिस खंगाल रही है, ताकि वारदात में शामिल सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जा सके। इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिन से साधु चौक के पास मठिया गाँव निवासी जय प्रकाश और राजा के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसी बीच मंगलवार की देर रात दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर भिड़ गए। जहां विशाल गिरी बीच बचाव के लिए पहुंचे थे, तभी आरोपियों ने उन पर हमला कर जख्मी कर दिया। इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो वहां भी अस्पताल परिसर में चाकू से हमला किया गया। इनका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। पुलिस अब इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर जादोपुर क्षेत्र में भी जमीनी विवाद में मारपीट हुई, खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। इनका भी इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद परिजनों ने सदर हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती कराया। मामला जादोपुर के सिहोरवा गांव का है। यहां भूमि विवाद को लेकर 65 वर्षीय बुजुर्ग किसान नबी मियां पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। ये गंभीर रूप से जख्मी हैं और इनके बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि निजी जमीन पर मिट्टी गिराने को लेकर झगड़ा हुआ था और इस झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया और इसमें बुजुर्ग के सिर और पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया। जिस जमीन को लेकर विवाद था, उसकी पैमाइश के लिए अगले दिन का समय भी प्रशासन ने तय किया था। इससे पहले यहां खूनी संघर्ष हो गया। पुलिस ने अब इस मामले में भी पीड़ित के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर उचका गांव थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड के एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी का नाम साहेब हुसैन साईं उर्फ मुन्ना साईं है। यह उचका गांव के त्रिलोकपुर निवासी जहरुद्दीन साईं का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने अब इस पर आवश्यक धाराओं में केस दर्ज करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी अपहरण कांड के मामले में फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शिवजी पांडे, पिता दीपा पांडे, साकिन सहुली, थाना हुसैनगंज, जिला सिवान का निवासी है। इस पर 2016 में ही एक अपहरण का मामला दर्ज हुआ था और तभी से यह फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त परमा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। यह बैकुंठपुर के सिरसा मानपुर गांव के झिझरी ठाकुर का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी पर भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी, तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से 246 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही बोलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा दुर्गा स्थान के पास छापेमारी की, जहां बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया। इस गाड़ी से 246 लीटर विदेशी शराब मिली। इस मामले में पकड़े गए आरोपी दिनेश यादव बेतिया जिला के शिकारपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया नरकटिया गंज गांव का निवासी है और यह स्वर्गीय गौरी यादव का पुत्र बताया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर कहीं सप्लाई के लिए जा रहा था, तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। इसकी बोलेरो गाड़ी और 246 लीटर शराब को भी जब्त किया गया है। नगर परिषद की खरीदारी में फिर से सवाल खड़े हुए हैं। नगर परिषद में वर्ष 2015 से 2022 के बीच डस्टबिन, पोल लाइट और स्ट्रीट लाइट की खरीद में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। प्रकाश रंजन ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए सीधे अपने मोबाइल फोन से ही इस रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने जिला स्थापना शाखा का किया औचक निरीक्षण। श्रावण मास के मेला को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने धनेश्वर नाथ सिंहासनी मंदिर का किया निरीक्षण। गुरुवार 30 जुलाई को मंगलपुर पुल पर आवागमन किया गया है बाधित। श्रम विभाग के धावा दल ने एक बाल श्रमिक को कराया विमुक्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
13: ये है मेरी कहानी।
14: मैंने बीच में एक ऐसा दौड़ लिया था, क्योंकि जब मैं रेडियो और टीवी दोनों करता था, शुरुआत मीका बाजी की एल्बम आ गए, उसके बाद एक आध गाने आने लग गए, फिर गाने हिट होने लग गए, फिर ऐसा हो गया था कि अलग अलग सिंगर्स का दौरा, मोहित चौहान का एक दौरा आया था, सोनू बाजी का एक दौरा आया था, सुखविंदर बाजी तो रहते रहते, लेकिन एक जमाना ऐसा गया था जैसे अरिजीत का आज का दौर, आपके सालों तक ऐसा दौर चला था दैट ऑलमोस्ट एवरी सेकंड सॉन्ग वाज मीका बाजी। तो उस समय चाहे वो सलमान खान की फिल्म का हो, आज की रात पार्टी हो, चाहे वो सारे सुबह होने ना दे हो, जो आज भी, और लोगों ने बोला था कि एवरग्रीन आवाज नहीं है, लेकिन आई सी देम इन द प्लेलिस्ट ऑफ रेडियो स्टेशन ऑल द टाइम फॉर मेनी मेनी इयर्स। तो ये दौर कैसे आया, कैसे वो क्लिक हो गया बॉलीवुड के अंदर?
15: बॉलीवुड में क्या था, एक जब भी मैं किसी म्यूजिशियन के साथ काम करता हूँ मैं उनको अलग आवाज देता हूँ। लोगों को लगता है मेरी एक टिपिकल आवाज है। अगर आप सुबह होने ना देखे या फिर मेरा गाना आया था साजना है दिल को देर, वो मिका या फिर वो गबरू वाला मिका या साउंड लग गया या डिंका चिका, इन सब में आपको एक वोकल मिका की ही रहेगी लेकिन अलग वाला मिका होगा। देन सिंग इज किंग हो गया, गणपत हो गया। तो मुझे था कि हर बार एक तो 25% में अपना जरूर

0: यू नो कंपोजिशन में डालता हूँ, कोई भी गाना जैसे होता है, तो मैं थैंक्स टू प्रीतम फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रीतम ने हमेशा मुझे एक फ्रीडम दिया कि यार मीका कभी भी प्रीतम रिकॉर्डिंग पे नहीं आया, उन्होंने हमेशा बोला कि मीका गाना गा रहा है, मुझे मीका मीका के स्टाइल में चाहिए, हम मीका को बार बार नहीं बोलेंगे ऐसा गा आप जैसा गाना चाहो, कभी भी प्रीतम ने ये नहीं बताया कि हीरो कौन है, मौजा मौजा के टाइम नहीं मुझे पता था कि ये जब भी मैं इतनी बड़ी फिल्म है या फिर सुबह होने ना दे गाना अक्षय पाजी के ऊपर होगा या जॉन के ऊपर होगा, तो ये बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मुझे हमेशा एक फ्रीडम दी कि मीका अपने स्टाइल में गाओ, और कई जगह मैं भी फैल जाता हूँ कि नहीं मुझे गाना ही ऐसा है।
1: सुनते रहिए ये मेरी कहानी एक सीरीज स्पेशल में मीका सिंह की कहानी,
2: ये है मेरी कहानी।
1: मीका पाजी का घर है जहाँ पे बोट लेके उनके घर में जाना पड़ता है, आइलैंड है मीका पाजी का, दिस इज ट्रू, ही हैज अ होल मोट अराउंड दिस एंटायर एरिया जहाँ पे बोट लेके जाना पड़ता है, ये जो कासल वासा फील आया, आई रियली लाइक दिस वन साइड ऑफ यू, लेकिन दूसरा साइड भी जो आप दिखाते नहीं हो, आपने कितने सारे लोगों को पालना है रॉन्ग वर्ड, लेकिन कितने सारे लोगों की जिंदगियां बना दी है, यू हैव अ लवली साइड ऑफ योर जहाँ लड़कियों के लिए आपने स्कूल भी खोल रखे हैं, एंड यू आर, मैं जानता हूँ कितने सारे लोग आपके इनकम पर जीते हैं, दैट पार्ट इज ऑल्सो देयर ऑफ योर जो दैट यू डोंट लाइक टू टॉक अबाउट, ये तो ठीक है,
0: मुझे अच्छाई अच्छी लगती है, मुझे ज्यादा पीपल शुड हेट मी,
1: नहीं बट ये दूसरा जोन भी है,
0: दूसरा साइड मैं बताना चाहता हूँ, मैं चाहता था कि लाइफ में जैसे जो मैं जी रहा हूँ, आज आपने ये भी देखा होगा पूरे मुंबई में आपने इतनी बड़ी रियासत में देखी होगी किसी की, क्योंकि लाइफ में एक ही बार जीना, आपने क्यों कंजूसी करनी है, क्यों इतना, और ज्यादातर हम फ्यूचर सोचते रहते हैं, फ्यूचर किसी का कुछ भी हो सकता है, तो मुझे था कि वन टाइम हमने लाइफ जीना है, तो भाई एंजॉय करो, और बाकी जैसे जैसे मैं सोचता गया वैसे वैसे भगवान ने बहुत ज्यादा दिया यार, 150 रुपए से मैं शुरू हुआ था गिटार प्ले करना, तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ, और मैं हमेशा मेरे जो इवन जो आप कुक देख रहे हो इसको भी 20 साल हो गए, ये भी बेचारा मुझे छोड़ के नहीं जाता, मैं कह यार तू कभी तो भाई कहता नहीं सर आपके आपके अलावा मुझे और कोई सिंगर नहीं इतना पैसा दे सकता।
1: सुनते रहिए ये मेरी कहानी एक सीरीज स्पेशल में मीका सिंह की कहानी,
2: ये है मेरी कहानी।
1: सबसे बड़ा अगर ऐसे कोई शो के बारे में इंसिडेंट बोले तो बहुत लोग प्यार करने के वाले आते होंगे, ऐसा कोई इंसिडेंट याद है जब आप भी चौंक गए थे बोला कि भाई प्लीज यार थोड़ा मतलब इतना ज्यादा कोई आ गया है?
0: नहीं, जैसे मैंने वैसे ही हवा में बोल दिया था कि भाई मुझे आज 20,000 करोड़ चाहिए, जो मैंने दुबई वाला शो बता रहा हूँ, मुझे 20,000 चाहिए आज, मुझे पता था क्या कौन आता है 20,000, चलो ट्विटर पे जो देखेंगे वो तो खुश हो जाएंगे कि हाँ आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो जब ये 70,000 बंदा आया तो वो बहुत ही बड़ी बात थी कि इतना पूरा हजूम खड़ा, फिर मुझे लगा था कि मैं अभी गाऊं क्या, कैसे शुरू करूँ, क्योंकि इतना बड़ा मिक्स क्राउड है और किसको मैं खुश करूंगा, फिर मैंने वही दमा दम मस्कुलर लगाया, देन अपने जो गाने थे पर मुझे बहुत अच्छा लगा, और सेम कनाडा में हुआ था तो वहां भी 1.5 लाख बंदा आया
1: एक शो में, 1.5 लाख
0: एक शो में 1.5 लाख, फिर मैंने बर्मिंगम में करा, हालांकि लंदन में मेरे बड़े कम शोज होते हैं, तो मैं पहली बार बर्मिंगम शो मैंने करा तो वहां भी 50,000, अभी भी मेरी जो फोटो रहती है हमेशा ट्विटर पे वही लगी रहती है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है यार लोग इतना प्यार करते हैं, एंड फिर मैं दुबई घूम रहा था अभी मॉल में, तो फैंस आए, मुझे लगता था वो मुझे बोलेंगे यार कोई नया गाना, वो कह रहे हैं तेरे आगे नहीं चलनी मोटे, उनको पता नहीं कि मैंने बॉलीवुड में और भी गाने हैं, वो वहीं पे टके ने हमें पता भी भाई दुनाली वाला गाना चला इसका, तो ये भी बड़ी अजीब बात होती है।
1: सुनते रहिए ये मेरी कहानी एक सीरीज स्पेशल में मीका सिंह की कहानी।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: ये है मेरी कहानी।
9: और लास्ट में पूछना चाहूंगा, ये फिनोमिनन जो भी नाक से बड़े फेमस हुए थे, हिमेश रेशम, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
10: हिमेश का गाना मैंने बहुत पहले गाया था। मुझे याद है जब हिमेश भाई मुझे मुझसे गवा रहे थे, तो मुझे बार बार जब वो बता रहे थे, मैंने बोला यार आपकी जो आवाज है ना, बिल्कुल मेरी जैसी आवाज है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गा रहा हूँ। पता नहीं उनको अब तो बहुत बड़े स्टार है, याद नहीं ना रहे, बोलते भैया आपको गाना चाहिए, आप क्यों नहीं गाना गाते, आपकी इतनी मतलब बिल्कुल ठीक आवाज जैसे टोन। अब ये भी नहीं मुझे पता तब उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि सिंगर बनना नहीं बनना, भगवान जाने उनका पहले ही इरादा होगा। बट सडनली देन फिर उन्होंने एकदम एक डेढ़ साल बाद उन्होंने गाना पूरा धड़ाधड़ शुरू कर दिया। और शुरू क्या कर रहा, 2007 में तो पूरा ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। अब 2007 में मुझे पहला ब्रेक मिला जो था एक गन पर चल दारुला। संजय गुप्ता जी मुझे किसी पार्टी में मिले, उन्होंने कहा यार ऐसा ऐसा कोई गाना बनाओ। तो मुझे था कि मैं कोई ऐसा गाना ना गाऊं जिससे फिर मेरी नाक से नाक लड़ जाए, तो मुझे पहला ऐसा गाना गाना है जिससे मेरी आवाज बन जाए। क्योंकि अगर मैं कोई भी गाना गाऊंगा, उस वक्त हिमेश सुपरस्टार था कि अगर कोई भी गाना गाएगा तो ऐसा लगता है कि हिमेश ही गा रहा है। तो मैंने जानबूझ के डिसाइड करा कि भाई मुझे गणपत गाना है, गणपत शजदारुल्ला, और मैं एक ऐसी आवाज लेके आऊंगा जो पांच लोगों पे सूट करनी चाहिए। तो ये ट्रेंड मैंने शुरू करा कि मैं एक सिंगर गाता हूँ तो चार चार हीरोज पे डांस कर रहे थे, जैसे सुबह उन्होंने दे जॉन भाई एंड अक्षय पाजी, फिर सिंगर्स किंग में पांच करेक्टर्स थे, एक ही आवाज थी, देन अपनी तो जैसे जैसे में तीनों थे। तो फिर मैंने ठान लिया कि मैं एक आवाज दिया करूँगा और चार चार एक्टर्स के ऊपर वो सूट करनी चाहिए। तो पहला गाना मेरा गणपत था, जो कि मेरा था कि मैं ऐसा गाना ना गाऊं जिससे सारा क्रेडिट हिमेश भाई को हो जाए, जैसे आज कोई भी गाना अंकित गाता तो अरिजीत को पैदा हो जाता है।
11: इंडिया में शायद ही ऐसे कोई भी पार्टी या गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन हो जहां मीका बाजी के गाने समाना बांधे हो।
8: ये है मेरी कहानी।
9: और लास्ट में पूछना चाहूंगा, ये फिनोमिनन जो भी नाक से बड़े फेमस हुए थे, हिमेश रेशम, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
10: हिमेश का गाना मैंने बहुत पहले गाया था। मुझे याद है जब हिमेश भाई मुझे मुझसे गवा रहे थे, तो मुझे बार बार जब वो बता रहे थे, मैंने बोला यार आपकी जो आवाज़ है ना, बिल्कुल मेरी जैसी आवाज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गा रहा हूँ। पता नहीं उनको अब तो बहुत बड़े स्टार है, याद नहीं ना रहे, बोलते भैया आपको गाना चाहिए, आप क्यों नहीं गाना गाते, आपकी इतनी मतलब बिल्कुल ठीक आवाज जैसे टोन। अब ये भी नहीं मुझे पता तब उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि सिंगर बनना नहीं बनना, भगवान जाने उनका पहले ही इरादा होगा। बट सडनली देन फिर उन्होंने एकदम एक डेढ़ साल बाद उन्होंने गाना पूरा धड़ाधड़ शुरू कर दिया। और शुरू क्या कर रहा, 2007 में तो पूरा ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। अब 2007 में मुझे पहला ब्रेक मिला जो था एक गन पर चल दारुला। संजय गुप्ता जी मुझे किसी पार्टी में मिले, उन्होंने कहा यार ऐसा कोई गाना बनाओ। तो मुझे था कि मैं कोई ऐसा गाना ना गाऊं जिससे फिर मेरी नाक से नाक लड़ जाए, तो मुझे पहला ऐसा गाना गाना है जिससे मेरी आवाज बन जाए। क्योंकि अगर मैं कोई भी गाना गाऊंगा, उस वक्त हिमेश सुपरस्टार था कि अगर कोई भी गाना गाएगा तो ऐसा लगता है कि हिमेश ही गा रहा है। तो मैंने जानबूझ के डिसाइड करा कि भाई मुझे गणपत गाना है, गणपत चलता रोला, और मैं एक ऐसी आवाज लेके आऊंगा जो 5 लोगों पे सूट करनी चाहिए। तो ये ट्रेंड मैंने शुरू करा कि मैं एक सिंगर गाता हूँ तो 4 हीरोज पे डांस कर रहे थे, जैसे सुबह अनुना दे, जॉन भाई एंड अक्षय पाजी, फिर सिंगर्स किंग में 5 कैरेक्टर्स थे, एक ही आवाज थी, देन अपनी तो जैसे जैसे में 3 थे। तो फिर मैंने ठान लिया कि मैं एक आवाज दिया करूंगा और 4 एक्टर्स के ऊपर वो सूट करनी चाहिए। तो पहला गाना मेरा गणपत था, जो कि मेरा था कि मैं ऐसा गाना ना गाऊं जिससे सारा क्रेडिट हिमेश भाई को हो जाए, जैसे आज कोई भी गाना अंकित गाता तो अर्जित को पैदा हो जाता है।
11: इंडिया में शायद ही ऐसी कोई भी पार्टी या गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन हो जहां मीका बाजी के गाने समाना बांधे हो।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: इन सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: मैं हूं सलील, आपका होस्ट और दोस्त, और आज मेरे साथ है गिग सिटी सीजन 2 में इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी लेकर आने वाला आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियन, रॉक स्टार, लोग के अगले कंप

0: An artist, lyricist, composer and singer, वो भी ऐसे जिनकी आवाज पर एक ही गाने में तीन तीन चार चार एक्टर्स लिप सिंग करते हैं और डांस भी. The so-called bad boy of Bollywood, Punjab, the Gabru, nature और lifestyle से nothing less than a king. The birthday boy, कल 10 जून को इनका बर्थडे था एक्चुअली और इसलिए मेरे साथ है King मीका सिंह.
1: ये है मेरी कहानी.
0: मीका भाजी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. मेरे मुंह से मीका पाजी निकल जाते हैं क्योंकि मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ. इतने सालों से आप वैसे ही सुपर फिट हो रहे हो. पहले थोड़े से ज्यादा मोटे थे, अब ज्यादा पतले हो गए, लेकिन बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है.
2: थैंक यू यार. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा कि मैं साल इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, स्पेशली आज के टू में जो इतने कमीनी हरकत करी है और इतनी मतलब इसकी वजह से आदित्य राय कपूर ज्यादा शरीफ नजर, बिकॉज ये हरामी जब था तो मुझे पूरी फिल्म में इसका कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा. एंड अब मजा आ रहा है कि आज मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ, भाई के साथ बैठा हूँ.
0: पाजी एक्चुअली क्या है कि वी हैव लर्न दिस फ्रॉम यू. अगर मैं वापस रोल बैक करूंगा दिल्ली के टाइम पे, मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स होते थे और वो जमाना ऐसा था, 1990s का एक दौर था, हर किसी को कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, हर किसी के पास बहुत सारे चीज थे जिससे वो आगे बढ़ सकते थे. लेकिन मीका के पास स्टेज प्रेजेंस था, मीका के पास ऐसा एक पावर था ओवर द ऑडियंस जो शायद लोगों के पास नहीं था. बॉलीवुड पर आपने जो कब्जा किया वो तो बाद में किया है, लेकिन पहले इवन इन स्टेज शोज एंड ऑल ये दौर जो था बिल्कुल अलग था. मुझे याद है दुनाली का एल्बम के टाइम पास, लॉट्स वाज स्टिल गोइंग ऑन दैट टाइम आल्सो.
2: एक्चुअली जो टाइम था ना 98 में एक बहुत बड़ा कंपटीशन था, सबसे हम सबका सबसे बड़ा कंपटीशन था, वो थे दिलीप भाई. बिकॉज़ दिलीप भाई एक लेजेंड एंड सुपरस्टार बादशाह, एक अच्छा यू नो कंपटीशन था जहाँ पे बहुत सारे सिंगर अपने अपने स्टाइल के गाने लेके आते थे और खुद गाना लिखते थे, कंपोज करते थे और फिर हजारों गानों में से हमारा भी गाना चल जाता था, जो कि बहुत बड़ी बात थी. बिकॉज 98 में मुझे याद है सिल्क रूट का डूबा डूबा आया, देन फिर जस्सी का दिल लगी आया, देन हरभजन मान आया, देन हंस पाजी आ गए. लेकिन एक अलग था बादशाह जो अलग ही चल रहा था, जो सबको फोड़ रहा था, वो तो दिलीप भाई और उनका डर दी रब रब तुरंग तुरंग होगी तेरी बल्ले बल्ले तारा तारा. तो उनके बीच में हमें बड़ा अच्छा लगता था, चलो यार हमारा भी कुछ थोड़ा थोड़ा नाम हो रहा है. तो उस वक्त मैंने यही ठाना था कि यार मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिखना है, बिकॉज ये सारे जितने भी सिंगर्स हैं दे आर फैंटेस्टिक, बहुत अच्छे हैं, बट दे आर नॉट बेटर देन मी. तो मुझे कुछ उनसे बेटर करना लाइफ में, तो इसलिए मैंने अपना स्टाइल मैंने फोकस करा कि सबसे जो वीकनेस होती है सिंगर की वो है परफॉर्मेंस. बिकॉज दिलीप भाई के साथ 8 साल काम करने के बाद, काम सीखने के बाद मुझे बहुत नॉलेज हो गई थी कि एक शो में यू नो कैसे बोलना है, कैसे खड़ा होना, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या लोगों को पसंद है.
0: सुनते रहिए ये मेरी कहानी, एक सीरीज स्पेशल में मीका सिंह की कहानी.
1: ये है मेरी कहानी.
0: पहला शो जब किया था ऐसे, हालांकि आप दिलीप भाई के साथ भी कर रहे थे,
2: जी जी जी,
0: कभी ऐसा लगा था कि यार क्या मैं कर पाऊंगा?
2: एक्चुअली पाजी के साथ ना मैं गिटार प्ले करता था, गिटारिस्ट, और डर्दी रबर मैंने कंपोज करा उस वक्त. तो मुझे कंपोज मुझे था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना, मुझे सिंगर मुझे लगता कि मैं बहुत ही ओके काइंड ऑफ सिंगर, वेल ट्रेंड ही था, ना सीखने की थी, मुझे लगता था बस म्यूजिक डायरेक्टर बनो, गाने बनाओ, यू अंडरस्टैंड. यार जब अनु जी गा सकते तो व्हाई नॉट मी. अनु जी थैंक्स टू यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर. तो मैं मुझे था कि जो भी म्यूजिक डायरेक्टर होता है शुरू से ही उसकी जो आवाज है हमेशा अलग होती थी, उसकी आवाज एक यूनिक आवाज होती थी, चाहे कोई भी आप म्यूजिक डायरेक्टर देखेंगे, इवन आनंद राजनाथ हो गया, हिमेश रेशमिया हो गया, मीका सिंह हो गया, जिसको कोई म्यूजिक करवाता नहीं है लेकिन गाने देते रहते, तो ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर की आवाज अलग होती थी. मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना था, बट पाजी कहते नहीं तो अभी और रियाज कर रहा है. मैं कहा भाई मैंने सिंगर नहीं बनना और रियाज मेरी जवानी निकलती जा रही, मुझे कूदना है. तो 98 में मैंने गाना सामने लग गया, जैसे बसोरा हो या अच्छा हो, कूद गया मैं.
0: भाई के साथ कभी कॉम्पिटिशन था दिमाग में? एटलीस्ट
2: कभी हो ही नहीं सकता वो तो, बिकॉज वो नंबर वन है. एंड जब वो स्टेज पे गाते हैं पूरी इंडस्ट्री को पता है, ये एक इंडस्ट्री थोड़ी सी कई बार चुप कर जाती है किसी की तारीफ करने के, लेकिन दो चार ऐसे गले हैं जिनमें से सुखविंदर सिंह, दिलीप भाई, ये जब गाते तो डेफिनेटली आप सोचे मत कि आप उनके आसपास खड़े हो गए. तो मैंने कभी कंपटीशन सोचा नहीं, बट मुझे था कि मुझे अपनी जगह बनानी है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, कि कैसे मैं नेजल टोन को, जब सब बोलते थे मीका नाक से गाता, आजकल इफेक्ट आता है कि आप ऑटो ट्यून डालो आपकी आवाज नेजल हो जाएगी.
0: सुनते रहिए ये मेरी कहानी, एक सीरीज स्पेशल में मीका सिंह की कहानी.

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरी, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
2: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर

0: 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए

0: अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
1: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज़।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 620313956।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10 बजे से 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
6: गोमी

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या? मुरारी लाल विजय कुमार,
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्ते लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लाकी ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान जारी। राज्य मंत्री परिषद ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,891 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी। प्रदेश में विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू, मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 3,79,000 से अधिक मतदाता 25 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही इस सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। इधर पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदान के लिए मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आशीष के पास। जी आशीष, कैसा माहौल है मतदान केंद्र का?
1: जी अभिषेक, मैं इस समय पटना विमेंस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर हूँ। यहाँ महिला मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है। सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से निकलकर लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हम आपकी सीधी बात करवाते हैं एक मतदाता से जिन्होंने अभी अभी अपना मतदान किया है।
2: संजू कुमार, उम्मीद तो यही है कि अच्छा करे, विकास करे, और क्या है इसमें।
3: सबसे पहले मतदान किया है आपने, और भी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
2: हम तो यही कहते हैं कि सब लोग से अपील करते हैं कि भाई सब लोग वोट दीजिए, अपना मतदान भूलिए मत।
1: जी अभिषेक, मैंने और भी कुछ मतदाताओं से बात की जिन्होंने कहा कि वो उन्होंने विकास समेत अन्य मुद्दों पर अपना मतदान किया है।
0: जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मतदान के लिए 164 मतदान केंद्रों पर कुल 422 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 30 आदर्श मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा 29 चलंत मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। सभी बूथों से मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। पोलिंग बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों के साथ साथ जिला पुलिस बल के 5,000 जवानों और होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है। मतदाता टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 पर निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी जा सकती है। प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,891 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें सेविका के 6,141 और सहायिका के 16,750 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2026 को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पोषक क्षेत्र के बहुल्य वर्ग की महिलाओं को चयन में प्राथमिकता मिलेगी।
4: समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन संशोधन मार्गदर्शिका 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें 2022 के पूर्व जो व्यवस्था थी बाहुल्यता के आधार पर चयन के, उस प्रक्रिया को लाया जा रहा है। इससे करीब करीब 22,000 सेविका सहायिकाओं के चयन का मार्ग प्रशस्त होगा।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में खेलों के विकास के लिए बिहार खेल नीति 2026 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के देने के साथ साथ इनके लिए पेंशन योजना का भी प्रावधान है।
4: बिहार खेल नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके चार पिलर हैं, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक कल्याण हेतु खेल तथा खेल एवं शिक्षा का एकीकरण। इसके लिए पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पहली बार है जब बिहार राज्य में खेल नीति की स्वीकृति दी गई।
0: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत कृषि के अतिरिक्त डेयरी, मत्स्य, कृषि व्यवसाय, भंडारण, प्रसंस्करण, सेवा क्षेत्र, पर्यटन और उभरते हुए गैर पारंपरिक क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
4: बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसका विजन है सशक्त सहकारिता समृद्ध बिहार। इसका मिशन है परंपरागत सहकारी संरचना को सुदृढ़ करते हुए सहकारी समितियों को आधुनिक, उत्तरदायी एवं प्रतिस्पर्धी आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित करना, नए एवं गैर परंपरागत क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से उन्हें भविष्य की चुनौतियों एवं अवसरों के लिए सक्षम बनाना, साथ ही युवाओं एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
0: श्री चौधरी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने चौथे कृषि रोड मैप के लिए 367 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने पटना और मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार निवारण मामलों के लिए 3 विशेष अदालतों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को दरभंगा जिले में रैयाम और मधुबनी जिले में सकरी चीनी मिल की आधारशिला रखेंगे। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के तहत इन दोनों मिलों की पुनर्स्थापना हो रही है। श्री कुमार ने बताया कि दोनों मिलों में अगले सत्र से पेराई शुरू करने का लक्ष्य है।
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 नवंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी। सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और 20 नवंबर को हम लोग इसका शुरुआत भी करेंगे।
0: राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नए प्रावधान के तहत प्रत्येक

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन महीने के चार सोमवार पड़ेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि पवित्र महीने की शुरुआत होने के साथ ही पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरियानाथ, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर, पटना के पैकटपुर धाम, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के बाणावर, लखीसराय के अशोक धाम, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दानापुर मंडल के फतुहा, हरदास बीघा, खुसरूपुर, करोटा, अथमलगोला, मनकट्ठा और गांधी हॉल्ट सहित विभिन्न स्टेशनों पर कई ट्रेनों का अस्थायी ठहराव किया गया है। यह व्यवस्था आज से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। राजधानी पटना में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस साल जिले में अब तक 68 लोगों में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले दो दिनों में चार नए मरीजों के साथ जुलाई महीने में अब तक डेंगू के 23 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को अगले महीने से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए पूर्व क्षेत्र की टीम का उपकप्तान बनाया गया है। टीम की कप्तानी ईशान किशन करेंगे। 15 वर्षीय वैभव को पहली बार लाल गेंद के इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में उपकप्तान की जिम्मेदारी मिली है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ताजा T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में वैभव ने 230 स्थान की छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल किया है। वहीं ईशान किशन T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। वैशाली जिले के चर्चित फुटकुंड शुक्ला हत्याकांड में अदालत हाजीपुर की एक अदालत ने दोषी दीपक कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 1997 में लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई भुटकुंड शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। औरंगाबाद जिले के जमहोर थाना क्षेत्र के बलिकरना गांव में भूमि विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में थानाध्यक्ष सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरारपुर इलाके में औषधि विभाग की टीम ने एक गोदाम पर छापेमारी कर लगभग 20 लाख रूपये मूल्य की नकली और सैंपल वाली दवाएं जब्त की है। मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के लव्वा लगान पूर्वी पंचायत के पौरा टोला में सड़क दुर्घटना में महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। पटना पुलिस ने चारधाम यात्रा के नाम पर हेलीकॉप्टर बुकिंग में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा से लोक परीक्षा, अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने और बिहार कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 10 घंटे घमासान के बाद एंटी पेपर लीक बिल पास, लोकसभा में राहुल ने छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर लगाए आरोप, सत्ता पक्ष ने किया विरोध। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य में

55,279 पदों पर बम्पर बहाली, 32,388 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, 6,141 सेविका और 16,750 सहायिका की भर्ती। दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के राज्यसभा में दिए बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, E20 से खराब हो सकते हैं BS3 वाहनों के रबड़ के पुर्जे। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बिजली कनेक्शन महंगा होगा लेकिन उपभोक्ता को सर्विस वायर नहीं देना होगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार में ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगी सरकार। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान जारी। राज्य मंत्री परिषद ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के 22,891 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी। प्रदेश में विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू, मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रमझम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हां, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रेंजर 90.4 FM में।
11: अस्सलाम वालेकुम मैम।
10: वालेकुम अस्सलाम,
11: मैं बोलता हूँ पठानपट से।
10: कैसी हैं आप?
11: ठीक बने आप?
10: क्या होता अभी?
11: अभी खाना पका था।
10: अच्छा, नाश्ता हो भैल बा की ना?
11: ना नाश्ता हो भैल बा, अब दाल चावल बनी सब्जी रोटी बने सुबेरे लड़का या सलमान करे बजे। और सब ठीक बा? नाश्ता तो भैल मैडम।
10: हाँ हम यू के हो गई बाबा,
11: जुमाला रिकॉर्डिंग आधे बाजल बना।
10: हाँ आधा बाजल हवे और थोड़ा सा बावे दो चार गो कॉल तो अनाज बाज दे।
11: हमरो बाकी है ना। कल तो पाप हो गए बच भी स्ट्रेस रे। मैम गाना बजे का बर्थडे वाला
10: सॉन्ग बता दी। केवल बर्थडे बावे?
11: बेटी के बर्थडे बा।
10: अच्छा, बेटी के का नाम है?
11: रोशन तारा।
10: अच्छा,
11: मैं खुशी कहे लो स्कूल में नाम लिखे रोशन तारा।
10: अच्छा जी, हम परिवार की तरफ से हुआ बजी के हार्दिक बधाई बा। अरे कौन सा गाना सुने तो? हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग बजा दी का?
11: हाँ बजा दी बर्थडे वाला। देखे तो था तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। वही वाला बजा दी।
10: अच्छा,
11: स्कूल गए लिए तो बोल के गए लिए मेरा बर्थडे गाना कही दो दिन हमारे गाना बाजे। बुध के दिन है?
10: बुध के हवे। अच्छा चलिए ठीक बा।
11: हाँ तो कौन आज कौन सा दिन बाज जाए ना, तो फिर तो कल तो बजी बाजी की ना बाजी कौन ठीक नहीं के।
10: कही नहीं है
11: बोले कह दुनिया।
10: चलो
11: क्वालिटी एक हफ्ता बाद देख लिया ठीक बा और सब ठीक बा
10: और सब ठीक बा
11: तबे तो ठीक बा नो बाद में गाना बाजे होते हैं
10: हाँ हाँ बजा दें
11: बजा दें गाना
10: चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM
11: ठीक बा।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: अब मैम हमको सॉन्ग सुनना है आज।
0: जी बता दीजिए कौन सा।
1: इतिहास पिक्चर का कोई भी सॉन्ग चला दीजिएगा।
0: इतिहास मूवी का कोई भी सॉन्ग।
1: जी
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट रहेगा?
1: पहले तो आपको अति मैम बोले है ना, और जितना रेडियो दोस्त सुन रहे हैं उन सभी लोगों को साथ में सुनना चाहता हूँ। हमारा नाम पड़ेगा ओम साई टेलर राघव जी बंजारी रोड पुलिसन के सामने गोपालगंज।
0: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।
1: थैंक यू मैम,
0: वेलकम।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंतोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महादेव।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034-48652 पे।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
10: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो, भारती जी बोल रहे क्या?
12: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
13: जी मैं महाराज से जमुना प्रसाद बोल रहा हूँ।
12: जी
13: मुझे गाना सुनना था।
12: बता दीजिए।
13: वो जाने वाले भीना फिल्म का है, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले, तो सुनवा दीजिएगा।
12: बिल्कुल, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
13: डेडिकेट रिमी परिवार को, आराध को भी, सुनी सुबह को।
12: ओके
13: जी, और कब तक सुनाइएगा मैडम?
12: आपको ये सॉन्ग कल या आज सुनने को मिल जाएगा, मतलब शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच जो बजता है ना उसी में।
13: जी जी जी, और मैडम सबको अच्छा है ना?
12: हाँ हाँ सर, सबको अच्छी।
13: जी जी,
12: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
13: जी मैडम।

0: हेलो
1: मैम
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे, आप सौ का इंतजार करते हुए।
0: कौन सा गाना सुनना है
1: जी आज हमको? सुनवा दीजिएगा गाने के बोल है मैम।
0: बता दीजिए
1: जी, फिल्म जी का सुनवा दीजिएगा मैम। तू धरती में जाए कहाँ भी रहेगा, धड़कन से पहचान लूंगा। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रंजन दो लोगों से, सभी दोस्तों के साथ में।
0: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।
1: ओके मैम, धन्यवाद।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97-644।
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: जी एक और बहुत स्वागत है आपका 90.4 FM में। जी नमस्ते,
13: क्या हाल है?
12: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए। कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
13: गाना सुनना था, गीता था, किसे लिए बता रहे
12: हैं? और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है? जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: नमस्ते भाग्य मैं
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 91.4 एफएम में।
0: मेरा नाम मोहम्मद वड़ा है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ, तो बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगे?
0: गाना सुनना है दिल दीवाना ना जाने का खो गया फ्रॉम द मूवी दागर फायर।
1: ओके,
0: आपने खाना खा लिया?
1: हाँ हम खाना खा लिए हैं, आप खा लिए?
0: मैंने खाना भी खाना है, अभी नाश्ता करने।
1: अच्छा अभी नाश्ता कर रहे हैं?
0: हाँ जी, मैं स्कॉटलैंड कंट्री क्लास सिटी से बोल रहा
1: हूँ।
0: इंडिया में सब अरे है, मौसम कैसा है इंडिया?
1: हाँ इधर मेरे तरफ तो अभी गर्मी है, धूप भी है।
0: ठीक है, स्कॉटलैंड क्लास में अभी सर्दी है और ड्राई।
1: अच्छा
0: भगवान आपको खुश रखो, मिलकर वो गाना लगा देना दिल दीवाना ना जाने का खो गया।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रेंज में कॉल किया।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
10: Hello. जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM।
12: जी हम बनारस से संध्या।
13: जी क्या हाल चाल है?
12: हाल चाल तो बढ़िया है, आप सुनाइए।
13: मेरा भी ठीक है,
12: बस सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो रंगीन को, अपन काम सब कर रहे हैं। जी हो या तो मिलाए,
13: बता दीजिए गाना कौन सा सुनिए।
12: सुनवा दीजिए बिलास गाना का।
13: कौन सा सॉन्ग?
12: उसमें तो वो वाला, किसे दिल का दुश्मन समझते रहे।
13: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
12: जी आपको जितनी श्रोता सभी को सुनवा, हम भी सुनेंगे।
13: ओके ओके, चलिए फिर गाना शुरू करते हैं, सुनते रहिए।

0: मत रोना छोड़ के जाने वाले थे, मत रोना छोड़ के जाने वाले थे, खुद ऐसा वक्त निकाल लिया देना जो खुद ही मिलना है तुमसे ना मिलने के बहाने। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: सलाम नसीब है तफी सुल्तान डिस्ट्रिक्ट सिवान से।
1: मैं ठीक हूँ, बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं और सब बढ़िया। सब हो गया?
1: हाँ हाँ, नाश्ता हो गया है।
0: मैं तो बहुत दिन के बाद जुड़ा हूँ, काफी दिन हो गया। हाँ, तो आज मैं जुड़ा हूँ। आप भारती बोल रहे हैं? हाँ, मैं पहचान लिया। देखिए आप, हाँ रोनी जी तो शो कर लिया ना, वैसे चॉइस।
1: हाँ, अभी तो छुट्टी पे हैं तो हम ही कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कर लिया। घर परिवार सब ठीक है?
1: सब कोई ठीक है।
0: दिल्ली आए हैं, कल दिल्ली आए
1: जी।
0: कल मेरा पेपर है।
1: अच्छा,
0: बीएल के पेपर लेते हैं। नोएडा में पड़ा है, पेपर दे के दिल्ली में रुकना है। कल मेरा पेपर है। हाँ, कल मेरा
1: पेपर है
0: EEEE SBNPS जॉब के लिए। उसके बाद में भरा था, कल पेपर है नोएडा में पड़ा।
1: चलिए तब तक ठीक है।
0: हाँ, तो कल ही आया दिल्ली, पेपर बोलते हैं और सब बढ़िया था। सुन भी नहीं पा रहा हूँ ना, टाइम नहीं मिलता। नहीं पाता, सुनता हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है।
1: अच्छा,
0: क्या बोल रही थी? कुछ बोल रही थी,
1: बोल रहे थे कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: हाँ, गाना हमको सुना दीजिए। फिल्म का नाम है इने किरा
1: और गाने का
0: है आने से हो क्या आएगा।
1: और सॉन्ग डेडिकेटेड है।
0: हाँ, सबसे पहले आपको अजय धोनी, अजय सोनू भाई, अतरी कुरिया, परमीन हलीमा सजिया और रबीना सफा सिद्दी, राजहा परिजान पारी, सबनम सिद्दीकी, रुदार, निशा सुकुनवा, निशा भारती और समीर आलम, गुलाम हुसैन, दिलीप राम, अजान अंसारी सऊदी, सजीर आलम अंसारी, भाकर बरजू, उमा शंकर, दिगंदर मुखेत, उत्तम सोनी, ये सब के साथ सुनना चाहता हूँ। और बता दीजिएगा। चलो, आपसे बात करते हैं। नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रंजन में।

0: होगा।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम, हर हर महादेव।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
9: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो।
12: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 एफएम में।
12: जी नमस्कार।
11: नमस्कार,
12: मुन्ना बोल रहा हूँ मुंबई से।
11: हाँ जी, कैसे हैं आप?
12: अच्छे हैं, अपना सुनाइए।
11: हम भी अच्छे हैं।
12: क्या मौसम है बिहार?
11: अभी तो मेरे यहाँ गर्मी है, धूप भी है वैसे ही।
12: अच्छा, बारिश फिर सही हो रहा है?
11: नहीं, बारिश तो
12: इधर महाराष्ट्र में तो ठंडा मौसम है, हवा भी तेज चल रहा है और बारिश हो रहा है।
11: तब तो बढ़िया है, ठंडा मौसम।
12: जिला का बहुत घना मौसम है।
11: ये तब तो ठीक ही है।
12: तो भारी भी बोल रही है ना।
11: और
12: गाना, हाँ एक गाना सुना दीजिए, फूल और कांटे का।
11: गाने के बोल
12: देंगे तो मिल जाएगा, ये गाने का बोल है। और डेडिकेट रहेगा सबसे पहले आपको रहेगा, सोनी मैन को रहेगा, संजय दुबे को रहेगा, और जितना भी डिनर है रिंग सुनने वाले सभी को डेडिकेट रहेगा ये गाना।
11: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
12: धन्यवाद, नमस्कार
11: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीन 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं ज्योति साहू बोल रही हूँ मधुसूदनगढ़ से।
1: हाँ जी, कैसी हैं आप?
0: बस बढ़िया है मैडम जी, आप कैसे हो?
1: मैं भी अच्छी हूँ। और क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, खाना बन रहा है अभी तो।
1: अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है,
0: आइए आप खाइए खाना।
1: बिल्कुल, आप लोग खा लिए मतलब हम भी खा लिए।
0: अभी नहीं खाया, हम खाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी बना रहे हैं।
1: चलिए कोई नहीं, हम भी उसी टाइम खा लेंगे।
0: ठीक है, मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
1: बता दीजिए कौन सा
0: गाना ये। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया।
1: जी, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: आपको भी है मैडम जी, और हमारे पति को भी है, और भी जितने भी सुन रहे हैं उन सबके लिए आइए गाना।
1: जी बिल्कुल जी, चलिए फिर आपके गाने को प्ले करेंगे। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
0: थैंक यू।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
12: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।
13: Now pick your phone up.
14: Hello?
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello?
13: Now pick your phone up.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-11। जी हाँ, 80-29-94-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
17: और हम अमर कुमार सोनभद्र से बोल रहे हैं, सॉन्ग सुनना था।
16: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
17: अरे लग गया, हम तो ट्राई कर रहे थे, कल नंबर हमने एक किया और आज हम ट्राई किए, आज हमारा लग गया कॉल। उधम बोल रहे हैं
16: जी,
17: आरती बोल रहे हैं।
16: भारती बोल रहे हैं।
17: अरे चलिए, मैंने ट्राई किया, आज देखिए हमारा कॉल लग गया। कुछ एक सॉन्ग सुना दीजिए।
16: बता दीजिए,
17: छेला बिहारी का है, नाचे कंवरिया सिद्ध के नगरिया बन के गुजरिया रे।
16: ओके, और सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
17: डेडिकेट आपके लिए और पूरे जो रिमझिम रेडियो के श्रोता हैं, सारे कुछ दोस्त है, संगम केसरी, आनंद केसरी, दोनों दोस्त लिए।
16: चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है
0: जी। नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार,
0: मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी,
0: मुझे गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा?
0: भोले वाला गाना सुनना है। लेकिन गंगा जल से बदल जाएगा, भोलेनाथ से बम किस पर पाएगा। ये गाने का बोले मैडम।
1: ओके, और
0: सबसे पहले तो आपको, बाकी जितने भी हमारे प्रेम जी रेडियो श्रोता गण है, सभी को सुनाना चाहता हूँ और मेरे दोस्त लोग सुनना चाहता है इस गाने को।
1: ओके जी, चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
13: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
14: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
13: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
14: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
13: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
14: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
13: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
14: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
13: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
14: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
15: Now pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up. Pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
17: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो।
19: हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
19: मैडम।
18: नमस्कार
19: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
18: हाँ जी, क्या हाल चाल है?
19: बस मैडम जी, बरसात हो रही है और रेडियो सुन रहे हैं।
18: अच्छा
19: जी, और दुकान पर ही है, दुकान है अपनी, सिलाई मशीन बेचते हैं, जैक चूल्हा बेचते हैं और थोड़ी बहुत सिलाई भी करते हैं।
18: अच्छा, तो अच्छी बात है। और गाना कौन सा सुनिएगा
19: जी मैडम जी? पिक्चर का नाम है राजा हिंदुस्तानी।
18: और गाने के बोल?
19: गाने के बोल है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी। जी का रे धिकारा।
18: और सॉन्ग डेडिकेट है
19: जी, सबसे पहले आपको है और अपनी एक मैडम भी है सोनी जी है, भारती जी है। आप कौन? भारती जी है, सोनी जी है?
18: भारती।
19: हाँ, तो आप दोनों को डेडिकेट है। हमारे कचरा सिंह लोधी जी है और मांगेलाल जी है और गोपाल ओझा जी है और जीतन धाकड़ जी है और हमारी मैडम ज्योति साहू जी के लिए गाना कैसे खासकर के लिए।
18: जी जी
19: जी,
18: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4।
19: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
0: मैं चिरमिरी कुवारा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के इंद्रभान हूँ।
1: जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ।
1: और गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: फिल्म का नाम है जख्मी और गीत बोले जलता है जिया मेरी भीगी भीगी रातों में, अजय गुरी चोरी चोरी अब तो रहा न जाए रे, गाय किशोर कुमार आशा भोसले, ये गीत है मैडम।
1: ओके, और कौन किसी को डेडिकेट है?
0: सबसे पहले गीत आपको, फिल्म निर्देशक आपको, पूरे भारत रचता को, रेडियो रिंझिम है मैडम, रेडियो रिंझिम सभी सभी दोस्तों भाई बहनों के स्टाफ कर्मचारियों को पूरे भारत श्रोता को स्वामी के धन्यवाद। इसका प्रसारण कब होगा मैडम?
1: इसका प्रसारण आपको आज नहीं तो कल हो जाएगा।
0: कितने बजे?
1: शाम को 5 बजे से 7 बजे होता है और सुबह में 9 से 11 के बीच।
0: 9 से सुबह 9 बजे होता है?
1: सुबह में 9 से 11 के बीच होता है और शाम को 5 से 7 के बीच।
0: मतलब ये आज आ जाएगा? 5 से कल जाएगा?
1: आज नहीं तो कल, दोनों में कभी भी आ सकता है।
0: जी जी, 5 बजे 9 बजे। ठीक ठीक,
1: रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
10: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: हेलो,
11: बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
12: नमस्कार मैम।
11: नमस्कार,
12: गाना सुनना है।
11: बता दीजिए कौन सा।
12: अलग दिखला जाए राजा
11: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है।
12: सुनने
11: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुन करिए।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग
0: विकास कुमार हिंसापुर।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है मैम, आप कैसे हैं मैम?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: सब बारिश हो रही तो रहा मैम?
1: बारिश नहीं हो रहा है इधर,
0: बारिश नहीं हो रहा, धूप निकला है ना।
1: धूप भी है और गर्मी भी है।
0: हमारे तरफ तो नोएडा में बहुत बारिश हो रहा है।
1: अच्छा, थोड़ा इधर भेजिए ताकि हम लोग को भी राहत मिले।
0: भगवान के पास फोन करते हैं।
1: अच्छा कीजिए, देखिए लग जाए तो अच्छा ही है।
0: बोलते हैं कि भगवान चला जाइए गोपालगंज जिला में।
1: और सब ठीक है ना?
0: और सब बढ़िया मैडम, और सब बहुत मस्त है एकदम।
1: जी जी, सब चलिए। गाना बताइए कौन सा सुनिएगा
0: आज? गाना सुनवाइएगा राखी का, वो पुराने सॉन्ग नहीं है।
1: गाने के बोल कुछ याद है?
0: इसे समझो ना।
1: अच्छा, इसे समझो ना रेशम की डोर भैया।
0: जी जी जी, बहुत बहुत प्यारा गाना है एकदम टीचर के लिए।
1: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है।
0: लेकिन मैम एक बात बताऊं?
1: बताइए।
0: परदेश में रहता है ना तो कला बहुत, उस दिन बहुत याद आता है, बहुत
1: बहुत याद आता है जब रक्षाबंधन आता है, भैया घर पे ना हो।
0: लेकिन इस बार चले जाएंगे हम, ये एक दो दिन के लिए चले जाएंगे। टीचर के बोले टीचर से कि टीचर मेरी दो है, उन लोग को शादी हो गया
1: तो वो लोग आएंगे कि आपको जाना पड़ेगा?
0: हाँ, तो दोनों गाड़ी ले जाएंगे। चले जाओ नीचे, तो अब रेडियो रंगीन सुनने वाले।

0: लोग का कवर होना चाहते हैं आप सबसे पहले आपको
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बज के 30 मिनट के बीच हमारे नंबर 80029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
7: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो 96.4 FM पे समय 9:22 हो रहा है हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 7277-16-65-96। ये नंबर तो आप सभी जानते ही हैं और जो भी श्रोतागढ़ नए सुन रहे उनके लिए मैं नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7277-16-65-96। इस नंबर पे अपना नाम और गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है। कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, तो घबराना ज़्यादा नहीं है। और एक एक करके गाने की फरमाइश पूरी की जाती है तो आप लोग तो समझते ही हैं कि एक के बाद एक बजेगा ही, तो आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। तो आप लोग अभी टेक्स्ट मैसेज करें, जो भी मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे कि जब भी गाने की फरमाइश करेंगे तो पुराने गाने की फरमाइश करेंगे, ओल्ड इज़ गोल्ड या 90s की। तो यहाँ पर पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं। मुझे गाना सुनना है और गाने का बोल है चल रे कंवरियाँ शिव के धाम, सभी दोस्त के साथ सविता चौहान भू छपरा से। और सबसे पहले आपको भाई और रोशनी बहन निशा जी, समीर जी और दिलीप जी और वीरेंद्र भाई को डेडिकेट करती हैं। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से, और क्या हाल है सर, मैं भी जुड़ गया हूं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते रेडियो रिमझिम, सभी दोस्तों को नमस्कार और सोनो भाई आपको भी नमस्कार। आज मैं भी एक गाने के साथ जुड़ गया हूं। सावन का महीना आया है, घाटा से वर्षा है पानी, ये गाना सबसे पहले आपको और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को और मैडम जी के साथ सुनना है। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। राजेश प्रसाद जी सूरत गुजरात से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि आपको सुन रहा हूँ, तो बिल्कुल सुनते रहें। आगे मैसेज पहुँचा और लिखा गया है कि नमस्ते नमस्कार, नाम सगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से जुड़े हुए हैं। तो सगीर जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और क्या हाल है। आगे मैसेज, सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप, और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल रोहित जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज कई आते जा रहे हैं तो आगे बढ़े। आगे मैसेज लिखा गया है राजू कुमार मधुसरिया से, गुड नाइट। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपको बता दूं कि जब किसी से रात्रि में मिलते हैं तो नाइट का प्रयोग नहीं होता है, इवनिंग ही बोला जाता है और विदा लेते वक्त नाइट बोला जाता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि हमारा मैसेज कहाँ गई। तो बिल्कुल आपका भी मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो मुझे गाना सुनना है, गाने का बोल है, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को पहुंचाने वाली शिल्पी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि देवकांत मिश्रा गणेश स्थान आया सावन झूम के। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में देवकांत मिश्रा जी, आपकी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और सविता चौहान के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने, चल रे कंवरिया शिव के धाम।

काफ़ी प्यारे सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो रंजीम 90.4 FM पे, और शो चल रहा है SMS फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए तो आगे मैसेज भी हम शामिल करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा, हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। मैं भी जुड़ गई हूँ शो से, और मेरे भी हाजिरी लगा दीजिए और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल स्वागत है आपका। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे। आगे लिखा गया है कि थैंक्स भाई मुझे गाना सुनाने के लिए। चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, मेरा गाना प्लीज़, तो बिल्कुल लेके करके फरमाइश पूरी होगी। हेलो हाय, कैसे हैं आप सर? सॉन्ग हमरा बाबा हमरा सोना के ख्याल रखिए, तो इस गाने को हम नहीं सुनाएंगे, आप पुराने गाने का फरमाइश करें, बिल्कुल पूरा करेंगे मनीषा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाइस सॉन्ग। मैसेज करते हैं रोहित जी, और चलिए आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा भी, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और लिखे हुए हैं, हाय सर, समीर आलम जंगलिया से सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल एक एक करके फरमाइश हम पूरी करेंगे ही। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग सिस्टर, थैंक्स मुझे सुनाने के लिए। मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग नहीं बजेगा क्या? बिल्कुल राजू जी, आपकी भी सॉन्ग बजेगा, ऐसा नहीं है कि हम आपकी सॉन्ग ना बजाएं, सबकी फरमाइश पूरी करने की मेरा प्रयास रहता है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने का बोल दिया गया है, सावन का महीना आया है, घटा से बरसा है पानी। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले हमारे श्रोतागण हैं राजेश प्रसाद जी, सूरत गुजरात से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
9: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मिसेज कई पहुँचे हुए, लेकिन मिसेज को रोकेंगे। और आज हम फिर से आप सभी के बीच सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक छोटा सा सुझाव साझा करेंगे, और आज चर्चा होगी डायरिया के बारे में, यानी दस्त, डायरिया दस्त एक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति को बार बार पतला या पानी जैसा मल होता है। इससे शरीर में पानी और आवश्यक लवण इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण हाइड्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं। यदि समय पर उपचार ना मिले तो हम विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर हो सकते हैं। कारण यह है कि दूषित भोजन या पानी का सेवन करना बैक्टीरियल वायरस या परजीवी का संक्रमण, गंदे हाथों से भोजन करना, बासी या खराब भोजन करना, भोजन का विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग हो जाना, ये सारे कारण हैं। इनके लक्षण हैं बार बार पतला या पानी जैसा मल होना, पेट में मरोड़ आना, दर्द होना, मतली जैसी मिजाज होना और उल्टी होना, बुखार कुछ मामलों में भी हो सकता है, कमजोरी और थकान महसूस करना, अधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, पेशाब कम आना, ये सारे लक्षण हैं और कई मामलों में चक्कर आना भी इसमें शामिल है। इनकी जांच है डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण और आवश्यकता पड़ने पर मल की जांच की जाती है। गंभीर मामलों में रक्त की भी जांच की जा सकती है। उपचार है इनके ORS का घोल बार बार पिलाए या पिए, खूब पानी, नारियल पानी, नींबू पानी और अन्य स्वच्छ तरल पदार्थ लें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें जैसे खिचड़ी, दही, केला और चावल, छोटे बच्चों को स्तनपान जारी रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन ना करें, यदि डॉक्टर आवश्यक समझे तो संक्रमण के कारण के अनुसार दवा अवश्य देंगे। इनके बचाव हो सकते हैं, हमेशा साफ और उबला हुआ या शुद्ध पानी पिए, खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोए, भोजन को ढक कर रखे, ताज़ा और स्वच्छ भोजन करें, खुले में बिकने वाला अस्वच्छ भोजन ना खाए, खाने से बचे, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही खाए। संभावित जटिलताएं हो सकती हैं यदि समय पर उपचार ना मिले तो गंभीर निर्जलीकरण, हाइड्रेशन, शरीर में लवणों का असंतुलन और कमजोरी जैसी परिस्थिति, बेहोशी हो सकती है, बच्चों और बुजुर्गों में जान माल की खतरा हो सकती है, ये सारे इनके लक्षण और संभावित जटिलताएं और उपचार हैं। यदि आपको ऐसी परिस्थिति आपके शरीर में या आपके आस पड़ोस घड़े या किसी भी व्यक्ति को हो तो आप इसे उस व्यक्ति को साझा करें और उसको सलाह दें, या अपने घर में ही हो जाता है तो उसको अपने सलाह अनुसार उसको हॉस्पिटल में ले जाए, इसका उपचार कराए। यदि ऐसी परिस्थिति हम सभी के बीच आती है तो एक दूसरे को बताना चाहिए और उसे अस्पताल में पहुंचाना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए ताकि वो अपने को सुरक्षित स्वस्थ रख सके। ऐसी जानकारी हर रोज़ रेडियो रिमझिम पे दी जा रही है और हर कार्यक्रम में दी जाती है, तो आप इसका उपयोग करें अपने जीवन में। तो कुछ आगे मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को भी हम शामिल करेंगे और आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। फिलहाल पहला मैसेज अभी का पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सोनू भैया, मैं गोपालगंज से राजीव नगर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं किशोर कुमार जी, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अब मेरी बारी, देख ले भाई मेरे सावन के गीतों का, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खिखरिया रुकसोल नेपाल बॉर्डर से, और कहते हैं कि हाय सोनम बाबू, कैसे हैं, हमें भी एक सावन की आगाज़ की आने पे एक सॉन्ग सुना दें। बिल्कुल सुनाएंगे, एक एक करके सबकी फरमाइश तो पूरी हो ही रही है, सबको देखना है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि रात के चांद आसमान में निकल आया, साथ में तारों की बारात लाया, जरा आसमान के तरफ देखो, आपको प्यार का इजहार कर रहा है। सोनू भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ दिलीपराम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया कि हेलो हाय नमस्ते MD 97 दरभंगा भाजीपुर से, और प्लीज़, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ प्लीज। तो बिल्कुल लेके करके सबकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और इस मैसेज को पहुंचाते हैं सिद्धार्थ जी बरौली से। बिल्कुल आप भी बने रहे हमारे साथ, आगे बढ़े। तो यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, तब्बू खान कुटवा से जुड़ी है और एक सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, बहुत दिन के बाद मैसेज पहुंचा हुआ है आपके द्वारा और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई गाना बजाने के लिए, मैं गाना सुन रहा था। बिल्कुल आपको धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम पूरी करते हैं। एक और मैसेज, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हाल है भैया जी? तो बिल्कुल बढ़िया है। और इस मैसेज को करते हैं सजदा अंसारी मीरगंज से, आगे बढ़ते हैं अगले गाने की फरमाइश को प्ले करते हैं। आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं राजू जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, तेरी तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त। तो चलिए आपके भी गाने हम सभी सुनते हैं रेडियो रमछम 94.4 FM पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे और शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। अगली मैसेज पहुंचा, हेलो भाई रितु मिश्रा, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सर्कल का गाना बजाने के लिए, निशा पांडे मैसेज करती हैं। चलिए आपको धन्यवाद है और फिलहाल आज स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि तेरी जवानी बड़ी मस्त, नाइस सॉन्ग। और मैसेज करती हैं शिल्पी और इनके तरफ से ही गाने की फरमाइश है और गाने का बोल है गुलरी के फुलवा, डेडिकेट रोशनी सिस्टर, शबीना सिस्टर, निशा भारती, बाकी सुनने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, कुछ मैसेज शामिल कर लें। आगे मैसेज, हेलो सर नमस्कार, राधे राधे सर जी, सुजीत कुमार प्रेम नगर बस्तरा राजा यूपी 63 मिर्जापुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि मैं आंसू को समझाया भारी महफिल में ना आया कर, आंसू बोला तुमको भरी महफिल में तन्हा पाते, इसलिए तो चुपके से चले आते हैं, कमल की लाइन। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि प्लीज़, तो बिल्कुल लेके करके ये फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें, एक एक करके फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।
1: कभी प्यारा भोजपुरी सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे गुलरी के फुलवा बलम तूता हो गई। और इस गाने की फरमाइश की थी शिल्पी बित बरमाशा और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है बिन साजन झूला झूल मैं वादा कैसे भूलूं। और इस गाने की फरमाइश करती हैं तब्बू खान कुटवा से और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है इस तो पूरा करेंगे। आगे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि वाओ सुपर सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सॉरी किस बात की ये तो समझ में नहीं आया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे हम आगे गाने को प्ले करते हैं मैसेज पहुंचा है थैंक्स। चलिए आपको धन्यवाद रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। आगे भी सुनते रहें और इंजॉय करते रहें।

कमाल के सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 FM पे तीन साजन झूला झूलो। और आगे मैसेज कहीं पहुंचे हुए, आगे मैसेज लिखा गया है कि सुपर गाना बा भाई, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, थैंक यू सो मच। चलिए आपको धन्यवाद रेडियो एमसीएम सुनने के लिए, और आगे भी कार्यक्रम से जुड़िएगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि भाई हमार गीतवा अंतिम में रहेगा, तो चलिए अंतिम में ना ही सेकेंड लास्ट रावर ही गीतवा सुनाओ तनी। और एक मैसेज के पहुंचाए वाला बानी वीरेंद्र गुप्ता भैया, और डेडिकेट करे तनी ये गीत के पहले मैडम जी को, और शफाक हिना हजरा रोशनी शाबा दिलीप भाई, और आपको, और सबीना सविता निशा आशा गुड़िया, और साझा खुशी ब्यूटी सोलोनी को। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं सावन को आने दो का टाइटल ट्रिक रेडियो एमसीएम 90.4 FM पर।

बिल्कुल, सावन तो कल से आ ही गए, अब जितने भी वादे किए हैं सारे निभाने पड़ेंगे भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, थैंक्स भैया मुझे सुनाने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे देवकांत मिश्रा जी की। और इन्हीं के नंबर से कई मैसेज पहुंचे हुए, रितु मिश्रा जी की तरफ से भी मैसेज पहुंचा हुआ है, और एक ही स्थान से और भी लोग बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि एक जगह और मैसेज कर रहे हैं अपने अपने नामों से। तो एक दिन में तो आप सभी के फरमाइशों को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह बहुत छोटा कार्यक्रम है और यहाँ पे कई मैसेज हमारे पास अलग अलग जगहों से लोग मैसेज करते हैं। तो आप लोग ऐसा करें कि आज एक व्यक्ति सुन ले, और एक व्यक्ति कल, एक व्यक्ति तीसरे दिन, एक व्यक्ति चौथे दिन, ऐसे करके आप लोग फरमाइश करेंगे तो हम सुना सकते हैं। और एक दिन में सभी व्यक्तियों की फरमाइश एक स्थान से बैठ कर करते हैं तो नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि दूसरों को भी मौका देना है और जो अलग स्थान से सुन रहे हैं उनको भी। तो आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति हम देवकांत मिश्रा जी जो हैं उनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, वो पहले ही मैसेज किए थे। तो आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ, और कार्यक्रम की भी समाप्ति का समय हो गया है और समय से थोड़े हम आगे निकल गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सब सुनते रहें रेडियो 90.4 FM, जो हमें सच कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबके दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। और यदि आप अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852781 जी हाँ 9852788291। और कॉल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696 जी हाँ 7277166596। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आप सभी के लिए हमारी तरफ से एक खूबसूरत सा गीत सावन के अवसर पे।

तो अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक गीत, और इसी के साथ बढ़ेंगे मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से। क्या हाल है मैम? सोनी मैम ठीक है ना मैम? मैम का सॉन्ग अच्छा है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सोनी मैम भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि सोनी मैम को कुछ हुआ है, बस वो छुट्टी पे हैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, हाय हाय हेलो जी, हम कृष्णा मोहन सिंह सिपाया का से सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा, हम अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश में गाना सुन रहे हैं। और गाना सुनने सावन आए बादल छाए साजन के घर मूवी से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, उत्तम सोनी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और लिख रहे हैं कैसी हैं आप, और मैं भी जुड़ गया हूँ और बहुत ही खूबसूरत शो चल रहा है मैम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ दीनानाथ यादव कुवैत से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं भी आ गया हूँ, मैम कैसी हैं आप, नमस्कार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिए, आपका नाम तो मुझे दिख नहीं रहा और पता भी नहीं चल रहा आप हैं कौन। और राधे राधे जी, और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं सभी दोस्तों को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं देवराज कुमार रेशम नगर भगैया जिला गोड्डा झारखंड से आज अपने योर फरमाइश के साथ समय से जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, मैम मैं मोहम्मद अंसारी जयपुर राजस्थान, और गाना सुनना है पैरों में बंधन है, और बहुत अच्छा लगा मैडम जी भारती जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिक, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956 97644।

ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबके दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852728291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और मैसेज करने वाले मुस्तफ़ा सऊदी अरब से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं राधे राधे भारती जी, मैं अरविंद चौहान सिवान से, हमारा भी सॉन्ग बजा दीजिएगा। और गाना है वो लड़की बहुत याद आती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार भारती जी, सोनी मैडम जी, हम राम कुमार राम MP बालाघाट स्लोक राइस मिल से, सुभाष भैया हमारे साथ हैं, और हमारे मुंशी जी गौतम भैया सागर जी, हम भी जुड़ गए हैं, थोड़ा हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारी उद्घोषक और महोदय जी नमस्कार, हम भी समय पर आ गए हैं, हम भी हैं और हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं असम से सागिर आलम अंसारी, आपकी आवाज़ ठीक से आ रही है, और उत्तम सोनी भाई को मेरा सलाम कहिएगा। और सागिर आलम अंसारी फ्रॉम तेजपुर असम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं देवराज कुमार, गाना सुनना है सावन आए बादल छाए, और बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा गीत, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, सरफरोज अली गोपालगंज से गाना सुनना है मेरा, और गाने के बोल हैं मेरे प्यार को तुम भुला तो ना दोगे, कुमार सानू की आवाज़ में। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ सन्यासी रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं, नमस्कार भारती मैडम, हम भी जुड़ चुके हैं, हाजिरी लगा दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपकी हाजिरी लगा दी हूँ। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, कपिल कोटा राजस्थान से जुड़ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, राधे राधे, मिथुन शर्मा उत्तर टोला महादा से जुड़ गए हैं, सुनना चाहते हैं और गाना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, भारती जी आप बहुत ही अच्छी हो। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पढ़ेंगे। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहा है, भारती जी नमस्कार, मैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, अगर हमारे मैसेज सोनी जी के कानों तक जा रहा है तो कृपया एक बार जुड़िए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपका फैंस देख। ओ, आपके फैन धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जहाँ भी हैं सोनी जी जरूर सुन ही रही होंगी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
0: नमस्ते मैम। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: आप थारा से रामा जी प्रसाद?
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ हुआ स्टूडियो में।
0: अच्छा जी, हाँ
1: कबो कबो हाथ दुखला जाता,
0: बोला कबो कबो
1: गाना सुना दें,
0: बता दें,
1: छतरी के नीचे आ जा, चाहे भी चाहे बरसा में,
0: छतरी
1: हाँ छतरी के नीचे आ जा, छतरी के नीचे आ जा।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जितना लोग सुनता सब कोई के आज नाम क्यों बना मेरा फिर का नाम भेज दे।
0: अच्छा, चलिए फिर गाना और प्ले कर दे, लवानी एंजॉय करी सबके साथ।
1: नमस्ते,
0: रेडियो रिंजी में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-097-06-575।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो चलिए बिना देरी किए, हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, रेडियो रिमझिम की पूरी टीम को नमस्कार। नंद कुमार शर्मा सिंगरौली मध्य प्रदेश से गीत के बोल हैं, तुझे गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, धन्यवाद। और लिख रहे हैं, डियर सर आई लिख रहे हैं, आई वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर ट्यून माई चॉइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। नंद कुमार शर्मा फ्रॉम सिंगरौली, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच भारती जी मेरा सॉन्ग बजाने के लिए, वैसे योर वॉइस योर चॉइस भी, वैसे वॉइस भी भेजा था, कोई बात नहीं सॉन्ग चला दीजिए, योर बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, और सावन के गाना चलने दीजिए। तो सावन का ही गाना अधिकतर लोगों की फरमाइश आ रही है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी गुड आफ्टरनून, मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और शायद मैंने कल ही आपका गाना प्ले किया था तो आज मैं नहीं कर सकती। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, सोनी जी भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपका कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, और हमें और वॉइस भेज रहा हूँ, बजा दीजिएगा। तो जी बिल्कुल। और यहाँ लिख रहे हैं, भारती जी मेरा मैसेज देखिए, वैसे भी भेज चुका है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, मैसेज पहुँच गया और हमने देख भी लिया है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, मैं बदरपुर दिल्ली से नूर आलम, मुझे भी एक गाना सुना दीजिएगा, दिल ना किसी का जाए वे जान जाए तो जाए। तो चलिए ये खूबसूरत से गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा गीत, दिल ना किसी का जाए। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक है, मैडम जी हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं लिख रहे हैं, मैं रामविलास गनवरिया बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे एक गाना सुनना है और ये दिल आशिकाना का टाइटल सॉन्ग गाना सुनना है भारती मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाने क्यों प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, राम राम भारती मैम का हाल बा मैम, तो बहुत अच्छा है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो में। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, नूर आलम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं, और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि उत्तम सोनी जी की तरफ से, और लिख रहे हैं, सागर जी को मेरा भी नमस्ते कहिएगा और पूछिएगा कैसे हैं सर, मैं उत्तम सोनी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सोनी जी के लिए। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी दिल्ली से, और लिख रहे हैं कि याद तेरी मेरी जिंदगी की मिठास है, दोस्ती तेरी मेरी दिल की प्यास है, और हम हर लम्हे में तेरी याद समाई है, और दोस्त तू ही तो मेरी जान की आस है। ओहो क्या बात है, बहुत ही अच्छी शायरी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि मिथुन शर्मा उत्तर टोला महादक से जुड़े हैं, और गाने की फरमाइश लिंक के माध्यम से पहुँची हुई है, और गाने के बोल हैं, साजन मेरा उस पार है, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से

0: रोड गोपालगंज, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजम 90.4 FM। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहा है मैम, मेरा गाना कब बजेगा? तो जी बिल्कुल आपका भी गाना बजेगा, और थोड़ा वेट कीजिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, हाय हेलो गुड आफ्टरनून भारती जी, राजसुल लाल सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि जिंदगी की राहों में मुश्किलें तो आएंगी, पर हिम्मत रखना ये भी हल हो जाएंगी, क्या बात है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं हर हर महादेव भारती जी, गाना बजा दें, और मुझे लंच करना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और अपना नाम जरूर लिखा करें ताकि मुझे पता चले कि आप कौन हैं और कहां से हैं। और यहां एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती जी और मनोरमा जी, सभी दोस्तों को नमस्कार, जुड़ गए हैं दिलीप राम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं हेलो गुड आफ्टरनून, हम भी शो से जुड़ गए हैं, और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैम, रेडियो बादल टीम का ऑफिशियल असिस्टेंट हूँ, और रेडियो बादल के मैं होस्ट और आरजे का नाम रेडियो फैन पंकज है, और बताइए मैम आज आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप हमारे शो से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मैम 12 बजे का SMS किया हूँ, तो बात तो सही है, और आपका शायद फरमाइश मैंने कल प्ले किया था इसीलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अरविंद चौहान सिवान से, और गाना सुनना है, गाना बजा दीजिएगा, और गाने के बोल हैं वो लड़की बहुत याद आती है, बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश है। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, मैं रितेश कुमार फ्रॉम सिवान से हूँ और रेडियो फैन पंकज भाई को नमस्कार बोल दी भारती जी मेरे तरफ से, यानी रितेश कुमार की तरफ से। तो बहुत बहुत स्वागत है और आपकी तरफ से नमस्कार बोल दिए हैं पंकज जी को। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नाइस सॉन्ग मैम। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, थैंक यू मैम और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची है, चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो मैडम जी, प्रणाम।
0: जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत बार और रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: दयानंद जी अघोर पकौली बोदो ब्लॉक फुलवरिया से बोलता नहीं।
0: अच्छा जी, का हाल बार और
1: ठीक बा मैडम जी, आपन बताइए समाचार।
0: हमने के ठीक बानी सन।
1: अच्छा भारती मैडम हई रहुआ आ कारण में पहले बेरी रहुआ समझ है हम बात होता है।
0: अच्छा
1: हमार ऐसा तो प्रोग्राम हम रोज सुने नहीं अभी ना स्कूल में हम रसोइया है जानी। हाँ तब बाबू लोग के खियाओ के अभी ने वही नहीं है 12 बजे लंच होला।
0: हाँ हाँ टाइम तो हो ही गई बा।
1: हाँ तो खियाओ के अभी ना घर वही नहीं है, फिर जाए 4 बजे स्कूल बंद करे।
0: अच्छा तो बता दी आज कौन सा गाना सुने बा।
1: हाँ गाना आज सुने के बाद बृहस्पति देव महाराज के गाना अथी मैंने पूजा हवे आज बनी हमारे भूखे ली जानी छोट को।
0: भक्ति सॉन्ग तो नहीं सुना सकत काहे से कि एमे भक्ति सॉन्ग ना सुनावल जाला।
1: हां जी माना तो बा। अच्छा चली कोनो बात ना तो दूसरा हम गाना गावत नहीं तन किया था
0: बता दी।
1: नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने

0: अब तो बड़ी महफिल से मर न जाऊं कहीं हो के तुम से जुदा नजर के सामने जिगर के पास। मैडम जी
1: गाना तो अच्छा गाओ तनी रुआ।
0: सुनी ना तो फिल्म अभी आज की फिल्म का है, मैंने हमके छोट रानी सन तब के फिल्म आ जान नहीं।
1: और गाना के
0: 90-92 के फिल्म आ जान नहीं।
1: हां
0: हां तो सुनी सबसे पहले रहुआ के सुनवाओ के चाहता नहीं।
1: अच्छा
0: अच्छा जबना लोग सुने तेरे रेडियो रिंग जी कब लोग के यहां हम देखी पूरा परिवार के साथ है सुनने के चाहता नहीं हनु।
1: जी जी रेडियो रंजी में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद। गाना प्ले कर दे बनी एंजॉय करी।
0: अच्छा ठीक बा प्रणाम
1: प्रणाम।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नगेंद्र जी पिन कोड वह बता दी, राखी भेजे में आसानी रही, और लिख रहे हैं कि अखिया के सामने छतिया। अखिया के सामने छतिया के पास क्यों रहेला हो तू, और एक नंबर सॉन्ग। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं सरफरोज अली गोपालगंज से, और इनको गाना सुनना है मेरे प्यार को तुम भुला तो ना दोगे। तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रुपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहा है, मेरा गाना है परदेसी परदेसी जाना नहीं। भारती जी गाना प्लीज़ बजा दीजिएगा। और यहाँ सरफरोज अली गोपालगंज के जो रहने वाले हैं और उनकी तरफ से थैंक्स का मैसेज आया हुआ है। तो और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार जी भारती, मैं सिंगर मनोज शर्मा कररिया से जुड़ चुका हूं और मेरा फरमाइश का आज एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया है और आज मेरी फरमाइश बजा दीजिए। सावन का महीना पवन करे शोर और डेडिकेट है मोहित शर्मा, सुमन देवी, रेखा देवी और आपको और सभी श्रोता को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके फरमाइश के एक सप्ताह पूरा हो गया है। और चलिए मैं आपके गाने को प्ले करती हूँ और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ही ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

अभी हम लोगों ने सुना मनोज कुमार जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग गाना, और उनके तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैं सुन रहा हूँ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय भारती दी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून का हालवा। सोनी दी गुड आफ्टरनून का हालवा, मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं हाय नमस्कार मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अपना नाम ज़रूर बताएं क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपका नाम क्या है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे इंस्टाग्राम के मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मैम मेरा एक हफ्ता पूरा हो गया है और मैं गाना सुनना चाहता हूँ, और गाने के बोल हैं तुमसे मिली थी कॉलेज में आधा दिन याद है, और यह गाना प्लीज़ बजा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोर्ट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोर्ट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207831010, भोरे ब्रांच में 8207856400।

0: 4।
1: सिवान ब्रांच में 9942074045, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहा है मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से, अभी दुबई से सुन रहा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि दिल तो दिल है कल बदल जाएगा, कुछ दिन रोएंगे फिर संभल जाएंगे, हम क्यों करें जिक्र अपने बुरे हाल का, देखते देखते यह वक्त भी निकल जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत शायरी, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, क्या हाल है आपका, मैं भूमि परसोनी से, मुझे सॉन्ग सुना दीजिएगा और सावन में मॉर्निंग बनके मैं तो गाने के बोल हैं, सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं, और मैं तो और सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और चलिए बिना देरी किए हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: नमस्कार
0: जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी हम सर मास्टर बोल रहे हैं ग्राम धनाव से।
0: हाँ जी, कैसे हैं? हाँ हाँ,
1: आप बोलिए कैसे हैं?
0: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: कर चुका हूँ, वॉइस भेज चुका हूँ, आप व्हाट्सएप देख ही नहीं रहे हैं।
0: अभी तो आपका मैसेज मैंने सीन किया था और नाम भी
1: 59 मिनट पे भेज दिया हूँ, वॉइस बजा लीजिए मैडम।
0: अच्छा, आपका नाम भी मैंने मेंशन किया था, आपने सुना नहीं?
1: तो मैसेज तो आप बड़ी सुने हैं, लेकिन गाना बजना चाहिए ना। 11:59 12 बजे किए हैं हम, वॉइस भी भेज चुका हूँ।
0: अच्छा, देख ले रही हूँ। और आपका टाइमिंग आज ही का है ना?
1: टाइमिंग तो एक हफ्ते से ज्यादा हो गया।
0: अच्छा जी, तो कॉल के माध्यम से ही सुनेंगे या फिर?
1: ना ना ना, व्हाट्सएप के माध्यम भेज चुका हूँ, वॉइस भेज चुका हूँ, गाने का लिंक देख लीजिएगा, आ जाएगा मेरा तो।
0: ओके, अभी
1: इसलिए कॉल करना पड़ा आपके पास, आपके पास
0: तो कॉल किए हैं, तो कॉल पे ही बता दें अब।
1: हाँ तो बजा दीजिए, वही गाना है सावन के बादलों का, नियत बहुत खराब है, और सुनने वाले हम लोग धनाव से सब लोग सुनेंगे, रोशन टेलर में काम करते हैं, और जितने भी रेडियो सुनने वाले हैं सभी को सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी,
1: और भारती जी आपको भी।
0: हाँ हाँ
1: जी, हम तो रोज जुड़ते हैं, आप मैसेज देखा करें, रोज
0: शामिल किए तो आप सुने ना।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, सावन के बादलों की नियत खराब है, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ अभी बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, गाना सुनना है तेरी गलियों में आना मैंने छोड़ दिया। और मैसेज करने वाले संतोष कुमार पटेल सूरत से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले किया जाएगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हाय भारती मैम गुड आफ्टरनून, आज सॉन्ग बहुत अच्छे चल रहे हैं और सावन का फर्स्ट दिन है, और ओम नमः शिवाय मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती जी गुड आफ्टरनून, हम सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण अरे राज बाबा की नगरी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैं शंभू यादव पुलिस लाइन से, और मेरा भी गाना बजा दीजिएगा, और यहाँ वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं वॉइस और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हर महादेव भारती जी, मेरा नाम शंभु यादव, हर बस जिला भागरखाप, जिला गोपालगंज बिहार। मैं राधिका गारमेंट से इस टाइम बोल रहा हूँ, राधिका गारमेंट चैनपट्टी ड्रमा के पास में है, और मेरे को आज गाना सुनना है, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। और कुछ मेरे दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, रंजन जी हैं, और हमारे प्रीति जी हैं, और हमारे दिलीप जी भैया हैं जो हमारे पर्पो राइटर हैं, और हमारी जो बहन हैं सब उनको सुनाना चाहूँगा, और जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम उनको सुनाना चाहूँगा। तो प्लीज़ मैम, मैं काफ़ी दिनों के बाद जुड़ा हूँ भारती जी, तो आप हमारे गाना चला दीजिएगा, और सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेकर भी नहीं लेना चाहूँगा, और कुछ और हमारे दोस्त हैं जो शंकर सिंह हलवाई हैं डरवा गांव से, कुछ हमारे दोस्त हैं जो रेलवे स्टेशन पर कची में धार लगाते हैं वो भैया हैं, और हमारे जो कुछ हमारे साथी हैं जो उधर के एंट्री ले रहे हैं उनको नाम लेना चाहूँगा, लुधियाना वाले भैया हैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा। तो प्लीज़ मैम मेरा गाना बजा दीजिएगा, हर हर महादेव हर हर महादेव।
0: तो शंभु यादव जी की तरफ से चलिए ये प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजम 90.4 FM। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर है 9852782291, और यदि आप कॉल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277166596। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि और मैसेज करने वाले हैं गोविंद कुमार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और लिख रहे हैं कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है, और प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैम मेरा भी सॉन्ग प्ले कर दीजिए। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहा है हेलो भारती जी कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, और मैं रोहित देहरादून से, कुछ सही तो कुछ ख़राब कहते हैं लोग, हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं, हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर, पानी भी पिए तो लोग शराब कहते हैं, और क्या बात है, और नाइस सॉन्ग सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि

जो कि भूमि जुड़ी हुई हैं हमसे और लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में और गाने के बोल हैं सावन में। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में।

तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में, सावन में मैं मोरनी बनके छमछम नाचूं। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है। कृष्ण मोहन सिंह सिपाया के रहने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने के बोल हैं, चूड़ी मजाना देगा और कंगन मजाना देगा तेरे बगैर साजन। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो क्लिक रहे हम मोतिहारी से MD मिन्नू जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोनी दी कहाँ वानी, और मेरा गाना बज सकता है क्या? तो सोनी जी तो अभी नहीं है, सोनी जी छुट्टी पे हैं, और आपका भी गाना बजेगा। और यहाँ लिख रहे हैं कि हाय हेलो नमस्ते मैम, मेरा नाम पिटू प्रजापति पिपरा सिवान से, मैसेज शामिल कर लीजिए मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैसेज आपका शामिल हो चुका है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम गोल्डन टेलर, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और यहाँ गाना मैं जितना रेडियो रिमझिम के श्रोता हैं सबको सुनवाना चाहता हूँ, और जितना रेडियो रिमझिम के परिवार हैं सबको सुनाना चाहता हूँ। और हमरो गाना बजा दें प्लीज़। तो चली बिना देरी के लिए राउर यहाँ वॉइस के माध्यम से इनकी फरमाइश पहुँची है, तो सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
7: गुड आफ्टरनून मैम, हम गोल्डन टेलर तीन फेड़िया से, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए, और हमको एक गाना सुनना था, उठा ले जाऊँगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएगी सखियाँ तुम्हारी, और ये गाना मैं जितने रेडियो रिमझिम के श्रोता हैं सबको सुनवाना चाहता हूँ, और जितने रेडियो रिमझिम के परिवार हैं सबको सुनवाना चाहता हूँ। ये हमारा गाना बजा दीजिएगा मैम।
6: खूबसूरत गाने की फरमाइश आई हुई है, तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई व्हाटएवर नेम इट मे बी कॉल्ड व्हिच इज एंगेज्ड बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
4: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
6: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
7: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
8: अपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
9: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
11: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले, इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
12: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज डेल्टा मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमेरिकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादो गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
14: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
15: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
16: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
17: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0096-575।
18: ठक ठक।
19: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
20: अच्छा मिला ही नहीं।
19: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
20: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
19: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
20: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
19: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
20: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
21: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
22: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
23: भरोसे वाले चलेंगे,
22: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
23: और कीमत भी।
22: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
24: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
25: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
26: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
27: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
26: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
28: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
26: कॉल करे 85070-32042 पे।
29: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
30: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
29: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
31: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
32: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
31: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
32: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
31: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
32: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
33: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
31: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ऑलराइट।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
6: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291। जी हाँ, 9852788291। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277166596। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे कार्यक्रम की तरफ, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि, और हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलोर से मॉडर्न टेलर सजाद आलम, पट्टू भाई, आरिफ, रहीम, मुन्नू। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ पिया जी के मुस्की, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि मैम गाना बजा भेज दूँ, बजा दीजिएगा, और लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग, और इसी के साथ हमारे पास अगला फरमाइश पहुंचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो,
9: नमस्ते मैडम
8: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 FM में।
9: कैसे हैं मैडम जी?
8: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
9: मैं अच्छा।
8: और क्या हो रहा है? कौन सा गाना सुनना है? एक बार और बता दीजिएगा। अच्छा, और गाना किसी को डेडिकेट है?
9: आपको आज इतना रेडियो रेडियो सुनते
8: हैं। ओके, चलिए आपके गाने को प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।
9: नमस्ते मैडम।
8: नमस्ते, रेडियो रमजी में कॉल किया है इसके लिए धन्यवाद।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और गाने के बोल थे कहो ना प्यारे। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं संजेश कुमार कर्नाटक से। सावन के इस पावन महीने में महादेव आपके परिवार और पर उत्तम स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की कृपया बनाए रखे। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं भारती जी गाना सुनना है। गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है, जो कि लिख रहे हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सरिया वार्ड नंबर 1 से, गुड आफ्टरनून सभी को बोल दीजिएगा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी तरफ से सभी को मैसेज पहुंच गया। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं बेंगलुरु से मॉडर्न टेलर से ज़्यादा आलम पुट्टू भाई। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जी, जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून वंस अगेन डियर आरजे भारती जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी लुधियाना से। और गाने की लिंक पहुंच हुई है हमारे पास, और गाने के बोल हैं नाच पंजाबन नच ले। तो चलिए बिना देरी किए खूबसूरत सा गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856।

0: पहुँच।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो बिना देरी किए अगला मैसेज शामिल करेंगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं रितेश पांडे जी का सॉन्ग बजा दीजिएगा, जाए चंदा ले अब खबरिया कैसन बाड़ी मोर जान हो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँच गया है प्रमुख जी की तरफ से जो लिख रहे हैं थैंक्स अलॉट डियर मेरा गाना बजाने के लिए। तो और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, मेरा गाना है परदेसी परदेसी जाना नहीं। और इसी के साथ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है कि जो कि लिख रहे हैं कि

दुर्गेश आजमगढ़, नमस्ते जी, नमस्ते सोनी जी। सॉन्ग यार ओ यार तेरा, यादों ने मेरा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मुस्कान से। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मोतिहारी से MD मिन्नू, और गाने के बोल है पतझड़ सावन बसंत बहार गाना, और मैडम सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग पतझड़ सावन, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि यहाँ एक और मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी आप हंसती बिल्कुल नहीं है, सुबह से हम नोटिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हंसते हैं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और प्लीज़ भारती दी गाना बजा दीजिएगा मेरा। और एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

0: मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा, और जो कि हमारे पास चुटकुला पहुंचे हुए हैं और लिख रहे हैं कि मेरा दुख सुनोगे तो तुम भी रो दोगे। स्कूल टाइम में जो लड़का मुझे छुप छुप कर देखता था, अब वो डॉक्टर बन गया है, अब देखने की फीस लेता है। बात तो सही है और बहुत ही खूबसूरत सा चुटकुला था। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मैं डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा, जय छपरा, जिला कुशीनगर। मुझे भी गाना सुनना है और सुना दीजिएगा, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिलवाले मूवी का सॉन्ग है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ पंकज जी की तरफ से एक और मैसेज पहुंचा, जो कि लिख रहे हैं कि लुका के हंसती हैं भारती मैम, ऐसा नहीं है, सभी के सामने हंसते हैं। और हमारे पास अगला फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुंचे हुए, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ मैम जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी हम दुर्गेश कुमार आजमगढ़ से बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: मैडम जी ठीक हैं, और हम डेकोरेशन का काम करते हैं यहाँ पे। शादी दिन जो लाइट वाइट लगती है, डेकोरेशन किया जाता है। और बताए आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत दिनों के बाद पहली बार लगाया फोन मैम जी, बहुत बार ट्राई करते थे लेकिन आज लगाया पहली बार। और सोनी मैम जी कैसे हैं?
0: सोनी मैम भी ठीक हैं।
1: छुट्टी पे आए? अच्छा अच्छा, और बताए वहाँ का मौसम कैसा है?
0: यहाँ का मौसम अभी तो ठीक है, बादल छाया हुआ है, बस बारिश नहीं हो रही है अभी।
1: यहाँ भी नहीं बारिश हो रही है हमारे आजमगढ़ में। मैम जी गाना बजा दीजिए मेरा।
0: बता दीजिए।
1: और देवी जी का है?
0: कौन सा सॉन्ग?
1: यारा वो यारा।
0: और यारा वो यारा तेरी यादों ने मारा, यही सॉन्ग?
1: जी जी।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: जी आप लोगों को, रेडियो रिमझिम अपने श्रोता हैं सबको।
0: तो चलिए फिर आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग यारा ओ यारा तेरी यादाओं ने मारा। और यहाँ मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है मेरा गाना चला दीजिएगा मैम जी, और मेरा गाना चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं हाय मैम गुड आफ्टरनून, मैं दीपक मुंबई से, सॉन्ग सुना दीजिएगा और गाने के बोल हैं महबूब सनम तुझे मेरी कसम। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वैसे सोनी मैम भारती मैम को कोलकाते की रसगुल्ले खिलाने की वादा की है, सूत्रों के हवाले से पता चला है, तो ऐसा बात है मुझे तो मालूम ही नहीं था। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, और मैसेज नाम नहीं लिखा हुआ है किसका है पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आप कौन हैं और कहां से हैं। इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है रितेश पांडे जी की आवाज़ में, सॉन्ग है और पप्पू जी मैसेज करने वाले हैं और गाने के बोल हैं जाए चंदा ले अब खबरिया। तो चलिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा, मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ।
6: श्रीमान,
5: क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम राकेश भारती जी, भारती जी थैंक यू सो मच बजाने के लिए मेरा गाना, तो इन्जॉय किया आपने। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि कल इनका गाना किसी कारणवश नहीं चल पाया था, 1 मिनट चला और बंद हो गया, और कोई नहीं, चलिए फिर आपकी आज फरमाइश आई हुई है तो मैं प्ले कर दे रही हूँ। और गाने के बोल हैं पिया जी के, मुस्की बिजोड़ लागेला। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग पिया जी के मुस्की, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत निक बिजोड़ गीत पिया जी के मुस्की, और मैसेज करने वाले हैं पंकज जी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग दी मेरा गाना बजाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जो कि दीपक मुंबई के रहने वाले हैं और गाने के बोल हैं, महबूब सनम तुझे मेरी कसम गाना सुनना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 8570-32042 पे।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894-18744।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं हाय मैम राधे राधे, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और अपना नाम जरूर बताएं। और लिख रहे हैं मैम सोनी मैम कब आएंगी प्लीज़ बताइए, तो ये तो बात मुझे भी नहीं मालूम है कि कब आएंगी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शमशेर मुंबई से जुड़ चुके हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं थैंक्स मेरा गाना बजाने के लिए, तो

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, कैसी हैं आप, हमें गाना सुना दीजिएगा। और गाने के बोल हैं, बिन साजन झूला झूलूं वादा कैसे तोड़ूं। और रंजीत कुशवाहा महुआ वैशाली बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, रंजीत जी की तरफ से। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, सुपर लाजवाब मस्त सॉन्ग, बिन साजन झूला झूलूँ मैं वादा कैसे भूलूँ। और इसी के साथ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड इवनिंग, आप कैसी हैं, मुझे सॉन्ग सुनाना है और गाने के बोल हैं राजा पहले नियर नहीं माने लेन। और सजीदा अंसारी मीरगंज से काफ़ी दिन के बाद फरमाइश भेजी हुई हैं, प्ले करेंगे, प्ले कर दीजिएगा। तो जी बिल्कुल आपके गाने को प्ले करेंगे, और चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
0: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
0: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
0: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
0: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
0: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रंजन 90.4 FM में। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, नमस्कार, हम लालू शाह और विलेज पोस्ट सुनौला गोकुल, अभी हम दुबई से जुड़े हैं और टाइम के अभाव से हम अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, और मुझे एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि लैला भोला जी के नाम देवा लेखदी आराम, और ये भक्ति सॉन्ग है, मैं प्ले नहीं कर सकती, दूसरे गाना भेज दीजिएगा तो मैं प्ले कर दूंगी। और इसी के साथ हमारे पास अगला फरमाइश पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुनना है तेरी गलियों में आना मैंने छोड़ दिया, और संतोष कुमार पटेल जो कि सूरत के रहने वाले हैं गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं, और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग तेरी गलियों में आना मैंने छोड़ दिया। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से, जो लिख रहे हैं वाह सुपर मैम सुपर सॉन्ग। और यहाँ इसी के साथ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया मैम गाना बजाने के लिए, और मेरी तरफ से 5 रुपये का चॉकलेट साजिद अंसारी मीरगंज से है। तो मैम हमारा मैसेज देखिए, आपका मैसेज देख लिया और 5 रुपये का चॉकलेट देने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है गाना बजाने के लिए शुक्रिया, रहने वाला हूँ सिवान का और भगवान सिवान भगवान पुरहट्टा से। और अगली फरमाइश है हमारे पास पहुँची हुई है जो लिख रहा है मैडम जी मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, और मेरा गाना है परदेसी परदेसी जाना नहीं। और चलिए इसी गाने के को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ इस गाने को।

तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। तो आज जिनका कॉल नहीं और नहीं उठा पाए और जिनका मैसेज नहीं, गाना नहीं प्ले कर पाए, इसके लिए कल आपका गाना प्ले करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से विदा लूँगी और सुनते

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94।

0: 45651 या 97-097-06-575।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
13: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070-32042 पे।
15: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम।
9: सुनो दिल।

0: राजा।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
4: रेडियो रिमझिम, सुनो दिल।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: Now pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
7: Pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: बाती मैम, नमस्कार, प्रणाम।
1: नमस्कार, प्रणाम।
2: आज ये सॉन्ग चला दे हम।
1: बता दी कौन सा?
2: और तुम क्या शिल्पी राज के अपने पसंद से?
1: अच्छा, और सॉन्ग के होगा सुना हूँ के बाद?
2: पहले तो होगा तो सुना, आज इतना लोग बोल बम जा

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: कैसी है मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम ठीक हैं। आज जल्दी कॉल लग गया, तभी आकर कॉल लगाई तो लग गया।
1: अच्छा, हाँ चलिए, तब तो और अच्छी बात है कि एक ही बार में लग
0: खाना
1: गया।
0: खा रही थी, खा कर अभी आकर बैठ के कॉल लगा रही थी तो लग गया।
1: और सब बताइए, सब ठीक है ना?
0: हाँ सब ठीक है,
1: तो
0: सबके घर में सबको ठीक है ना?
1: आज कौन से गाना सुनना है?
0: मैम आज दीदी के फरमाइश के गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: ऐसी वैसी बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं, ये तो मोहब्बत है।
1: और सॉन्ग डेडिकेट है
0: जी मैम आपको, सोनी मैम को और

0: अमृता सोनम और छोटे भाई है अभिषेक कुमार।
1: अच्छा जी,
0: और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आइए।
1: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।
0: जी मैम, बाय मैम,
1: बाय बाय।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
6: Hello. Hello. Hello. बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90।

0: स्वागत है यार। अभी
1: नाम बताया दीजिएगा।
0: अनु कुमार, ग्राम प्रहरा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उधर फिर बुंदेलखंड।
1: और गाना कौन सा सुनना है?
0: मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: पहली तो आपू, राजू भाई साहब, भगवान चाचा जी, छोटे यादव जी, सभी सभी के लिए है।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम, हम पार्लर से बोल रहे हैं। मैडम को गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा।
1: एक गाना नहीं है कल अपना कर, चल के वाले धाम बोलूंगा।
0: है
1: यही सुना दीजिएगा।
0: सॉन्ग किसी को मतलब सुनाना भी चाहेंगी?
1: हाँ, हम अपना घर परिवार सुना चाहते हैं। हम सुना चाहते हैं, आपको सब आदमी को सुनाना चाहते हैं।
0: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रंजीत 90.4 एफएम।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गली के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
12: नमस्कार मैडम जी।
11: नमस्ते, गाना बता दीजिए कौन सा सुनिएगा।
12: गाना सुना देखे बिना सजा वाला बाजारा न जाए मैं राजा जी।
11: कौन सा?
12: बिना सजा वाला बाजारा न जाए मैं राजा जी।
11: अच्छा,
12: क्या कहला की बहुत दीवानी।
11: गाना क्यों सुना होगा
12: जितना रेडियो जितना दोस्त सुनते हैं तोता सबके सुन।
11: चलिए ठीक है बाबे, तब का होता
12: है? इंतजार है 11 बजे से 12 बजे।
11: अच्छा,
12: फोन लगा तो अभी लागल।
11: कोनो बात ना, कब तो लागल हो।
12: हाँ, सब तो लागल कितना काम काज हो गए फोन के चक्कर में।
11: अच्छा, कोनो बात ना, थोड़ा बहुत उतना एथी हो जाला।

0: चलिए रोबो के तो आराम करके मिल गए, बैठ के फोन लगाई नहीं
1: काम कर फोन लगाते हो आराम करके काम नहीं।
0: अच्छा इतना काम बा?
1: हाँ बहुत काम बा।
0: चलिए ठीक है बाबे,
1: अनिल से निबेरा लेने के फोन कर रहा हूँ।
0: कोनो बात नहीं है,
1: बिना कजरवा।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते हैं सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: जी मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम,
0: कैसन बने?
1: हम तो ठीक बने, रोवा बताए रोवा कैसन बने?
0: हम ठीक बने।
1: अब क्या होता अभी?
0: अभी फोने लगाओ तो निया। और सब ठीक बा?
1: हाँ हाँ, और सब ठीक बा।
0: नाश्ता सब होगल?
1: हाँ हाँ, हमने के होगल, रोवा लोग नहीं लो।
0: हाँ हमने के नाश्ता होगल जा।
1: चलिए ठीक बा।
0: जाना बाजल सवेरे
1: बाजल है ना?
0: हाँ बाजल ठीक बा।
1: शाम के 5 बजे बाजल है ना?
0: हाँ
1: सुन लें
0: ठीक बा। आज गाना बजा दी इनकी लागत जलना तुझे हर रहेलू जब आओ ये लो बस सुनवा दे।
1: और
0: बस कुछ नहीं है मैडम।
1: हाँ हाँ, और गाना क्यों के सुना हो के बाद?
0: हाँ रौदा सुन ले, सब मैम सुनी लो, सब कुछ सुन जितने रेट लोग बोल
1: रहे हैं। हाँ चलिए ठीक बा।
0: नेटवर्क प्रॉब्लम चलता का लागत ना लो जल्दी?
1: ना ना, नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, कॉल ज्यादा होता है।
0: अच्छा ठीक बा, आदमी ढेर बढ़ गए ना। पहले से तब बहुत अच्छा बा, पहले तो और दिक्कत होता जब बहुत लास्ट नंबर लू तब और दिक्कत चेंज भर तो ठीक बा। और सब ठीक बा?
1: हाँ और सब ठीक बा।
0: टेलीफोन छुट्टी बानी?
1: हाँ हाँ छुट्टी पे बानी।
0: ठीक बा तब
1: ठीक बा। फिर गाना प्ले करता नहीं सुना, सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक।

0: और भरोसेमंद परफॉर्मेंस ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 59536 या 9956 57902।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 056।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone din de bajte hai to kehte hai
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, स्वागत है आपका रेडियो रंजन 94.4 में। जी नमस्ते,
6: क्या हाल है मैडम जी?
5: जी
6: क्या हाल है आपका?
5: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
6: अभी ठीक है, नाश्ता पानी हो गया?
5: हाँ हाँ, नाश्ता पानी हो गया, आपका हो गया?
6: हमारा भी हो गया। और इधर का मौसम?
5: इधर का मौसम अभी तो गर्मी पड़ रहा है।
6: बारिश नहीं हो रहा है?
5: नहीं, बारिश नहीं हो रहा है। आपकी तरफ हो रहा है क्या?
6: अब हम तो अभी कश्मीर में आए हुए हैं, जलालपुर के करीब में। अभी कश्मीर में आए हुए हैं, यहाँ का मौसम
5: वहाँ तो हल्का ठंडा रहता ही है।
6: तो हमको गाना सुनना था,
5: बता दीजिए कौन सा।
6: ये चावल में बाहर जाओगी तो हल्ला मच जाएगा।
5: एक बार और बता दीजिएगा।
6: चावल में बाहर जाओगी तो हल्ला मच जाएगा।
5: डेडिकेट भी है।
6: हाँ, ये सबसे पहले आपको जितने रेडियो सुनने वाली दिखाए सबको।
5: तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: जी बहुत स्वागत है आपका 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं सुवीर बोल रहा हूँ, कोरिजमा जिला देवघर झारखंड से। मैं
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ।
1: और गोपालगंज तरफ बारिश कैसे हो रही है?
0: अभी तो इधर बारिश नहीं हो रहा है, धूप निकला हुआ है और गर्मी भी वैसे ही है।
1: जी जी, इधर भी बारिश नहीं हो रही है मैम, बड़ी से खेती हो रही है लोगों की। अपने भी खेती पंप लगाना पड़ता है या मोटर लगा खेती करना पड़ रहा है?
0: ये तो बात सही है, जब बारिश की जरूरत होती है तब होता नहीं है, जब ना
1: होता है बेमौसम बारिश हो रही है।
0: गाना कौन सा सुनना है
1: आज? सुना दीजिए मैम, ऋतिराज का बोलूम का वो गिदर बात वाला ये पर है।
0: हाँ।
1: जी, वही गाना सुना दीजिए।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: जी, सबसे पहले मैं आपको सोनी मैम को, सोनू सर को और रेडियो रंजन के जितने आरजीएस एम एस सबों को और रेडियो रंजन के जितने श्रोतागण है सबों को और हमारे दोस्त सबको भी सुनाना चाहता हूँ। मदन को लें, प्रभु को लें, राजकुमारी हैं, पूरन को लें, कृष्ण को लें, केदारनाथ को लें, केदारनाथ को लें, संजय को लें, राजीव रोशन, कुमार सिंह, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और

0: संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
3: बोलबम, हर हर महादेव।
4: Now pick your phone up.
5: Hello.
4: Pick it up, pick it up.
5: Hello.
4: Now pick your phone up.
5: Hello.
6: Jab phone gende bajte hai to kehte hai hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
7: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhvar aur shukrvar ko subah subah 11 baje se call karke apne gaane ke farmaish ko record kara sakte hain. नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो मैडम, नमस्कार
9: जी। नमस्कार, रेडियो रेंज 90.4 FM।
8: मैं मनन बोल रहा हूँ, कपूरपुरा का।
9: कैसे हैं आप?
8: हाँ, बहुत बढ़िया हूँ। आपको वो फिल्म का गाना सुनाइए, जीने नहीं दूंगा।
9: और गाने की?
8: आ, गाना है वो याद रखना साजना, वो याद रखना ना, ये गाना है, ये आशा भोसले का गाना है।
9: अच्छा,
8: तो ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
9: ओके।
8: किसी से भी आप बात करते हैं, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होता है। अब आप बेफिक्र होकर के बात करते
9: हैं,
8: वही थोड़ा मैसेज आप पढ़ने में कभी रुक जाते हैं।
9: कभी कभी रुक जाते हैं।
8: आप नौकरी को लगे हैं, बहुत बहुत अच्छा है। सब कोई आपको मतलब प्यार दे रहा है। आपको भारती जी को कोई नहीं जानता था, लेकिन भारती जी मेरा मैडम जी है। ये जान के हमको बहुत खुशी हो रही है। आपके घर वाले भी सुनते होंगे तो बहुत अच्छा पाते होंगे। जो भी रिंजिंग का है प्रोग्राम तो बैठा लगा है, रेडियो मजा लगता है। हम बचपन बजा रहे हैं। चलिए मैं तो बहुत हो गया बात, आज हम तो ये गाना जो है जीना नहीं दूंगा, ये वो गाना सुनवा दीजिए।
9: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रेंज 90.4 FM।
8: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
0: एफएम में। नमस्कार, आवाज नहीं आ रहा था क्या?
1: आ रहा था, बोलिए।
0: भारती जी बोल रहे हो ना? और सब?
1: और सब ठीक है, आप अपना बताइए।
0: बस ठीक है, पहले मेरा रिक्वेस्ट का ऐड कीजिए, नहीं तो भूल जाऊंगा। विनय बिहारी का है, अंगूरी में अंगूठी बात सगाई के।
1: अच्छा,
0: ये इसको ऐड कीजिए, इसको सुना दीजिएगा, डेडिकेट रहेगा सोनी मैम को, आपको, जितने सुनने वाले हैं सबको।
1: ओके,
0: और सब सुनाइए, कैसा मौसम कैसा हो रहा है आजकल?
1: गर्मी तो बढ़ गया है, बहुत गर्मी पड़ रहा है।
0: बारिश बिल्कुल बंद
1: बंद हो गया है।
0: दिल्ली में तो हो रहा था, आज नहीं हो रहा है।
1: अच्छा,
0: कल दिन रात
1: गया है, अब इधर देखिए कब आ रहा है।
0: तीन रात बारिश हुआ है, कल तो दोपहर में बहुत अगड़ी बारिश हुआ है।
1: चलिए ठीक है, कहीं तो ठंडा मौसम हो रहा है।
0: कल तो मैं मेरा गाना नहीं सुना है ना, क्या है?
1: सुनाने वाले थे लेकिन मैं लिखा हुआ था प्रतिवार को कि किस दिन का लिखे हुए हैं, हम नहीं लिखे, मतलब सुनी भी लग रहा है लिखते गई हुई है।
0: पकड़ लीजिए लेकिन
1: इसीलिए नहीं बताए।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। फिर वीरवार को ही मैं थोड़ा ध्यान से उतर गया था कि किस दिन बजा था ये। मैं सोचा कि कल एक सुन लो, लेकिन ठीक है, पकड़ा गया, बढ़िया है।
1: अगर कॉल मतलब जो कल के लोग जुड़े थे, मतलब कल के लिए, उन लोगों का नहीं होता तो बजा ही देती।
0: ना ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ध्यान नहीं था कि वीरवार को सुने थे, कोई बात नहीं, सुना दीजिएगा ये।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
8: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
14: सलाम अलैकुम।
13: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
14: थैंक यू। कौन मैम बोल रही है? मैं अहमद अली कर रहा हूँ, नंबर है।
13: जी मैं भारती बोल रही हूँ।
14: कैसे हैं मैम?
13: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
14: हम लोग खाते हैं।
13: नाश्ता हो गया आपका?
14: जी मैम।
13: स्वास्थ्य आने के
14: बहुत दिन हो गया था जुड़े हुए इस प्रोग्राम में। योर वॉइस योर चॉइस में तो डेली जुड़ते हैं।
13: जी जी,
14: लेकिन इसमें बहुत दिन हो गया। आज मेरे को सॉन्ग सुनाइए, मूवी है ये गाना है ना अक्षय कुमार का तेरे बगैर इंतजार और क्या करूं, एक गाना है ना
13: शायद है, मैं कंफर्म तो नहीं हूं क्योंकि सुने नहीं है।
14: इतना तेरे बगैर प्यार कैसे करूं, एक गाना है अक्षय कुमार है मेरे बेगो।
13: अच्छा जी चलिए बजा दीजिए।
14: मिला क्या प्यार कुछ ऐसे है इतना तेरे बगैर मैं प्यार।
13: अच्छा जी इतना ही काफी है ढूंढने के लिए।
14: मिला क्या?
13: मिल जाएगा।
14: अक्षय कुमार का है
13: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
14: सबसे पहले तो आपको सोनी मैम को
13: जी,
14: और अखरी को, कमरान रफी को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
13: ओके
14: आज बजेगा क्या? आज तो दूसरे नंबर मेरा कॉल होगा।
13: नहीं पहला है।
14: पहला है तो बजेगा, कोशिश करिए बच जाए। ठीक है मैम
13: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
14: थैंक यू मैम।
13: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
1: हाँ, प्रणाम मैडम।
0: प्रणाम।
1: वाह, हमको गाना सुनना है।
0: बता दे कौन सा गाना।
1: छतरी न खोल बार कान में।
0: और गाना किसी को सुनाना है।
1: घर के लोग का सुनाना है। अब मेरा गाना की एक और नंबर से मेरा फोन लगा है।
0: आपका तो फोन लगा है 11 नंबर।
1: हमसे पहले 10 नंबर लोग कर चुके हैं ना। आपका कॉल ज्यादा है।
0: बहुत ज्यादा कॉल आता है इसे।
1: खाना ना हो गया मैडम। मैडम का नाम आपका क्या हो।
0: भारती।
1: भारती। अब इसमें कितना मैडम है लो।
0: तीन।
1: अच्छा, तीन मैडम है लो और जेंट्स बस नहीं लो। गानों का बीच ध्यान सुनाएंगे ना।
0: हाँ
1: ठीक है मैडम,
0: आज नहीं तो कल देख लीजिएगा।
1: हाँ ठीक है,
0: चलिए फिर गाना प्ले कर।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
2: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
10: कॉल करें 87-894-18-744।
11: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
10: अरे वाह इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
9: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 FM में।
15: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
14: जी नमस्कार
15: जी, मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
14: जी क्या हालचाल है आपका?
15: हालचाल तो बहना जी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ, और इस समय कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
14: ओके
15: जी बहन,
14: और गाना कौन सा सुनना है आपको?
15: गाना बहना जी गाना सुनेंगे, तेरी बेवफाई का चिकवा करूं तो तेरी मोहब्बत की, ये वाला गीत
14: और डेडिकेट भी है
15: सभी रेडियो सुनने वाले साथियों को, तो इस समय रेडियो सुनेंगे रिमझिम और कुछ लाइनें कहने इजाजत हो।
14: बिल्कुल कह दीजिए।
15: खुद को तुम्हारी यादों का गुलाम कर दिया, तुम्हारे खातिर खुद को बदनाम कर दिया, क्या साबूत दूं आपको अपनी मोहब्बत का, एक सीने में दिल था वो भी रेडियो रिमझिम के नाम कर दिया।
14: क्या बात है। चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
15: जी बहन प्रणाम। नमस्कार।
14: नमस्कार।

0: हेलो
1: मैम, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: मैम शैलेश कुमार बराबंकी से।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप बताइए।
0: मैं भी अच्छी हूँ। मौसम तो इधर अभी गर्मी है, धूप भी वैसे ही है, और आपकी तरफ कैसा मौसम है?
1: लगभग 15 दिनों के बाद आज धूप निकली है बढ़िया।
0: अच्छा, इतने दिनों तक बारिश हो रहा था क्या?
1: बारिश धूप ही नहीं निकल रहा था, थोड़ा सा निकला था, थोड़ा निकला ही नहीं।
0: अच्छा जी।
1: हमारे 2 घंटे पे बारिश आ जाना, फिर खुल जाना, फिर आ जाना, फिर खुल जाना। 15 दिनों बाद लग रहा है कि फिर गर्मी में वापिस आ गए।
0: अच्छा, चलिए ठीक है। और गाना कौन सा सुनना है?
1: ये गाना सुना दीजिए। गाना सुनना है ना, किस नाम से तुझको याद करूँ, छोड़िए उसको छोड़ दीजिए, सुना दीजिए। क्या नाम है? चोट जिगर पे खाई है थी, मैं जानू या वो जाने। ये चंदा की गजल है, ये सुना दीजिएगा।
0: और सॉन्ग किसको डेडिकेट है?
1: भाई को, आपको, अपनी मम्मी को, पूरे रेडियो परिवार को, तमाम रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
10: प्रसाद क्लिनिक,
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो। बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
14: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं चंडीगढ़ से।
15: जी, क्या हालचाल है आपका?
14: बढ़िया है भारती जी।
15: और सब ठीक है?
14: हाँ, सब बढ़िया है। आप लोगों की बात तो सब बढ़िया है।
15: तो क्या हो रहा है अभी?
14: अभी तो काम कर रहे हैं।
15: अच्छा, और गाना कौन सा सुनना है आपको?
14: गाना हमको सुना दीजिए हिंदी, राम कसम दिल्ली सरकार हिला।
15: और सॉन्ग डेडिकेट है?
14: हाँ, अपना पांडे जी है, रंजीत है, सुनील है, सूरज है। रेडियो रंजन पता जितना सुनते हैं सारे आदमी सुनेंगे।
15: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
14: बोल बोल को शुभकामनाएं देते हैं सारे श्रोता को, जितना सुनते हैं सबको।
15: जी जी,
14: कल तो सावन शुरू हो रहा है। महादेव जी सब सारे आदमी को कृपा अपना बनाए रखते हैं।
15: बिल्कुल,
14: यही शुभकामना हमारे तरफ से है।
15: चलिए गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
14: नमस्कार।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: बाकी मैम नमस्कार प्रणाम।
0: नमस्कार प्रणाम।
1: आज ये सॉन्ग चला दे हम।
0: बता दी कौन सा?
1: और तुम क्या शिल्पी राज के अपने पसंद से।
0: अच्छा और सॉन्ग के सुनाहू के बाद?
1: पहले तो रोगा तो सुनाओ के बाद जितना लोग बोल बम जाता उस सबके उसे सुनावे चाहो।
0: अच्छा चलिए
1: पता भी बताओ पड़ी।
0: हमारा तो पता बा मतलब लोग के जाने के चाहे न की कहत अवे सुनाए के।
1: हम उनसे चलो बोलते नहीं बंजारी रोड पुलिस के सामने गोपालगंज को राघव जी।
0: और सब ठीक बा ना?
1: एकदम रोल के दवा से चलता दुरता।
0: अच्छा
1: सुनाई राहुल कैसन बा?
0: हम के बानी सन।
1: रोल के टीम के का हाल बा?
0: सब जाने ठीक बानी सन।
1: चलो ठीक रहे के चाहे। अब बहुत खुशी भाई लोग शो में आवते नहीं तो ऐसे 10-15 दिन पर नहीं मालूम पड़े हमारा की एकदम में आवे वाला बानी शो लेके बहुत जल्दी।
0: अच्छा
1: राहुल राहुल डायरेक्टर साहब बताओ।
0: चलिए ठीक है
1: बात बा बहुत खुशी के बात कर रहे शो में आई नहीं ताई की पहले दे रहे वो तो कहीं कहीं चल गयी।
0: ठीक बात अब गाना प्ले करते नहीं सुनते रही रेडियो 90.4।
1: थैंक यू मैम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
7: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
8: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
2: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक, हकाम बाईपास, सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक, मैरवा, सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
9: श्रोता लोगिन नमस्कार, रवा सभी सुनत बानी आपन बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और ये हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गल बानी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने के आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ये बिरहा।

0: हम के आसाना विश्वास बा कि आप लोग जहाँ भी होखब मस्त होखब स्वस्थ होखब हंसत होखब। तमाम आप लोग कांड सुनीला हमरा आवाज में बहुत दुलार प्यार जौन दिला एक खाती हम आभारी बानी। एक और कांड प्रकाश में आइल बा और हैवानियत के भी हद हो गई बा। बाहर कलयुग और बाहर कलयुग के चरण शायद अभी कहल जाता कि कलयुग का पहला चरण चलत
1: है। अरे वाह,
0: चौथा चरण में का हुई समझ में न आवत बा। बाहर जमाना और जमाना के लोग कितना नीच स्तर पर उतर चुकल बनन कुछ समझ में न आवत बा। ध्यान दिहन अगर मिजाज से ए बिरहा की सुनब आप लोग एक बार सोचे पर मजबूर होखब कि दुनिया कहाँ जाता, ये दुनिया के लोग कहाँ जाता। चार लाइन कवि जी बड़ा अच्छा भाव दिहलन है भूमिका के लाइन में

बात कहां से लिहल गई? आप लोग न्यूज में, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखत हो, पढ़त हुई हैं। कहानी बड़ा भयावह बा, लेकिन कहां से उठल बा कहानी? नजम के लाइन दिहल गल का,

0: तनी बात समझ ला। राजस्थान के अंदर गांव का नाम गंगानगर, वहीं की ये कहानी है। एक मात्र 13 वर्ष की बेटी भगवान हरे कुखी पतई देलन, हर घर में बेटी है। वो 13 वर्ष की बिटिया कहीं अपने गई थी सखी से मिलने के लिए, और सखी से मिलकर आ रही थी, रास्ते में लेट हो गया, रात हो गई आने में। लेकिन उस लड़की के साथ हुआ क्या बाबू?
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: लेकिन उस लड़की के साथ हुआ क्या बाबू? तर्ज बा मास्टर बड़केदा का तर्ज कलाइन बा।
11: यह तरज है कि रतिया में जब रजनी, रतिया में जब रजनी,

अपने घर से निकलती है बाबू गंगा नगर से, और विजयनगर उसकी कोई सखी थी उसी से मिलने के लिए जाती है। उधर से आने में उसे लेट हो गई, साधन नहीं मिल पा रहा था और रास्ते में लेट हो गया। लेकिन रास्ते में बाबू उस रात को होता है क्या तरज बात, तनी से बढ़ के द मास्टर।

उस रात को जब कोई साधन नहीं मिला, बाबू रास्ते में एक ई रिक्शा चलाने वाला दिखाई पड़ा है। हाथ देती है, ई रिक्शा वाला रोक दिया, जिसका नाम राम बाबू शायद बताया गया सोशल मीडिया पर, दिखाया भी गया सोशल मीडिया पर। राम बाबू नामक वो रिक्शा चालक रोकता है, कहती है कि भैया कोई साधन नहीं मिल रहा है, हमें गंगानगर तक पहुंचा दो। कहता है कि ठीक है, आओ बैठ जाओ। लड़की को बैठा लिया, लेकिन देखें लड़की क्या जानती थी कि मेरे ऊपर विपत का पहाड़ टूटने वाला है। लड़की के का पतावा, मात्र उम्र 13 वर्ष बतावल गई, नाबालिग लड़की है। और राम बाबू नामक रिक्शा चालक उस लड़की को एक होटल तक ले जाता है, होटल पर ले जा करके और होटल के मालिक को बेच देता है। लड़की को जब बेच दिया, वहीं पर वो मालिक, होटल का मालिक और मैनेजर मिल करके लड़की को उतार लिए। लेकिन उस लड़की के साथ मालिक, मैनेजर और लोग करते हैं कि क्या बाबूजी,

कबो कबो हो सायावे लागे जबरोवे गावे जबर

0: उस लड़की को बाबू उस होटल के मालिक और मैनेजर मिलकर के रेप किए, बलात्कार किए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया और मीडिया से ये प्रमाण मिला कि उस लड़की के साथ होटल के मालिक और मैनेजर नहीं बल्कि 30 लोग लगभग बलात्कार करते रहे। हर घर में बेटी बहन है, एक 13 वरिष्ठ लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ 30 लोग बलात्कार करते हैं बाबू, लड़की कहां से बर्दाश्त कर पाए। बेहोश हो जाती थी, कभी कभी होश में रोते हुए आती थी तो साले सब दारू पिलाते थे। जबरन जबरदस्ती, दिन हो या रात हो, उस लड़की को दारू पिला पिला करके बलात्कार करते रहे।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: इसके बाद 22 जून 2026 को उस लड़की को छोड़ दिए लोग, और जब छोड़े हैं, किसी तरह से लड़की गिरती पड़ती थाने तक एक जाती है और दरोगा जी से गुहार लगाती है, एक बात कहती है। क्या कहती है बाबू? लड़की रोत में कहत में, अस्त व्यस्त शरीर है, फटे हुए कपड़े हैं, लेकिन रो करके वो 13 वर्ष की मासूम बेटी उस दरोगा जी से गुहार लगा करके।
9: कड़ी सुरक्षा, नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। ताजा जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक लगभग 34% मतदान का अनुमान। राज्यसभा में आज पेश किया गया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर चर्चा जारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने की छापेमारी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुल्तानगंज में 1,00,000 से अधिक कांवड़ियों ने उत्तर वाहिनी गंगा में किया स्नान। अब समाचार विस्तार से। पटना के बांकीपुर की प्रतिष्ठित विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक 34% मतदान होने की खबर है। एक रिपोर्ट।
10: उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। महिलाओं और युवा मतदाताओं ने विशेष उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने विशेष इंतजाम किए थे। मतदान केंद्रों और आसपास के इलाकों में जिला पुलिस बल के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सभी 422 बूथों पर लाइव स्ट्रीमिंग और वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी गई। मतदान की समाप्ति के साथ ही 25 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
9: मतदान के दौरान कैसा रहा माहौल जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन का। आशीष, बताएं कैसा रहा आज का मतदान?
11: जी खालिद, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भागीदारी देखने को मिली। युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता भी पूरे उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे थे।
9: जी बताएं कि किन प्रमुख लोगों ने मतदान में भाग लिया?
11: आपको बताते चले कि प्रमुख नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पटना विमेंस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने मतदान किया। वहीं डाक बंगला स्थित बूथ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, अपने पुत्र विवेक ठाकुर उनके साथ वोट डालने पहुंचे थे। इसके अलावा अलग अलग मतदान केंद्रों पर राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और रामकृपाल यादव भी मतदान करने पहुंचे। वहीं वार्ड 19 स्थित एक बूथ पर भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
9: अगर मुद्दों की बात करें आशीष, तो क्या लगता है आपको इस चुनाव में मुद्दे क्या रहे?
11: जी खालिद, विभिन्न मतदान केंद्रों पर जब हमने मतदाताओं से बातचीत की तो उन्होंने विकास को सबसे प्रमुख मुद्दा बताया। कई मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखकर मतदान किया है। वहीं युवाओं ने रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता बताया, जबकि कई वरिष्ठ मतदाताओं का मानना है कि विकास कार्यों की जो निरंतरता है वह यहां बनी रहनी चाहिए।
9: धन्यवाद आशीष इस जानकारी और अपडेट के लिए। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने कहा कि उनका अपना मत विकास के लिए दिया है। मतदाताओं ने स्पष्ट किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, साफ सफाई, कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया।
12: यही कि जो हो एजुकेशन नॉलेज को लेके वो अच्छा हो, जो फ्यूचर का हो वो एजुकेटेड हो, लोगों के यूथ के प्रॉब्लम्स को समझे।
13: उम्मीद तो यही है कि अच्छा करे, विकास करे। हम लोग आम जनता वोट दे रहे हैं, विकास तो करना उन्हीं को है।
14: बहुत सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन है, बच्चों की नौकरी वगैरह है, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर है, उसी मुद्दे पर दिए।
15: हमारा मुद्दा विकास रहता है। अब की बार पढ़ाई, अभी आप देख रहे होंगे कि एंटी रिजर्वेशन भी चल रहा है, तो ये सब 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इसको नजर में रखा जाए।
9: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी से रहा है, इसलिए चुनाव में जीत सुनिश्चित है।
16: आज अपने भाजपा एनडीए के उम्मीदवार नीरज जी को वोट देकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है, लेकिन एक बात मैंने देखा है कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी के साथ वर्षों से है।
9: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि 3 अगस्त को नतीजे में भाजपा की बड़ी हार होगी।
17: जहां से भी फीडबैक आ रहा है, इस बार उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी करारी हार होने जा रही है और हमारी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता जी भारी मतों से उनकी जीत होने जा रही है। समाज का हर तबका, चाहे किसी जात के हो, धर्म के हो, खुल करके जो है वोट दे रहे हैं।
9: राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पर चर्चा की जा रही है। इससे पूर्व कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक पेश किया। ये विधेयक कल लोकसभा में पारित कर दिया गया था। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तथा दोषी ठहराए गए अपराधियों की संपत्तियों की जब्ती जैसे कठोर प्रावधान शामिल किए गए हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना भी इस विधेयक में शामिल किया गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि पहले की सभी सरकारों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पहली सरकार है जिसने एंटी पेपर लीक कानून बनाने की पहल की है।
18: ये कोई लीक कोई इसी सरकार में हुआ, इसका एक इतिहास है। हर एक पार्टी के सरकार में हुआ और हर एक राज्य में कभी न कभी ये परिस्थिति बनी है। सरकार सेंसिटिव हो करके दोनों साइड, एक तो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की, इतना इंपॉर्टेंट कमिटी जो ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो और टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज हो, और दूसरा की हार्शेस पनिशमेंट लोगों को और पूरा देश। तरीका तो वही हो सकता है, इनके प्रवचन से तो ठीक हो जाएगा ऐसा है नहीं।
9: आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आज रोहतास जिले में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के राज्य भर में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। ईओयू के अधिकारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सासाराम के बेदा स्थित विभागीय कार्यालय और डेहरी ऑन सोन स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की गई।
19: यहां के अलावा अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है आर्थिक अपराध की।
9: आरोपी कार्यपालक अभियंता के पटना के दानापुर, बांका और मुजफ्फरपुर में कई ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन महीने के दौरान 4 सोमवार पड़ेंगे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। सावन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, पटना जिले के बिहटा स्थित बिटेश्वरनाथ और फतुहा स्थित बैकटपुर धाम समेत विभिन्न शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हमारे कैमूर संवाददाता ने बताया कि मां मुंडेश्वरी मंदिर में चतुर्मुख महादेव के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और अन्य गणमान्य लोगों ने राज्यवासियों को पवित्र सावन मास की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि भगवान भोलेनाथ से कामना है कि हमारा समाज सद्भाव, सेवा और संस्कार के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। सावन माह की शुरुआत के साथ ही सुल्तानगंज के पवित्र गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा है। एक रिपोर्ट।
1: सावन के पहले दिन ही बाबा अजगैबीनाथ धाम में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर अपनी पवित्र यात्रा की शुरुआत की। सुबह तड़के 3 बजे से ही नमामि पवित्र गंगे घाट, शिवरी घाट और जहाज घाट पर श्रद्धालुओं की कतारें लग गई। मेला प्रशासन के अनुसार विभिन्न गंगा घाटों पर आज 1 लाख से अधिक कांवरियों ने स्नान किया और जल भरा। जिला प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र और कांवर पथ पर CCTV कैमरों से निगरानी रख रहा है। कांवरिया पथ पूरी तरह केसरिया रंग में रंग चुका है। चारों तरफ सिर्फ बोलबम, हर हर महादेव और बाबा नगरी चलो के गूंज जयकारे माहौल को पूरी तरह शिवमय बनाए जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
0: स्वास्थ्य विभाग ने सावन के महीने के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने शुभकामना देते हुए कहा कि श्रावणी मेला के दौरान किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत राज्य के 16 जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। मानसून की गतिविधियां बढ़ने के कारण पटना और आसपास के विभिन्न स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीवान समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, भभुआ और पश्चिम चंपारण जिले में अनेक स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: दिनांक 31 जुलाई को राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, भभुआ एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: नेपाल के सुनसरी जिले में तनाव की स्थिति को देखते हुए अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। SSB, नेपाल सशस्त्र पुलिस और बिहार पुलिस ने सीमा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गश्ती अभियान चलाया। SSB की 52वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट आलोक कुमार ने बताया कि सीमा क्षेत्र में सभी स्थानों पर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। कैंप कमांडर निरीक्षक प्रकाश चंद्र पांडे ने बताया कि पूरे क्षेत्र में गश्ती अभियान नियमित रूप से चलाया जा रहा है। इस समय चौकसी और बढ़ा दी गई है। इधर नेपाल प्रशासन ने बिना किसी वैध पहचान पत्र के भारतीय सीमा से नेपाल सीमा में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सारण जिले में पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग से बचाने के लिए किसानों को जागरूक किया गया। जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव कार्यक्रम के दौरान भ्रमणशील चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने किसानों को पशुओं की देखभाल के लिए टीकाकरण और बचाव के अन्य उपायों की जानकारी दी। वैभव सूर्यवंशी को आगामी दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ईस्ट जोन टीम का उप कप्तान चुना गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने इस उपलब्धि के लिए वैभव सूर्यवंशी को शुभकामनाएं दी हैं। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से दरभंगा समाहरणालय सभागार में हर घर तिरंगा विषय पर क्षेत्रीय मीडिया वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट राजेंद्र कुमार और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के डीआरडीए सभागार में आपदा प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। ताजा जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक लगभग 34% मतदान का अनुमान। राज्यसभा में आज पेश किया गया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक। विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर चर्चा जारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने की छापेमारी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुल्तानगंज में 1 लाख से अधिक कांवड़ियों ने उत्तर वाहिनी गंगा में किया स्नान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

दरोगा जी जब उस लड़की की इस हाल को देखते हैं और उसकी बात को सुनते हैं, डॉक्टर के यहाँ ले जाकर के तुरंत हॉस्पिटल में उपचार कराने हेतु भर्ती किए, लेकिन बाबू लड़की रो करके कहती है कि मेरी माँ को बुला दीजिए दरोगा जी, मैं हो सकता है कि मैं बचू नहीं, हो सकता हम मर जाए, लेकिन मरे से पहले तनी माई से भेंट कर चाहता नहीं। घर पर खबर दिया गया बाबू, माँ बाप रोते बिलखते हॉस्पिटल में आए हैं और जब बेटी को देखते हैं, एक तरफ माँ गिर जाती है, एक तरफ पिता रो करके गिर जाता है, लेकिन उस समय उसकी माँ बेड पर उस बेटी के बैठी हुई है और बिटिया रो रही है, सामने बेड पर पड़ी है, उस समय रो करके अपनी माँ की सूरत देख करके और अपनी माँ से वो लड़की एक बात कहती है। क्या कहती है बाबू? लड़की रोत बे और माई से एक बात अपने कहत बे, माई बेड पर बैठल बे, बिटिया बेड पर पड़ल बे, पानी चढ़त बा, उपचार होत बा, लेकिन वो लड़की अपने माई से रोके का कहलस बाबू कि कैसे के करी हम सबुरा भाये माई, कैसे के करी हम सबुरा

एक तरफ माँ रो रही है बेट और एक तरफ बेटी रो रही है। एक बात तौरू 13 बरिस की बिटिया कहत बे अपने मतारी से का कहलस कि सुन सान मंगी।

रो करके बिटिया 13 वर्ष की बेटी कहती है कि माँ अब मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ, कौन सी मुंह लेकर के मैं गांव में जाऊंगी, मेरे मांग में कौन सिंदूर भरेगा, जिंदगी मेरा नरक हो गया माँ, इससे बेहतर है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाना चाहती हूँ माँ। माई बेटी के बात सुन के रोत वे बाबू कई का सकत वे, लेकिन जब बेटी के इतना बात सुनन माई बाबू बगले में बाबू खड़ा हुन, बेटी के बात सुनत हुन, ओ समय मतारी रो के एक बात कहलस का, ये माई रोत और बेटी से कहलस कि बेटी इसे काहे कहत अड़ो, का कहत पे माई

0: आखिर बाबू अब क्या पछतायो, जब चिड़िया चुन गई खेत, जो होना था हो गया, लड़की बर्बाद हो गई, हॉस्पिटल में तड़पती रही, जिंदगी और मौत के बीच खेलती रही वो लड़की।
1: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
7: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
1: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
10: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
12: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
13: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
12: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
13: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
12: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
13: जानकारी है तो कॉल करे 62052612 पे।
0: जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही, लेकिन देखे कभी जी टेरी के भाव दिए है क्या बड़के दा मास्टर।
14: अब गंगा जमुना की धारा थम गई, गम में सिसक रहे थे सूरज चांद सितारा।
0: आज कहना है कभी का, सरकार विचार करे इस पर क्या,
14: सरकार विचार करे इस पर क्या, यही फील गुड है भारत।
0: आज हम कहते हैं कि हमारा भारत फील गुड में है। हमारा भारत जो है हिंदुस्तान, आज डिजिटल हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान डिजिटल हो गया, गुड फील है भारत। तो कभी का कहना है कि सरकार विचार करे इस पर क्या, यही फील गुड है भारत।
14: जनमानस रोड पे उतरेगा तो मच जाएगा महाभारत। लगभग 80 बेटी नित दिन, अरे लगभग 80 बेटी नित दिन दुष्कर्म की आग में जलती है। सब लोग मिलकर बतलाएं कि किस किस में गलती है। गंदी नाली के कीड़ों को यदि जल्द नहीं फांसी होगी, महिला आयोग ललकार कहे फूलन पुतली झांसी होगी। अगर
0: अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है बाबू, अगर गद्दी पर बैठे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, तो अंत में वही नेपाल और बांग्लादेश की हालत होगी। जिस दिन पब्लिक रोड पर उतर जाएगी, उस दिन सरकार को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ेगा, चाहे किसी की सरकार हो। सरकार से ही, जनता से ही, पब्लिक से ही सरकार बनती है। सरकार गद्दी पर बैठ जाती है तो भूल जाती है कि हमने इलेक्शन के वक्त क्या क्या वादा किया था। इलेक्शन में तो हजारों वादा कर देते हैं लोग, लेकिन वो दिन भूल जाते हैं। तो बात कवि जी के लिखे के पड़ल। अल्लाह कलाइन बाबड़ के दा।

तनी बात समझला। ए बात के सुन के बाबू जिला एसपी हरिशंकर यादव जी आते हैं और साथ में रीजनल एसपी कैलाश दान आए। दोषी पकड़ाए, जो जो दोषी थे सोशल मीडिया पर आप लोग देखे होंगे, लोग पब्लिक 300 लोगों को मारते हुए पुलिस वालों के सामने थाने पर ले जाती है और जब पकड़ाए हैं सभी लोग ले जाकर के जेल के अंदर बंद किए, आज केस चलना शुरू हुआ। लेकिन वो लड़की जो 13 वर्ष की मासूम बेटी थी आखिर इस जंग को नहीं लड़ पाई। बाबू जो हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी मौत के बीच वो जूझ रही थी, 3-4 दिन बीतते बीतते उसी हॉस्पिटल में अपना अंतिम दम को तोड़ देती है। एक माँ की गोद बेटी के लिए सुना हो गया, एक पिता का गोद बेटी के लिए सुना हो गया। बाबू बेटी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी, लेकिन आज वो कातिल जेल के अंदर बंद हैं, केस चल रहा है। हिंदुस्तान के लोग जो भी इस घटना को सुनते हैं, सभी लोगों की मुंह से आवाज आती है कि उन दरिंदों को की तो फांसी होना चाहिए, नहीं तो उम्र कैद होना चाहिए। कबीर जी गाना के अंतिम लाइन में दिहलन है, का दिहलन है बड़ी के दमास्टर,

0: आखिर जब तक सरकार इस पर नहीं विचार करेगी बाबू, घटना आए दिन रोज इसी तरह होगा। आज दूसरे पर है, लेकिन जिस पर पड़ता है वही जानता है। सबके घर में बहन बेटी है, बहन बेटियों का सुरक्षा अब करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज आए दिन जो घटना सुनने को मिल रहा है इसी तरह से होता रहेगा और सरकार आंख बंद करके गद्दी पर बैठी रहेगी। तो हम लोगों को विचार करना है कि अब क्या करना चाहिए। हम लोगों को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार भी बदलेगी। गाना के अंतिम प्रमाण रहल,
1: जय जयकार गुरु जद्दू श्रीनाथ जी की फुलवारी। कथन करे कवि अनुज लाल निसार मितवा की तैयारी। अरे गंगा जमुना की धारा थम गई, गाते ओम प्रकाश

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुते अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रउआ सभी कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए की दी इजाजत। नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग।

0: सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955 97644।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
7: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
8: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
9: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण गांधीनगर गुजरात में आजीवन सदस्य के एक पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। आजीवन सदस्य के पास भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के लिए स्वीकार्य वेतन या ₹5,00,000 प्रति माह के समेकित वेतन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प होगा। पद का विवरण और पात्रता शर्तें आर्थिक कार्य विभाग के अधीन मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। वेबसाइट का पता है DEA.gov.in। निर्धारित प्रारूप में पात्र उम्मीदवारों के आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उचित माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा संख्या 10042, कर्तव्य भवन 1, नई दिल्ली 110001 के पास 14 अगस्त 2026 से पहले पहुंच जानी चाहिए। अपूर्ण आवेदन और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान लेह लद्दाख आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2, चिकित्सा विशेषज्ञ आधुनिक चिकित्सा, रोग विज्ञानी, विकिरण विज्ञानी, अस्पताल अधीक्षक, प्रशासनिक एवं लेखाधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान सहायक और निजी सचिव। निर्धारित प्रारूप में पूरी तरह से भरे हुए आवेदन, व्यावसायिक योग्यता, आयु, जाति और अनुभव प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ भेजे जाने चाहिए। पदों का विवरण, उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश और आवेदन प्रपत्र का प्रारूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा लेह की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.sovarigpainstitute.in। टाटा स्मारक केंद्र नवी मुंबई आवेदन आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए। चिकित्सा अधिकारी, ई क्लिनिशियन साइंटिस्ट सेल्यूलर थेरेपी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी, वैज्ञानिक अधिकारी, डी वैज्ञानिक सहायक, बी वैज्ञानिक सहायक बी हिमेटोपैथोलॉजी, वैज्ञानिक सहायक बी पैथोलॉजी, वैज्ञानिक सहायक बी रेडियो डायग्नोसिस। आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण 13 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है, जो 7 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख रहेगी 7 अगस्त 2026 को शाम 5:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए देखिए टाटा स्मारक केंद्र की वेबसाइट sctrec.gov.in। आवेदन ऑनलाइन ही जमा करना अनिवार्य है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक HR तथा चिकित्सा अधिकारी। विस्तृत जानकारी उपलब्ध है दिल्ली ट्रांसको की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.dtl.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
12: भरोसे वाले से लेंगे,
11: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
12: और कीमत भी।
11: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
13: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
14: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
15: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
16: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
15: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
17: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
15: कॉल करें 8570-32042 पे।
18: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
19: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
18: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
19: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
18: संपर्क करें 9939365923।
20: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
21: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
20: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
21: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
20: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
22: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
23: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
22: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
23: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम, एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
22: हमारा जूनियर ब्रांच सर सिमरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
23: जानकारी है तो कॉल करें 62052 1112 पे।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
6: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
8: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
9: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
10: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
11: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पहली जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ISS ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। ISS अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
12: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
13: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
14: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
15: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
16: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
17: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
16: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
17: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
16: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
17: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
16: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
17: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
18: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
19: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
16: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
17: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
16: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
16: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
17: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
16: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
17: कॉल करें 70-70-75-63 या 70-70-75-42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
20: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
21: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
20: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
21: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
22: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं।

0: पसंद नहीं आए?
1: अच्छा मिला ही नहीं
0: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एनडीपीएस के एक आरोपी को हुई 10 वर्ष कैद की सजा। जिलाधिकारी ने नीलाम पत्र वादों की समीक्षा। औद्योगिक क्षेत्र का डीएम ने किया निरीक्षण। दिव्यांग जनों के लिए जॉब मेला का हो रहा है आयोजन। नगर निकाय के कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से।
4: नगर थाना की पुलिस ने 2024 में एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी पर केस दर्ज किया था और इसी मामले में आज एडीजे 2 की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया। इसमें अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई और 1,00,000 रुपए के अर्थ दंड की भी सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि कांड संख्या 353 2024 में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस कांड के अभियुक्त शशि रंजन कुमार उर्फ समीर डांगी उर्फ साबिर पिता कमलेश प्रसाद साकिन गुराव जिला गया को इस मामले में सजा सुनाई गई, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अगर 1,00,000 रुपए का अर्थ दंड जमा नहीं करेगा तो इसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से ललन द्विवेदी ने पैरवी की और इनके पैरवी पर ही अदालत ने आरोपी को सजा सुना दिया। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभा कक्ष में नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित नीलाम पत्र वादों के प्रगति पर विस्तार से समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार वादों की स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि राजस्व वसूली से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि लंबित वादों का समयबद्ध निष्पादन करें तथा नियमित रूप से कार्रवाई के प्रगति की भी समीक्षा करें। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति दी जाए। जिलाधिकारी समीर सौरभ के द्वारा बिहार औद्योगिक क्षेत्र निकास प्राधिकरण के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र हथुआ के फेज 1 एवं फेज 2 का निरीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों के सुचारू संचालन, स्वच्छता व्यवस्था तथा आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक मानकों के अनुपालन का जायजा लेना था। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने कई कंपनियों के परिसर का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान इकाइयों में साफ सफाई की स्थिति, उत्पादन एवं संचालन संबंधित व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने सुख संसार राइस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, एमएस भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और मेडिकॉन वेंचर तथा राज इंटरप्राइजेज और एमएस वेल्ड्यूब इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भ्रमण किया। जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित इकाई संचालकों से संवाद करते हुए कहा कि प्रशासन औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। औद्योगिक क्षेत्र में संचालित किसी भी इकाई को संचालन संबंधित किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अथवा अन्य समस्या होने पर इसकी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए ताकि उसका शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि उद्योगों के सुचारू संचालन एवं विस्तार के लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गोपालगंज भी उपस्थित रहे। 31/7/2026 यानी शुक्रवार को गोपालगंज के बुनियादी केंद्र में सुबह 11 बजे से दिव्यांग जनों के लिए रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही तरह के दिव्यांग जन आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। 10वीं से ऊपर के अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। पुरुष और महिला दोनों ही दिव्यांग जनों को सिवान और पटना तथा गोपालगंज में कार्य करने का अवसर मिलेगा। बताया जा रहा है

0: कि अलग अलग विभागों के लिए लगभग 7,000 से 15,000 के बीच सैलरी भी निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए जिला नियोजनालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा 12/8/2026 को भी एक दिवसीय जॉब मेला का आयोजन हो रहा है और व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का भी आयोजन होगा। जिला नियोजनालय की तरफ से इसका भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 20 से अधिक कंपनी हिस्सा ले रही है। रोजगार के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला नियोजनालय से संपर्क कर सकते हैं। आज से नगर निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। नगर निकाय कर्मी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। इस दौरान सैकड़ों सफाई कर्मी अम्बेडकर चौक के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार विभाग पर दबाव बना रहे हैं। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने समग्र रेल विकास और यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पत्राचार किया है, साथ ही विस्तृत पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे द्वारा निर्मित विभिन्न अंडर पासों में वर्षा ऋतु के दौरान होने वाली गंभीर जल जमाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जल भराव के कारण आम नागरिकों, विद्यार्थियों, किसानों तथा व्यवसायियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने रेलवे अंडर पास को व्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए निवेदन किया है, साथ ही कुछ सुझाव भी दिया है। इसके अलावा उन्होंने थावे से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए प्रतिदिन सुपर फास्ट ट्रेन चलाने, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए भी सीधी रेल सेवा शुरू करने, थावे से पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ करने तथा हावड़ा और पुरी के लिए भी सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है। जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने थावे के भवानी इंटरप्राइजेज एवं इंडियन ओवरसीज बैंक का शुभ उद्घाटन किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता के सुविधा के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोला गया है और इससे विशेषकर गरीब जनता को लाभ मिलेगा। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने भी 80 लीटर स्प्रिट और 28 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान छापेमारी करते हुए खेतों के अंदर से स्प्रिट पकड़ा है और साथ ही 28 लीटर से अधिक देशी शराब के मामले में अभियुक्त गोविंद राम को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी मोहम्मदपुर क्षेत्र के ही रहने वाला बताया जा रहा है। माधोपुर थाना की पुलिस ने 90 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस ने मोहम्मदपुर थाना के टोला छोटी नहर पुल के पास छापेमारी की और इसी दौरान मोटरसाइकिल से 90 लीटर देशी चुलाई शराब मिली। हालांकि गाड़ी चालक पुलिस को देखते ही वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शराब और गाड़ी को जब्त किया है और वाहन चालक की तलाश कर रही है। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी विनोद शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह हरदो मठिया थाना कुचायकोट के चनन शाह का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी पर पहले से केस दर्ज था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कुचायकोट पुलिस ने चोरी के भी एक मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कांड संख्या 157/18 में पुलिस ने अप्राथमिकी अभियुक्त कृष्णा सिंह, पेशर माया सिंह, साकिन अरना बाजार थाना उचका गांव को गिरफ्तार किया। अब इसके विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने 414 लीटर देशी शराब को बरामद किया और एक कार को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए पुलिस ने जादवपुर मौजा टोला तीन मुहानी के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां कार से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया गया। पुलिस टीम को देखते ही वाहन का चालक रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार और शराब को जब्त किया है तथा वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 4 प्राथमिकी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में राज कुरैशी पिता मुराद कुरैशी, साबिर अली पिता जाहिद अली एवं नगर थाना कांड संख्या 338/26 में भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। एक विकास कुमार पिता स्वर्गीय ललन शाह, ये तीनों मठिया थाना नगर के रहने वाले हैं, और प्रशांत कुमार पिता स्वर्गीय विद्या शाह, यह टोला प्रतापपुर थाना माझागढ़ का निवासी है। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पेपर लीक पर सख्ती समय की मांग है और ईमानदार युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यह बातें आज गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कही। उन्होंने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक केवल परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों मेहनती और ईमानदार युवाओं के भविष्य की रक्षा करने वाला भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सदन में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान केवल परीक्षा प्रणाली की चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि उन करोड़ों युवाओं की आवाज उठाने के लिए भी खड़े हुए जो वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं और अपने परिवार की आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए संघर्ष करते हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
1: एनडीपीएस के एक आरोपी को हुई 10 वर्ष कैद की सजा। जिलाधिकारी ने नीलाम पत्र वादों की समीक्षा। औद्योगिक क्षेत्र का डीएम ने किया निरीक्षण। दिव्यांग जनों के लिए जॉब मेला का हो रहा है आयोजन। नगर निकाय के कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ शुरू।
0: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
3: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
2: रोड, तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी दो शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सू SMS फरमाइश के साथ समय 9:28 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277165। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी कर सकें। और आप लोग कई श्रोतागण ऐसे हैं जो बीच में नए गाने की फरमाइश लेकर हाजिर होते हैं और उनकी हम फरमाइश पूरी नहीं कर पाते हैं तो मैसेज करते हैं कि हमसे कोई दुश्मनी है क्या और मेरा गनवा क्या हुआ। तो आप लोग से हर रोज़ हम विनती करते हैं कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी हम फरमाइश पूरी कर सकें। तो जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नंबर है 7277165। और कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मैसेज करें और हम कुछ ही समय में आपकी फरमाइश पूरी करेंगे।

रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और कुछ से तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी जिसके कारण हम अभी में से शामिल नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी तरफ से गाने प्ले करते हैं। तब तक आप सुनते रहें रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम, और आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं रेडियो एमजीएम परिवार की तरफ से। फिलहाल हम सावन के गीतों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे।

रेडियो रेम सिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज हमारे पास पहुँच चुके हैं, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है पहला, और लिखा गया है कि हाय सर, समीर आलम जंगलिया से और सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते नमस्कार, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस मैसेज को करते हैं शगीर अंसारी जी तेजपुर आसाम से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि कितना दर्द है मोहब्बत में, तन्हाई अलग, जुदाई अलग, बेवफाई अलग, और घर वालों को पता चले तो कुटाई अलग। सनो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं रोहित देहरादून से, और गाना सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में रोहित जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सुनो भैया कैसे हैं आप? और आशा चौहान मिले सर अफरा परसौनी से, तो बिल्कुल बढ़िया है, और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि देवकांत मिश्रा, सावन का महीना पावन करे शोर। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में देवकांत मिश्रा जी। कल ही तो आपकी फरमाइश हम पूरी किए, सो आज तो नहीं सुना सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम बहुत छोटा बना हुआ है, और इसमें एक ही बार मौका मिलता है अपने पसंद के गाने सुनने का एक सप्ताह में। तो आप अगले सप्ताह का इंतज़ार करें, फिलहाल बने रहें हमारे साथ। कई श्रोतागण की फरमाइश एक से बढ़कर एक आती है, तो इंजॉय करते रहें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते, मुझे गाना सुनना है बोलबम का। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया कैसे हैं आप? आशा चौहान मिले सराफरा परसौनी से, गाना सुनना है बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, सुनवाना चाहती हूँ आपको रेडियो फ्रेंड्स अनामिका जी। और बिल्कुल सारे दोस्तों का हम नाम शामिल कर देंगे जब गाने प्ले करेंगे। फिलहाल स्वागत है, बने रहे हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं समीर आलम के गाने के साथ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने। हम सभी गाने का बोल देते हैं, मेरा सनम सबसे प्यारा है, डेडिकेट इरफान भाई, कमरान भाई, गुलाम हुसैन, अहमद अली, साहिल भाई, दिलीप जी, शुफिया वसीम, शगुफा करीम, रुबीना नाज, शफाक साजा, हिना हजरा, अनमका गुड़िया, सबीता ब्यूटी, शबनम जरीन, शबनम सिद्दीकी, नीतू रोशनी, शबीना शाबा, आशा नीतू, निशा, तब्बू, साजदा और संतरा, और आपको। तो चलिए हम सभी हैं, और आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रसाद क्लिनिक,
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84-710-30-992 या 97-65-65-750।
7: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MGM 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और समय 9:48 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में, और बहुत सारे मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए, तो मैसेज को शामिल करेंगे। और शामिल करने से पहले आज हम फिर आप सभी के बीच एक छोटा सा सुझाव साझा करेंगे सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत। आज हम सभी जानेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड एक बैक्टीरियल जनित संक्रामक रोग है। यह सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरियल के कारण होता है। यह रोग मुख्यतः दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन से फैलता है। टाइफाइड कैसे फैलता है ये जान लेंगे हम सभी। तो पहला, दूषित पानी पीने से, दूषित भोजन खाने से, संक्रमित व्यक्ति द्वारा बनाए गए भोजन से, हाथों की ठीक से सफाई ना करने से, मक्खियों के माध्यम से भोजन दूषित होने पर ये टाइफाइड फैलते हैं। ये टाइफाइड फैलता है। टाइफाइड के लक्षण हैं लगातार तेज बुखार, 102 डिग्री से 104 डिग्री तक, सिर दर्द, कमजोरी और थकान महसूस करना, भूख कम लगना, पेट दर्द, कब्ज या दस्त, मतली और उल्टी होना, शरीर में दर्द, कुछ मरीजों में छाती या पेट पर गुलाबी रंग के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। टाइफाइड की जांच से रक्त परीक्षण, विडाल टेस्ट, टाइफिडॉट टेस्ट और सीबीसी इत्यादि जांच हो सकती है और आवश्यकता पड़ने पर मल मूत्र का भी जांच किया जा सकता है। टाइफाइड का उपचार है डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटीबायोटिक दवाएं पूरी अवधि तक ले। बुखार के लिए डॉक्टर की सलाह अनुसार पैरासीटामोल दी जा सकती है और पर्याप्त आराम करें, खूब पानी पिए, ORS, नारियल पानी और अन्य तरल पदार्थ लें। दवा बीच में बंद ना करें, भले ही बुखार उतर जाए। अब जानेंगे हम सभी की क्या खाए। खाने में खिचड़ी, दलिया, दही यदि डॉक्टर मना ना करे तो उबली सब्जियां, केला, सेब, नारियल पानी, ORS और पर्याप्त पानी पिए। क्या ना खाए ये भी जानेंगे हम सभी। तो क्या ना खाए में आएगा तला हुआ, भुना हुआ भोजन, मसालेदार भोजन, बाहर का खाना, बासी भोजन, शराब और धूम्रपान से बचें। इनके बचाव है हमेशा उबला या साफ पानी पिए, भोजन से पहले और शौच के बाद हाथ साबुन से धोए, ताज़ा और अच्छी तरह का पका हुआ भोजन खाए, खुले में बिकने वाले कटे फल और अस्वच्छ भोजन से बचें। टाइफाइड का टीका वैक्सीन लगवाने पर भी विचार किया जा सकता है, विशेष जोखिम वाले क्षेत्रों में यह टीका भी दिया जाता है। संभावित जटिलताएं हो सकती हैं यदि समय पर हम इलाज ना कराएं तो आंत में छेद, आंत से रक्तस्राव, गंभीर संक्रमक, निर्जलीकरण यानी हाइड्रेशन और जान माल का खतरा भी हो सकता है। तो ये सारी इनके लक्षण हैं और ऐसी गतिविधियां आप सभी के बीच या आपके परिवार में, आस पड़ोस में किसी भी को हो तो उसको आप सलाह दें और अपने सलाह अनुसार उसको अगर आप सक्षम हो तो अस्पताल में ले जाएं और उसका इलाज कराने में मदद करें। ये सारी जानकारी हम सभी रेडियो रिमझिम के माध्यम से दे रहे हैं सेहत सही लाभकारी के अंतर्गत, तो इसका आप लोग थोड़ा उपयोग करें अपने जीवन शैली में और अपने को स्वस्थ रखें। तो फिलहाल हम कार्यक्रम के साथ हैं, तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसका उपयोग करेंगे अपने जीवन में। रेडियो रिमझिम के माध्यम से जो भी बातें आप सभी के बीच छोटी छोटी बताई जा रही है, आगे कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मुझे भी गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपके भी गाने हम सुनाएंगे। फिलहाल स्वागत है आपका और इस मैसेज को करती है निशा और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। हाय सर, मैं भी आ चुकी हूं और मेरा भी SMS को शामिल कीजिए। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में निशा पांडे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मंकेश साहनी भैरवगंज वेस्ट चंपारण से। टाइफाइड की जानकारी देने के लिए धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए और आप बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते सर, मुझे गाना सुनना है बोलबम वाला। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस मैसेज को करती हैं काजल गोपालगंज से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो सर नमस्कार, मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और कहते हैं कि हम भी SMS में जुड़े हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है और कहते हैं कि आएंगे तेरी गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे तेरे गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, करेंगे मोहब्बत तुझी से ही चाहे जेल क्यों ना हो जाए। वाह, एकदम डटे रहना है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि ओहो काफ़ी प्यारा सॉन्ग, बिल्कुल सनम प्यारा होना चाहिए। और मैसेज करती हैं रोशनी। उससे पहले मैसेज किया, हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को, और मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुपर सॉन्ग समीर भैया गाना में शामिल करने के लिए थैंक्स। मैसेज करने वाले आशा चौहान मिले सरफरा पर सोनी से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कई, तो मैसेज को हम रुकते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैसेज बहुत हैं और गाने भी सुनना है। तो आगे गाने के फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, और इस गाने के फरमाइश करने वाले हैं

रेडियो MGM 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सुनो भैया जी, आपका आपने हमारे मन पसंद का गाना बजाया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो MGM सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो सर, मेरा भी गाना बजा दीजिए, नींद लग रही है। तो बिल्कुल कोशिश है, और इस मैसेज को पहुंचाने वाले मनीष रजक जी हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हमें गाना सुनना है, महुआ ओढ़नी से बांध के ना आईहा। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या हाल है जी। तो बिल्कुल बढ़िया है, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैसेज करते हैं शिल्पी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्रिय सोनू बबुआ कैसे हैं, अभी आजकल लेट जुड़ रहे हैं, क्या करें, हमें बहुत ही खेद है, पर हाजिरी ले ले भाई। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे लिखे हुए हैं कि बहुत ही अच्छा सदाबहार सॉन्ग, ऐसा ही सॉन्ग हमें इस प्रोग्राम में सुनना चाहिए। बिल्कुल, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और गाने की भी फरमाइश करते हैं, तो कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि असा चवान मिले सराफरा पर सोने से गाना सुनना है, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। और सुनाना चाहती हूँ आपको रेडियो फ्रेंड्स से अनामिका जी, सबीता जी, काजल, गुड़िया, रोशनी, ब्यूटी, निशा, शबीना, रुबीना, शफाक, सलेहा, सुफिया, हीना, हजरा, खुशी, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी, शमीर भैया, साहिल भैया और इरफान भैया, कमरान भाई, पंकज भैया, गुलाम भैया और राघव जी, सतीश भाई, राम कुमार पांडे और दिलीप भैया, नौसाद भाई, श्यावन शर्मा जी और सनोज भाई, उपेंद्र जी, उपेंद्र भाई और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MGM 94 FM पे।

टुडे एमसीएम 95.4 एफएम सुनने आप सब और कमल के गाने सुनने थे और ये शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का बरसात के दिन आए और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को करती हैं काजल गोपालगंज से और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है बोलबम का और गाने का बोल है ए राजा चार चक्का वाली गाड़ी ला दी। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ और मैसेज पहुँचे हुए थे मैसेज शामिल कर ले। फिलहाल आगे मैसेज पहुँचा हुआ है नाइस सॉन्ग थैंक्स सिस्टर मुझे सुनाने के लिए मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज थैंक्स भाई गाना बजाने के लिए चलिए आपको धन्यवाद। रेडियो रमझम सुनने के लिए आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सर मेरा वाला गाना कब बजेगा। बिल्कुल बजेगा एक एक करके सबकी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि कैसे हैं आप और आज मुझे उम्मीद है कि आप मेरा फरमाइश ज़रूर सुनाएंगे। मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माझा जिला गोपालगंज और मुझे फूल और कांटे फिल्म का गाना सुनना है। गाने का नाम है तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे लेकिन क्या ही करें नहीं भी हो सकता है क्योंकि समय जो है बहुत कम है मेरे पास। आप थोड़े लेट कर दिए हैं तो फिलहाल हम गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं बोलबम की सॉन्ग

रेडियो रेमझिम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश। और जब भी कोई पर्व त्यौहार का सीजन आ जाता है तो गाने की फरमाइश धीरे धीरे नए की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे कि अभी हम सभी गाने सुन रहे थे। और इसी में एक हमारे श्रोतागण शिल्पी और इनके तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है कि क्या ये न्यू गाना नहीं है। बिल्कुल न्यू गाने जब सीजन आ जाते हैं तो आप लोग से हम तो कहते ही हैं कार्यक्रम की शुरुआत में कि आप जब भी गाने की फरमाइश करें तो पुराने गाने की भी फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश हम सुना सकें। और ऐसे में भी कई श्रोतागण हैं जो नए गाने के साथ अपना हाजिरी देते हैं और कहते हैं कि मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, या मेरा गाना कब बजेगा। तो अभी हम सभी गाने सुन रहे थे शिल्पी राज की आवाज़ों में बोलबम का संग। चलिए, सावन के उपलक्ष्य में इस गाने को हम सभी ने सुना। आगे से हम सब ये ध्यान देंगे कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो जैसे ही कार्यक्रम चले वैसे गाने की फरमाइश करें। ये कार्यक्रम हम लोग की तरफ से आप लोग के लिए ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और हम लोग आप सभी से विनती करते हैं कि जैसे कार्यक्रम चले वैसे गाने की फरमाइश करें। आगे ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे क्योंकि समय भी हो गए हैं समाप्ति का, तो कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। आगे कुछ मैसेज भी है तो मैसेज को भी शामिल करना है और अंतिम गाने भी प्ले करना है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि ओहो इतना बड़ा बड़ा डिमांड, बहुत बट नाइस सॉन्ग। और इस मैसेज को करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। और मूवी का नाम है जंजीर द चैन और गाने का बोल है तुझे देख के पहली बार, यही गाना सुनना है। तो चलिए आपकी गाने हम सुनाते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, कल कोशिश रहेगा कि आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर पाएँ। और हाँ, यदि आप लोगों का मैसेज अपडेट होता है यानी कल पहुँचता है तो ही आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो रमझिम 94.4 FM, जो हमें सच कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: कभी कभी
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates

0: Da.
1: नौ सुन फ्रीक्वेंसी पर
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: ऑलराइट, दिस इज़ तक दिन दिन तक दिन दिन।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: या गांव गांव माफिया बने जा।
1: अच्छा जी।
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: हमरा संगे रहुआ चलें, ठीक है?
1: तू जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: बाकी मैम नमस्कार, प्रणाम।
1: नमस्कार, प्रणाम।
2: आज ये सॉन्ग चला दें हम।
1: बता दी कौन सा?
2: और तुम क्या शिल्पी राज के अपने पसंद से?
1: अच्छा, और सॉन्ग के होकर सुना हूँ के बाद?
2: पहले तो रोगा तो सुनावे के बाद, जितना लोग बोल बम जाता उस सबके होकर सुनावे चाहो।
1: अच्छा, चलिए,
2: पता भी बताओ पड़ी।
1: हमारा तो पता बा, मतलब लोग के जाने के चाहे ना के कहत अवे सुनावे के।
2: बोलते नहीं बंजारी रोड पुलिस के सामने गोपालगंज को राघो जी।
1: और सब ठीक बा ना?
2: एकदम रोल के दवा से चलता दुरता।
1: अच्छा,
2: सुना है राहुल कैसन बा?
1: हम नहीं हो के बानी सन।
2: रोल के टीम के का हाल बा?
1: सब जाने ठीक बानी सन।
2: चल, ठीक रहे के चाहिए। अब बहुत खुशी भाई लोग शो में आओ तो नहीं तो ऐसे 10-15 दिन पर नहीं मालूम पड़ेगा हमारा की एकदम आवे वाला बानी शो लेके बहुत जल्दी।
1: अच्छा,
2: राहुल राहुल डायरेक्टर साहब बताओ।
1: चलिए ठीक है,
2: बहुत खुशी के बात कर शो में आई नहीं पाई की पहले दे रहे वो तो कहीं कहीं चल गई।
1: ठीक बात, अब गाना प्ले करते नहीं सुनते रही रेडियो 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: कैसी है मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम ठीक हैं। आज जल्दी कॉल लग गया, तभी आकर कॉल लगाई तो लग गया।
1: अच्छा, हाँ चलिए, तब तो और अच्छी बात है कि एक ही बार में लग
0: खाना
1: गया।
0: खा रही थी, खा कर अभी आकर बैठ के कॉल लगा रही थी, चल लग गया।
1: और
0: बड़ी जल्दी।
1: बताइए, सब ठीक है ना?
0: हाँ सब ठीक है,
1: तो
0: सबके घर में सबको ठीक है ना?
1: आज कौन से गाना सुनना है
0: मैम, आज दीदी के फरमाइश के गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: ऐसी वैसी बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं, ये तो मोहब्बत है।
1: और सॉन्ग डेडिकेट है
0: जी मैम आपको और सोनी मैम को, और मेरी दीदी है अमृता और सोनम, और छोटे भाई है अभिषेक कुमार।
1: अच्छा जी,
0: और रेडियो रिंग सुनने वाले सभी दोस्तों को और दली आइए।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।
0: जी मैम, बाय मैम।
1: बाय बाय।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: स्वागत है आपका। भी
7: नाम बता दीजिएगा।
6: अनु कुमार, ग्राम प्रहरी सरीला, जिला हमीरपुर, उधर फिर बुंदेलखंड।
7: और गाना कौन सा सुनना है?
6: मैं जिस दिन भोला दूं तेरा प्यार दिल।
7: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
6: पहले तो आपको, राजू भाई साहब को, बलवान चाचा जी को, छोटे यादव जी को,
7: जी जी
6: सभी सभी के लिए है।
7: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम, हम पटना से बोल रहे हैं। मैडम को गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा।
1: एक गाना नहीं है कल अपना चल के मणिया सीख के धाम बोलूंगा।
0: है
1: यही सुना दीजिएगा।

0: हम किसी को मतलब सुनाना भी चाहेंगी?
1: हाँ, हम अपना घर परिवार सुनाना चाहते हैं, हम सुनना
0: ओके
1: चाहते हैं, आपको सब बारे में सुनाना चाहते हैं।
0: जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: जी मैडम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्कार मैडम जी।
5: नमस्ते, गाना बता दीजिए कौन सा सुनिएगा।
6: गाना सुना देखिए, बिना सजा बाजारा न जाए मैं राजा जी।
5: कौन सा?
6: बिना सजा वाला बाजारा न जाए मैं राजा जी।
5: अच्छा,
6: क्या कह रहा है की बहुत दीवानी।
5: गाना क्योंकि सुना
6: होगा जितना दोस्त सुनते हैं दोस्त सबके साथ।
5: चलिए ठीक है बाबा, तब क्या होता है?
6: रात इंतजार है 11 बजे से 12 बजे।
5: अच्छा,
6: फोन लगात कभी लागल।
5: कोनो बात ना, कबो तो लागल हो।
6: हाँ, कबो तो लागल कितना काम काज हो गए फोन के चक्कर में।
5: अच्छा, कोनो बात ना, थोड़ा बहुत उतना एथी हो जाला। चलिए रोबो के तो आराम करके मिल गए, बैठ के फोन लगाई नहीं।
6: काम कर कर फोन लगा के आराम करके काम नहीं करे।
5: अच्छा, इतना काम बा?
6: हाँ, बहुत काम बा।
5: चलिए ठीक है बाबे,
6: होने के सन बेरा लेने के फोन कर रहा हूँ।
5: कोनो बात नहीं है,
6: बिना कजरवा लाला गाय
5: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनक रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
6: जी मैडम जी, नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम,
0: कैसन बने?
1: हम तो ठीक बने, रोवा बताए रोवा कैसन बने?
0: हम ठीक बने।
1: अब क्या होता अभी?
0: अभी फोने लगाओ तो नहीं यार। अभी सब ठीक बा?
1: हाँ हाँ, और सब ठीक बा।
0: नाश्ता सब हो गए?
1: हाँ हाँ, हमने के हो गए, रोवा लोग नहीं लो।
0: हाँ, हमने के नाश्ता हो
1: गए। ठीक बा,
0: जाना बाजल सवेरे
1: बाजल है ना?
0: हाँ बाजल, ठीक बा।
1: शाम के 5 बजे बाजल है ना?
0: हाँ
1: सुन ले,
0: ठीक बा। आज गाना बजा दी, जिंदगी लागे जन्नत जैसा रहेलू जब आ। ये लो बस सुनवा दे, बस सुन लिया मैडम।
1: हाँ हाँ, अब गाना क्यों सुना हो के बाद?
0: हाँ रौदा सुन ले, सब में सुनी लो, सब कुछ सुन, जितने रेट लोग
1: बोले। चलिए ठीक बा।
0: नेटवर्क प्रॉब्लम चलता का लागत ना लो जल्दी?
1: ना ना, नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, कॉल ज्यादा होता है।
0: अच्छा, ठीक बा। आदमी ढेर बढ़ गए ना पहले से, तब बहुत अच्छा बा। पहले तो और दिक्कत होता, जब बहुत लास्ट नंबर लू तब और दिक्कत, चेंज हो जाओ तब से ठीक बा। और सब ठीक बा?
1: हाँ और सब ठीक बा।
0: टेलीफोन छुट्टी पे बानी?
1: हाँ हाँ, छुट्टी पे बानी।
0: ठीक बा, तब
1: ठीक बा। फिर गाना प्ले करता नहीं सुना, सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, स्वागत है आपका रेडियो रंजन 94.4 FM
7: में।
6: जी नमस्ते।
7: क्या हाल है मैडम जी?
6: जी
7: क्या हाल है?
6: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
7: ठीक है, नाश्ता पानी हो गया?
6: हाँ हाँ, नाश्ता पानी हो गया, आपका हो गया?
7: हमारा भी हो गया। और इधर का मौसम?
6: इधर का मौसम अभी तो गर्मी पड़ रहा है।
7: बारिश नहीं हो रहा है?
6: नहीं, बारिश नहीं हो रहा है। आपके तरफ हो रहा है क्या?
7: अब हम तो अभी कश्मीर में आए हुए हैं, तो सिलसिला है जलालपुर के करीब में। अभी कश्मीर में आए हुए, वहाँ का मौसम
6: वहाँ तो हल्का ठंडा रहता ही है।
7: तो उनको दावा सुनना था,
6: बता दीजिए कौन सा।
7: ये चावल में बाहर जाओगी तो हल्ला मच जाएगा।
6: एक बार और बता दीजिएगा।
7: चावल में बाहर जाओगी तो हल्ला मच जाएगा।
6: डेडिकेट भी है।
7: हाँ, ये सबसे पहले आपको जितने रेडियो सुनने वाले
6: तो
7: कहाँ सबको।
6: तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: जी बहुत स्वागत है आपका रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं सुधीर पर बोल रहा हूँ, कोरिजमा जिला देवघर झारखंड से। मैं
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ।
1: और गोपालगंज तरफ बारिश कैसे हो रही है?
0: अभी तो इधर बारिश नहीं हो रहा है, धूप निकला हुआ है और गर्मी भी वैसे ही है।
1: जी जी, इधर भी बारिश नहीं हो रही मैम, बड़ी से खेती हो रही है लोगों की, अपने भी खेती है, पंप लगाना पड़ता है या मोटर लगा खेती करना पड़ रहा है।
0: ये तो बात सही है, जब बारिश की जरूरत होती है तब होता नहीं है, जब ना होता है।
1: बेमौसम बारिश हो रही है।
0: गाना कौन सा सुनना है
1: आज? सुना दीजिए मैम, पृथ्वीराज का बोलवम का वो गिदर बांध वाला ये पर है, बता दीजिए वही गाना सुना दीजिए।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: सबसे पहले मैं आपको सोनी मैम को, सोनू सर को और रेडियो के जितने आरजे फेमस सबों को और रेडियो के जितने श्रोतागण है सबों को और हमारे दोस्त सबको भी सुनाना चाहता हूँ। मदन को लें, प्रभु को लें, राजकुमारी हैं, पूरण को लें, कृष्ण को लें, केदारनाथ को लें, केदारनाथ को लें, संजय को लें, राजीव रोशन, रोहित कुमार सिंह, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैडम, नमस्कार
6: जी। नमस्कार, रेडियो रहना की बात हो रहा था
5: जी। मैं मनन बोल रहा हूँ, कपूरपुरा का।
6: कैसे हैं आप?
5: हाँ, बहुत बढ़िया हूँ। हमको वो फिल्म का गाना सुनाइए, जीने नहीं दूंगा।
6: और गाने
5: आ, गाना है वो याद रखना साजना, वो याद रखना गाना है, ये आशा भोसले का गाना है।
6: अच्छा,
5: तो ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
6: ओके।
5: किसी से भी आप बात करते हैं, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होता है। अब आप ये फिकर होकर के बात करते
6: हैं,
5: वही तो थोड़ा सा मैसेज आप पढ़ने में कभी कभी रुक जाते हैं।
6: कभी कभी रुक जाते हैं।
5: आप एक नौकरी पर लगे हैं, बहुत बहुत अच्छा है। सब कोई आपको मतलब प्यार दे रहा है। आपको भारती जी को कोई नहीं जानता था, लेकिन भारती जी मेरा मैडम जी ये जानते हैं, बहुत खुशी हो रही है। आपके घर वाले भी सुनते होंगे तो बहुत अच्छा पाते होंगे। जो भी रिमझिम का है प्रोग्राम तो बैठा लगा है, रेडियो मजा लगता है। हम बचपन बजा चलिए मेरा तो बहुत हो गया बात। आज हमको ये गाना जो है जीना नहीं दूंगा, ये वो गाना सुनवा दीजिए।
6: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार, आवाज नहीं आ रहा था क्या?
0: आ रहा था, बोलिए।
1: भारती जी बोल रहे हो ना?
0: और सब ठीक है, आप अपना बताइए।
1: सब ठीक है, पहले मेरा रिक्वेस्ट का ऐड कीजिए, नहीं तो भूल जाऊंगा। विनय बिहारी का है, अंगूरी में अंगूठी बात सगाई के।
0: अच्छा,
1: ये इसको ऐड कीजिए, इसको सुना दीजिएगा। डेडिकेट रहेगा सोनी मैम को, आपको, जितने सुनने वाले हैं सबको।
0: ओके,
1: और सब सुनाइए, कैसा मौसम मौसम कैसा हो रहा है आजकल?
0: गर्मी तो बढ़ गया है, बहुत गर्मी पड़ रहा है।
1: बारिश बिल्कुल बंद
0: बंद हो गया है।
1: दिल्ली में तो हो रहा था, आज नहीं हो रहा है।
0: अच्छा,
1: कल दिन रात
0: में गया है, अब इधर देखिए कब आ रहा है।
1: तीन रात यहाँ बारिश हुआ है, कल तो दोपहर में बहुत अगड़ी बारिश हुआ है।
0: चलिए ठीक है, कहीं तो ठंडा मौसम हो रहा है।
1: कल शो में मेरा गाना नहीं सुना है ना, क्या है?
0: सुनाने वाले थे लेकिन मैं लिखा हुआ था प्रतिवार को कि किस दिन का लिखे हुए हैं, हम नहीं लिखे, मतलब सोनी जी लग रहा है लिख के गई हुई है।
1: पकड़ लीजिए लेकिन
0: इसीलिए नहीं बजाए।
1: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, फिर वीरवार को ही मैं थोड़ा ध्यान से उतर गया था कि किस दिन बजाता ही है। अब मैं सोचा कि कल एक सुन लो, लेकिन ठीक है, पकड़ा गया, बढ़िया है।
0: अगर कॉल मतलब जो कल के लोग जुड़े थे, मतलब कल के लिए, उन लोगों का नहीं होता तो बजा ही देती।
1: ना ना ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ध्यान नहीं था कि वीरवार को सुने थे कि सुने थे। ठीक है, कोई बात नहीं, सुना दीजिएगा ये।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम।
6: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: थैंक यू। आप कौन मैम बोल रही हैं? मैं अहमद अली चरेवाल नंबर है।
6: जी मैं भारती बोल रही हूँ।
5: कैसे हैं मैम?
6: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: हम लोग खाते हैं।
6: नाश्ता हो गया आपका?
5: जी मैम।
6: पार्टी आने की?
5: बहुत दिन हो गया था जुड़े हुए इस प्रोग्राम में। योर वॉइस योर चॉइस में तो डेली जुड़ते हैं।
6: जी जी,
5: लेकिन इसमें बहुत दिन हो गया है। आज मेरे को सॉन्ग सुनाइए। तो मूवी है, ये गाना है ना अक्षय कुमार का, तेरे बगैर इंतजार और क्या करूं, ये गाना है ना?
6: शायद है, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ क्योंकि सुने नहीं है।
5: इतना तेरे बगैर प्यार कैसे करूं, एक गाना है अक्षय कुमार है मेरे को।
6: अच्छा अच्छा जी, चलिए बजा दीजिए।
5: मिला क्या? अरे कुछ ऐसे है, इतना तेरे बगैर मैं प्यार।
6: अच्छा जी, इतना ही काफी है ढूंढने के लिए।
5: मिला क्या?
6: मिल जाएगा।
5: अक्षय कुमार का है
6: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
5: सबसे पहले तो आपको, सोनी मैम को
6: जी,
5: और अखरी को, कमरान रफी को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
6: ओके,
5: आज बजेगा क्या? आज तो दूसरे नंबर मेरा कॉल होगा।
6: नहीं, पहला है।
5: पहला है तो बजेगा, कोशिश कीजिए बच जाए। ठीक है मैम,
6: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
5: थैंक यू मैम।
6: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
1: हाँ जी, प्रणाम मैडम।
0: प्रणाम।
1: वाह, हमको गाना सुनना है।
0: बता दे कौन सा गाना।
1: छतरी न खोल बर रंग में।
0: और गाना किसी को सुनाना है।
1: घर के लोग का सुनाना है। अब मेरा गाना की एक और नंबर से मेरा फोन लगा है।
0: आपका तो फोन लगा है 11 नंबर।
1: हमसे पहले 10 नंबर लोग कर चुके हैं ना। आपका कॉल ज्यादा है।
0: बहुत ज्यादा कॉल आता है इसे।
1: खाना ना हो गया मैडम। ठीक है मैडम, का नाम आपका क्या हो?
0: भारती।
1: ठीक है। अब इसमें कितना मैडम है लो?
0: तीन।
1: अच्छा, तीन मैडम है लो और जेंट्स बस नहीं लो। गानों का बीच ध्यान सुनाएंगे ना?
0: हाँ,
1: ठीक है मैडम,
0: आज नहीं तो कल देख लीजिएगा।
1: हाँ ठीक है,
0: चलिए फिर गाना प्ले कर।

0: 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: जी मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
2: हाल चाल तो बहना जी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ और इस समय कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
1: ओके
2: जी बहन,
1: और गाना कौन सा सुनना है आपको?
2: गाना बहना जी गाना सुनेंगे तेरी बेवफाई का चिकवा करूं तो तेरी मोहब्बत की, ये वाला गीत।
1: और डेडिकेट भी है
2: सभी रेडियो सुनने वाले साथियों को, तो इस समय रेडियो सुनेंगे रिमझिम और कुछ लाइनें कह दें इजाजत हो।
1: बिल्कुल कह दीजिए।
2: खुद को तुम्हारी यादों का गुलाम कर दिया, तुम्हारे खातिर खुद को बदनाम कर दिया, क्या सबूत दूं आपको अपनी मोहब्बत का, एक जीने में दिल था वो भी रेडियो रिमझिम के नाम कर दिया।
1: क्या बात है। चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप बताइए।
0: मैं भी अच्छी हूँ। मौसम तो इधर अभी गर्मी है, धूप भी वैसे ही है। और आपकी तरफ कैसा मौसम है?
1: हमारे यहाँ लगभग 15 दिनों के बाद आज धूप निकली है बढ़िया।
0: अच्छा, इतना दिनों तक बारिश हो रहा था क्या?
1: हाँ, बारिश धूप ही नहीं निकल रहा था, थोड़ा सा निकला था भी थोड़ा निकला ही नहीं।
0: अच्छा जी।
1: रिमझिम रिमझिम आ रहे कि 2 घंटे पे बारिश आ जाना, फिर खुल जाना, फिर आ जाना, फिर खुल जाना। हाँ, 15 दिनों बाद लग रहा है कि फिर गर्मी में वापिस आ गए।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: चलिए ठीक है। और गाना कौन सा सुनना है?
1: ये गाना सुना दीजिए। गाना सुनना है ना, किस नाम से तुझको याद करूँ, छोड़िए उसको, उसको छोड़ दीजिए, सुना दीजिए। क्या नाम है? चोट जिगर पे खाई है थी, मैं जानू या वो जाने, ये चंदा की गजल है, ये सुना दीजिएगा।
0: और सॉन्ग किसको डेडिकेट है?
1: भाई को, आपको, अपनी मम्मी को, पूरे रेडियो रिले परिवार को, तमाम रेडियो रिले सुनने वाले श्रोताओं को।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ओके, थैंक यू।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं चंडीगढ़ से।
7: जी, क्या हालचाल है आपका?
6: बढ़िया है भारती जी।
7: और सब ठीक है?
6: हाँ, सब बढ़िया है। आप लोगों की बात तो सब बढ़िया है।
7: तो क्या हो रहा है अभी?
6: अभी तो काम कर रहे हैं।
7: अच्छा, और गाना कौन सा सुनना है आपको?
6: गाना हमको सुना दीजिए हिंदी, राम कसम दिल्ली सरकार हिला।
7: और सॉन्ग डेडिकेट है?
6: हाँ, अपना पांडे जी है, रंजीत है, सुनील है, सूरज है। रेडियो रिमझिम होता है, जितना सुनते हैं सारे आदमी सुनेंगे।
7: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: बोल बोल को शुभकामनाएं देते हैं सारे श्रोता को, जितना को।
7: जी जी,
6: कल से सावन शुरू हो रहा है। महादेव जी हम सब सारे आदमी को कृपा अपना बनाए रखते हैं।
7: बिल्कुल,
6: यही शुभकामना हमारे तरफ से है।
7: चलिए गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: बात ही नहीं, नमस्कार प्रणाम।
0: नमस्कार प्रणाम।
1: आज ये सॉन्ग चला दें।
0: बता दी कौन सा
1: है? तुम क्या शिल्पी राज के अपने पसंद से।
0: अच्छा, और सॉन्ग के ना हो के बाद
1: पहले तो रोगा तो सुनावे के बाद जितना लोग बोल बम जाता उस सबके सुनावे चाहता नहीं।
0: अच्छा चलिए,
1: पता भी बताओ पड़ी।
0: हमारा तो पता बा, मतलब लोग के जाने के चाहे ना की कहता सुनाए के
1: हम और बोलते नहीं बंजारी रोड पुलिस के सामने गोपालगंज को राघो जी।
0: और सब ठीक बा ना?
1: एकदम रोलो के दवा से चलता दूर रहता।
0: अच्छा
1: सुनाए राहुल कैसन बा?
0: हमनियो के बानी सन।
1: रोलो के टीम के का हाल बा?
0: सब जाने ठीक बानी सन।
1: चलिए ठीक रहे के चाहिए। अब बहुत खुशी भाई लोग शो में आवत नहीं तो ऐसे 10-15 दिन पर नहीं मालूम पड़े हमारा की एकदम आवे वाला बानी शो लेके बहुत जल्दी।
0: अच्छा
1: राहुल राहुल डायरेक्टर साहब बताओ।
0: चलिए ठीक है
1: बात बा, बहुत खुशी के बात कर शो में आई नहीं पाई की पहले दे रहे वो तो कहीं कहीं चल गयी।
0: ठीक बात, अब गाना प्ले करते नहीं सुनते रही रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

हाँ भाई भैया कि तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाने कुतो मनुष्यः। इतना कुछ तिर्या छछंद सुने के बाद आजकल के कुछ पति काव कहते सुने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अब लगा भी लीजिए।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: VCD and cassettes. Only on Chanda Cassettes.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम सुमन 2083 अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि दिनांक 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार के सुप्रभात रेडियो रिमझिम परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 5:23 पे होगा और सूर्यास्त 6:37 पे होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं और ना ही किसी से दबते हैं। तो श्रोताओं, हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:00 हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रातःकालीन सभा भक्तिमय गीतों के साथ।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।